उनको 100,000 या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो वो ईमान ले आए, सो हम भी उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फायदे देते रहे।

फिर हमने हवा को उनके जेरे फरमान कर दिया कि जहां वो पहुंचना चाहते उनके हुक्म से नर्म नर्म चलने लगती, और जिन्नों को भी उनके जेरे फरमान किया। ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो या रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है, और बेशक उनके लिए हमारे यहां कुर्ब और उम्दा ठिकाना है।

और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र हूरे होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोजख, जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है। ये खोलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब हैं।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शरायत जवाबित लागू हैं
3: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
4: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
6: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरा

0: मंडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा
2: हा भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचां
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे में डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे दाखिला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304 2827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 PM ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापड़ा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाखिला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो
5: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونو درولی همشی نو پدی وجہ دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون والوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत व ज़वाबित लागू हैं
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: इस्लामाबाद में 1245 एक आलमी मरकज रियाज में 267 उम्मीदवार टेस्ट दींदा उम्मीदवारन जे लाए जीवन कार्ड शीट आण जी हिदायत कई वही कराची हैदराबाद जामछुरो मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद लाड़काणो ए सखर समेत 8 सेंटरन लाए कमेटियूं कायम PMDC जणायो आहे त हर सूबे लाइ घटि में घटि धार सवालनामा तयार कया विया आहिनि इम्तिहान लाइ हर पर्चे में 180 सवाल शामिल हूंदा IBA सखर जो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख इम्तिहानी सेंटर जे दौरे दौरान सख्त गर्मी सबब बेहोश थी वियो कलात वेझो एन 225 ते सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारिजी विया 23 मुगी बाज़ियाब ISPR मूजिब 18-19 सेप्टेम्बर जी विच वारी रात दहशतगर्दन एन 225 चौकी ते दहशतगर्दन जो शहरनि खे अगवा करण भतो वठण ऐं गाॾियूं फुरकण जो मनसूबो सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ मुअसर कार्रवाई करे नापाक इरादा नाकाम बणाए छॾिया फायरिंग जी ॾे वठ में 5 दहशतगर्द मारिजी विया दहशतगर्दन जे थाक तां 23 मुगनि खे बाज़ियाब करायो वियो दहशतगर्दन जे कब्ज़े मां वॾे मिक़दार में गोला बारूद धमाकेदार मवाद ऐं हथियार मिलिया आहिनि दहशतगर्दन जे थाकनि तां 6 ट्रक 3 बसूं ऐं 2 कारूं बि मिलियूं आहिनि कलात ऐं भरपासे में दहशतगर्दन जे ख़ात्मे लाइ क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी आहे क्लीयरेंस ऑपरेशन जो मक़सदु मक़ामी आबादी ऐं क़ौमी शाहराहनि जी सिक्योरिटी यकीन बणाइण आहे ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम तहत दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ मुहिम भरपूर अज़म सां जारी रहंदी यमन खां हूसी बागिन जा हिकु भेरो ॿीहर सऊदी अरब ते मीज़ाइल हमला रियाज़ ते बैलिस्टिक मीज़ाइल जो हमलो नाकाम सऊदी इतिहाद चवण आहे त ताइफ बेस ब्रास्ट ऐं यब शहर ते मीज़ाइल ऐं ड्रोन्स हमला नाकाम बणाया विया हूसी बागी शहरी इलाइक़नि खे निशानो बणाइण जी कोशिश कई रियाज़ ते फायर कयल बैलिस्टिक मीज़ाइल हदफ ते पहुचण खां अॻु तबाह कयो वियो ऐं तुर्किया हूसी बागिन ख़िलाफ़ सऊदी अरब जे मदद ते गौर वीचार शुरू करे छॾियो तुर्क परॾेही वज़ीर हाकान फिदान चयो आहे त हूसी बागिन जे हमले ख़िलाफ़ सऊदीअ जी मदद कंदासीं मका मुआदे तहत पाकिस्तान सां गॾिजी सऊदी अरब जे फ़ौजी ज़रूरतुनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे यमन जंग ख़तम करण लाइ सभिनी धुरियुनि ताईं तजवीज़ूं पहुचाए छॾियूं आहिनि सऊदीअ खे ईरान अमरीका जंग जो हिसो क़बूलण जोॻो न आहे विच ओभर जो बोहरान हाणे मुआशी तौर बि नाक़ाबिले क़बूल बणिजी चुको आहे शिकत आणण वारो माहौल हाणे ख़तमु थियणु घुरिजे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़

0: ॿार जा नंढड़ा कदम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: इस जैपनी स्ट्रेचिंग मशीन के जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ए हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चोणियो
0: मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरन खे सखर वारन जो चारो मसालो ई खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: हर ॿार जा नंढड़ा कदम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
5: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
5: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000
7: उम्मीद के दिए जलते हैं
8: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
9: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: असली चीजां चारों मसालों जी सुनियान पर ट्रेडमार्क नंबर चोटी है 2000 डीसी करे खरीद कंदा जीजान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जीजान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद जीजान चारों मसालो जीजान चारों मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए, और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्ने क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।
6: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
6: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक और वंस अगेन एक बार फिर गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग का टाइम यहाँ पर हो गया है वैसे तो खत्म, लेकिन अभी आप लोगों की गुड मॉर्निंग चल रही होगी क्योंकि आज इतवार और फिर इस इतवार भी आपका मेरा साथ रहने वाला पूरे पूरे दो घंटे के लिए। तो जैसा कि सुन रहे हैं आप JFM88 विद आरजी सना के साथ आपका साथ रहने वाला पूरे पूरे दो घंटे आओ बात करें मैं। तो जी ये सारी बातें जमा कर ली होंगी, तो जी सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे हैं आप सब, और उठ चुके हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, चाय शाय पी लिए, अकेले के लिए पूछा भी नहीं। तो जी कैसे हैं आप सारे, और मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ से सुनना चाहते हैं, और कोई ड्राइविंग करना चाह रहा है या कोई घर से निकलने वाला है, कोई काम पे जा रहा है तो जाइए जाके और जो है गाड़ी में जाके मेरा FM सुनिए, पसंद पसंद के सॉन्ग बताइए और मजे मजे के सॉन्ग एंजॉय कीजिए मेरे साथ और हम सबके साथ। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको पता है कि आज है इतवार और इतवार सिर्फ इतवार ही आप और मेरी बात हो पाती है। तो ऐसे ही है जी, आपने बहुत सारी बातें जमा कर लेनी होती हैं और पूरे हफ्ते की बात आज करनी होती है, तो पूरा हफ्ता इंतजार कर रहे थे और ये हफ्ता इतनी जल्दी गुजरता नहीं है, और लेकिन जितना जल्दी ये दिन गुजर जाता है, अभी दो घंटे हमारे आंखें बंद करते ही गुजर जाने, पता ही नहीं चले। तो जी रहना है मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने एक्टिव होकर और बिना कोई देर किए आपने मुझे टाइम पे जवाब भी देना है मेरे सवाल का। पहले तो मैंने ये सोचा था यार कि आज आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, और जो सवाल आज आप लोग मुझे बताएंगे आज वही मैं अपना सवाल बना लूंगी और यही हमारा आज का सेगमेंट हो जाएगा। लेकिन भी मैंने सोचा यार आप लोग तो इतनी देर से जवाब दे रहे होते हैं, आप लोग क्या ही सवाल मुझे बताएंगे, तो खैर है मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज मैं कर लेती हूँ अपनी मर्जी का सवाल, देखते हैं आज आप लोगों में से कौन जीतने वाला है। तो हाजिर नाजिर दिमाग होकर बैठिएगा। सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो मुझे न्यूज़ सुन रहे हैं, जिससे मुझे आज सुना है, इससे पहले नहीं सुना है, या जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे SMS करने के लिए, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आपने सबसे पहले परेशानी होना, मोबाइल उठाना है और टाइप करना है 888 PSKR लिख के अपने नाम के साथ। आप मुझे SMS कर सकते हैं और अपने प्यार से शहर के नाम के साथ, ताकि मुझे और सुनने वालों को पता चल सके कि कौन सा लिसनर हमारे साथ कहाँ से मौजूद है। और इसके अलावा जो जो मुझे लाइव फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहता है, हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है, SMS करना चाहता है, कमेंट करना चाहता है, तो परेशान नहीं होना, फेसबुक ऑन करना, JFM88 का पेज ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपको मेरे नाम का फ्लायर दिख जाता है पहले ही विद आरजे सना आओ बात कर रहे में शामिल, तो आप हो सकते हैं मुझे कमेंट के जरिए, आप जाइए वहाँ पर लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा पेज को शेयर करिए, मेरी आवाज़ को सुनने के साथ देर किए बगैर ही मेरे पेज को शेयर करें, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन मेरे पेज को शेयर कर रहा है। तो जाइए जाके देर मत कीजिए। और इसके अलावा मैं अपना सवाल आप लोगों को बताने लगी, तो क्या आप लोग रेडी हैं मेरा सवाल सुनने के लिए, जरा मुझे ये बता दें कि आप लोग रेडी हैं। तो इससे पहले हम लोग सुन लेते हैं एक मजे का सॉन्ग, उसके बाद देखते हैं कि आप लोग मेरे साथ रेडी हैं और कौन कौन मेरे साथ रेडी है, कौन कौन मेरे साथ मौजूद है। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम एक सॉन्ग को प्ले और एक सॉन्ग को करते हैं एंजॉय, उसके बाद बताती हूँ मैं अपना आपको एक सवाल। तो सुनते हैं ये सॉन्ग।

जी सुन रहे थे अब हम लोग एक सॉन्ग, और अब देखते हैं कि जी कौन कौन मेरे साथ मौजूद है और कौन कौन मेरे साथ जो है एक्टिव बैठा हुआ है मेरे सवाल सुनने के लिए। और जी मैं अपना सवाल, यहाँ पर हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अब्दुल रजाक मोहम्मद खान कंबार वफा जमाल कंबार हाली पटेल स्टाफ से शो सुन रहे हैं आप, और शो बहुत अच्छा है बहन सना। अच्छा जी, और साथ में कहते हैं कि जी देखते हैं और क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बहन सना, कैसी हो? ठीक हो? आपके शो की कितनी तारीफ करी इतनी कम है? अच्छा, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मेरे साथ मुश्ताक अंबार भी आपका शो सुन रहे हैं। अच्छा जी, आप सबको मेरा सलाम हो जो जो आपके साथ मेरा शो सुन रहे हैं। तो जी कैसे हैं आप अब्दुल रजाक? और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन कर लेते हैं, मेरे सवाल सुनने के इंतजार में होते हैं। जैसे कि मुझे इंतजार होता है पूरे हफ्ते के आप लोगों के पास जाके आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों को अपने सारी बात बतानी है, एक नया नया सवाल बताना है और आपसे उसके जवाब लेने हैं, और आपसे नए नए सवाल के साथ आपके पसंदीदा सॉन्ग भी सुनने हैं। मैं भी सुनती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ सुन रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इसके अलावा ख्याल रखें अपना। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद, कहते हैं मसरूर अहमद। ओके जी मसरूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो कराची से? मसरूर अहमद आरजे सना जी, हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम का इंतजार था और आप आ गई हैं, बहुत खुशी हो रही। थैंक यू सो मच मसरूर अहमद। ऐसे ही मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं और मेरे पूरे दिन की थकान उतर जाती है, या एक बंदा जो सफर करके आ रहा होता है उसकी सारी थकान उतर जाती है कि यार हमने तो ट्रैवल किया है यहाँ पर आने के लिए आप लोगों से बात करने के लिए। जब आप लोगों को हम लोग इंतजार में देखते हैं, मैं आप लोगों को अपने इंतजार में देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। मतलब एक एहसास होता है कि आप लोग मेरा वेट कर रहे थे या मेरे शो को सुनने के लिए, आप मुझसे बात करने के लिए आप मेरे इंतजार में थे, तो मुझे भी एक अच्छा लगता है। यही एक हमारी जो क्रेजनेस होती है बहुत अच्छी लग रही होती है ना। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो बहुत सारे लोग हमारे साथ इसके अलावा भी मौजूद हैं, और मैं जिसमें से एक चले नाम ले लेती हूँ। नज़ीर खोसो हमारे साथ कह हैं मौजूद हैं, और नज़ीर खोसो कहते हैं कि दर्द अपना हो तो खामोश रहो क्योंकि दुनिया को दर्द बताने वाले अक्सर

0: तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग फैजाल की आवाज में सॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि अगर उनके आवाज में सॉन्ग ना सुने तो हमारे सुबह का आगाज नहीं होता। जी यहाँ पर टाइम होता है छोटे से छोड़कर मुझे ब्रेक की तरफ जाने का। तो जी जैसे ही ब्रेक पे जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे, तो रहेगा मेरे साथ एंजॉयगा मत।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अप्लाई, आर्श ब्यूटी क्रीम।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

मेरा वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: 3
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

पैसे में वापस आ चुके हैं कि ना आप लोग मेरे साथ मौजूद होंगे, आप लोग कहीं गए नहीं होंगे। तो जी जिससे मुझे अभी ज्वाइन किया मेरा सवाल नहीं सुन पाया था जी, उसके लिए मैं अपना सवाल रिपीट कर लेती हूँ कि आपने बताना अंग्रेजी का ऐसा वो कौन सा लफ्ज है जो ओ से शुरू होता है लेकिन उसको बोलते वक्त वो जो है उसकी आवाज जो ना वो वी की आती है, लेकिन उसमें से आवाज वी की आती है, ऐसा कौन सा लफ्ज है अंग्रेजी का? जाइए और जाके मुझे बताइए कि भाई ऐसा कौन सा लफ्ज है, और 12 बजे से पहले मुझे उसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब मुझे कॉमेंट आ भी चुका है, मसरूर अहमद मुझे इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब मुझे दे चुके हैं। मसरूर अहमद क्या लगता है कि आपको वो जो आपने मुझे जवाब दिया है वो आपको ठीक होगा? अगर ठीक होगा तो आप मुझे इसके साथ अपना पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी लिख के भेज दें भाई, ताकि अगर आपका जवाब ठीक होगा तो हम आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले कर देंगे। तो ऐसे जो सुन रहे हैं मेरे सवाल, सवाल सुनने के साथ अपना पसंदीदा सॉन्ग का नाम जरूर मुझे बता दें ताकि वो हम आपका सॉन्ग प्ले जरूर करें अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो। और इसके अलावा जो न्यूली बंदे हमें ज्वाइन करेंगे उसका हम सॉन्ग ऐसे ही प्ले करेंगे। जाइए और जाकर मजे कीजिए, अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बताइए और अपने पसंदीदा सॉन्ग को सुनिए FM के ऊपर। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है नूर अंतोनिया, हमारे साथ कहते हैं रहते हैं और कहते हैं कि सिस्टर आर जी सना आपका शो बड़ा जबरदस्त है, सुपर डुपर एंड ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच। और साथ में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नूर हसन टोनी फ्रॉम बदिन, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस एंड टेक केयर, अल्लाह पाक आप हमेशा सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन आमीन सुमा आमीन। वालेकुम सलाम नूर हसन टोनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं? और कल आपको भी हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आवाज रखे और बामुराद रखे, और ऐसे ही आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही हमारे शो को ज्वाइन करते रहें और ज्वाइन करते रहें। मेरा शो आपके साथ में होती हूँ पूरे पूरे इतवार इतवार इतवार ओनली ओनली इतवार को पूरे पूरे 2 घंटे के लिए, तो आप मेरे साथ मौजूद होते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, बात करते हैं और मजे मजे के सॉन्ग को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जी ऐसे ही आपने मेरे साथ रहना है और मेरे साथ का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा नूर हसन तोरिया, मुझे इंतजार रहेगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, अच्छे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स आपने मुझे दिए हैं। अच्छा मुझे टाइप करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने टाइप करना है 888-1888-1 पे आप इसके लिख के आप लोग मुझे SMS करते हैं मेरे सवाल का जवाब। और जो फेसबुक पे लाइव कमेंट करना चाहते हैं फेसबुक ऑन करना है, ये फिर टीट का पेज आपने ओपन कर लेना है, मेरे नाम का फ्लैट आपको दिख जाए, बता दे आओ बात करें में शामिल हो जाते हैं आप लोग, जो कि जहाँ पर दिल की बात खुशी की बात हर बात यहाँ होती है, फन का वीकेंड होता है और उसको मिस करना डोंट होता है। ओके और जाइए जाके और मुझे जरूर बताइए। और अच्छा जी मशहूर अहमद कहते हैं कि फैज़ अली की आवाज़ में सॉन्ग सुनाएं अगर जवाब ठीक हो तो। अच्छा फैज़ अली की आवाज़ में अभी हमने एक सॉन्ग सुना था, तो क्या आपने वो नहीं सुना, क्या आप मिस कर गए उस सॉन्ग को? सॉन्ग बहुत ही प्यारा था और तकरीबन तो वो खास तौर पर आप लोगों के लिए ही चलता है वो, क्योंकि फैज़ अली की आवाज़ यार क्या कहने, मतलब अच्छा लगता है बहुत। अगर सुबह ही नहीं लगती अगर उनकी आवाज़ में एक सॉन्ग ना सुने, सॉन्ग सारे अच्छे हैं, सिंगर सारे अच्छे हैं, लेकिन एक होता है कि यार सुबह नहीं लगती, जिसको दिल पे लग जाए तो बस ऐसे ही होता है। तो मैंने वो फैज़ अली की आवाज़ में वो सॉन्ग प्ले कर चुके हैं, इसके अलावा अगर आपने कोई और सॉन्ग की फरमाइश करनी है तो आप वो मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम वो प्ले ज़रूर करेंगे अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होता है तो। लेकिन रहेगा मेरे साथ और आपने मतलब देर तक मुझे मेरे सॉन्ग को इन्जॉय करते रहना है और सुनते रहना है कि आप लोगों के और कौन कौन से सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं। तो जी ऐसा ही है। और इसके अलावा जो जो मुझे सुन रहे हैं वो जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और बिना इस खौफ से कि हमारा सॉन्ग पता नहीं प्ले होगा या नहीं होगा, जवाब ठीक होगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो न्यू बंदा होगा मैं उसको सॉन्ग वैसे ही प्ले कर दूंगी। जाइए आप लोगों के लिए डील लगाई है मैंने आज। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और सॉन्ग है यार, तो मैं कहती हूँ कि आज वो सॉन्ग सुन लेते हैं। तो जो तक हम एक सॉन्ग सुनते हैं आप मेरे सवाल का जवाब मुझे दीजिए जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक सॉन्ग को प्ले और उसके बाद करते हैं बाकी की बातें।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: ਹਰ ਬਾਰ ਜਾ ਨੰਡੜਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਧਨ ਤਾ ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਇਨਨ ਕਦਮਨ ਕੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਸਕੇ ਤੋ ਇਨਹੀ ਕਰੇ ਜਦਹੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਓ ਵਰਕਰਨ ਜੀ ਦਸਤਕ ਥੇ ਤਾ ਦਰ ਖੋਲਿਓ ਐ ਪਹਿੰਜੇ ਬਾਰਨ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਖਾਂ ਬਚਾਓ ਜਬ ਕਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋ ਤੇ ਇਹ ਕਤਰਾ ਬਾਰਨ ਮੇ ਮੁਦਾਫਤੀ ਤਾਕਤ ਕੇ ਵਧਾਇਨ ਥਾ ਐ ਇਨਨ ਜੇ ਖਵਾਬਨ ਕੇ ਉਡਾਮ ਦੇਨ ਥਾ ਪੋਲੀਓ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੀ ਮਾਜ਼ੂਰੀ
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहराबपुर 03003385569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 03003385569
5: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहराबपुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120
3: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 03003385569
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

वेलकम शो, एंजॉय जयपाल कराची, थैंक्स जयपाल कराची, थैंक्स। और साथ में कहते हैं, अच्छा आरजे नाश्ता किया है आपने, क्या खाया? और सॉन्ग हम राजी ओएसटी, तो प्लीज प्ले जयपाल। ओके जी, जरूर जी, मैंने नाश्ता किया था, आप बताएं कि आपने किया है नाश्ता, आप उठ गए हैं नींद से या नहीं, ये जरूर बताएं। और साथ में कहते हैं कि पोएट्री आरजे जनाब, हर किसी पर यकीन मत कर लेना, क्योंकि नमक और चीनी दोनों का रंग एक जैसा होता है। जयपाल, ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल, लाड़काना से वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और कहते हैं कि साथ में जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उससे क्या मिटाएंगे गर्दिश जमाने की। जी वाह, क्या कहने हैं आपकी, सुबह सुबह इतनी अच्छी पोएट्री आपने बताई है। और जयपाल, ऐसे ही जरूर जरूर हम लोग जो है ना आपका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि आपने चलने सॉन्ग का नाम बताया, सवाल का जवाब तो नहीं बताया, सॉन्ग का नाम बताया। ओके।

अच्छा जी, यहाँ पर देख लेते हैं फेसबुक पर हमें कौन ज्वाइन करती हैं। फेसबुक पर हमें ज्वाइन करती हुई कहती हैं फरवा गुल हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं आई हैव लाइक्ड एंड शेयर्ड योर शो, थैंक यू सो मच फरवा। कैसी हैं आप और कहाँ से आपने ज्वाइन करी है? सच में कहती हैं अस्सलाम वालेकुम फरवा गुल फ्रॉम कराची, आपका शो बड़ा जबरदस्त है, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके नसीब अच्छे करे। आमिन सुमामीन फरवा गुल, सेम दुआ आपके लिए भी कि आप भी हमेशा खुश रहें, आपके भी नसीब बहुत अच्छे हों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बेटियों के नसीब भी बहुत अच्छे हों और आगे का नसीब भी आपका बहुत अच्छा हो। और कैसी हैं आप, और आपने मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और थैंक्स फॉर टू यू कि आपने मुझे फर्स्ट टाइम अगर ज्वाइन किया है तो आप ऐसे ही आई होप कि आप मुझे नेक्स्ट टाइम भी आप ज्वाइन किया करेंगी। ओनली संडे रहता है आपका मेरा साथ सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक भी आपका इंतजार जरूर करूंगी।

आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे जैसे ही सुना अच्छा मेरे सवाल का सवाल जो मैंने आपको किया था, आपने जवाब अभी तक मुझे नहीं दिया, वो जवाब मुझे जरूर बता दें ताकि जो है ना अभी 12 बज जाते हैं, फिर आपको मुझे देर से अगर आप लोग सॉन्ग बता रहे होते हैं तो फिर वो क्या होता है कि थोड़ा टाइम जो लेट हो जाता है, आप लोग बोलते हैं यार मेरे सॉन्ग आपने नहीं चलाए थे, आप लोग नाराजगी इसका इजहार करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ मैं नहीं चाहती। तो आप लोग जल्दी से जाइए और मेरे सवाल का जवाब मुझे बताइए और मजे मजे के सॉन्ग को इन्जॉय कीजिए मेरे साथ और सारे लिसनर्स के साथ, और जो न्यू सॉन्ग हो, जो मैंने नहीं सुनी हो, जो आपने नहीं सुनी हो तो वो जरूर मुझे बताइएगा। और इसके अलावा खुशी हुई है फरवागुल आपके कि आप मुझे ज्वाइन किया है। अच्छा जी, इसके अलावा अभी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग जमा हो गए हैं जो कि हमें फरमाइश पर प्ले करनी है, तो करते हैं ये सॉन्ग एंजॉय। एक और जैसा कि अभी हमारे पास एक फरमाइश थी कि मंजूर सकरानी का सॉन्ग हमें प्ले करना था, तो करते हैं उस सॉन्ग को भी प्ले और सुनते हैं उस सॉन्ग को भी। तो कर दिया जी मैंने प्ले और रहेगा मेरे साथ, क्योंकि आप लोग जब तक अपना पसंदीदा सॉन्ग का नहीं बताएंगे तो जब तक आज हमारा सेगमेंट पूरा होने वाला है ही नहीं भाई। जाइए जाके पसंदीदा सॉन्ग का नाम बताइए। ओके जी, इंतजार है आपका, कर दिया है मैंने सॉन्ग को प्ले, करते हैं एंजॉय।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कलात वेजो सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन पंज दहशतगर्द मार जी विया 23 मुगवी बाजियाब। ISPR मूजिब 18-19 सेप्टेम्बर जी विच वारी रात दहशतगर्दन N25 ते चौकी कायम कई हुई। दहशतगर्दन जो शहरन के अगवा करण, भत्तो वठण ऐं गाडियूं फुरकण जो मनसूबो हो। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई करे नापाक इरादा नाकाम बणाए छॾिया। फायरिंग जी ॾेवठ में पंज दहशतगर्द मारिजी विया, 23 मुगविन खे बाज़ियाब करायो वियो। दहशतगर्दन जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी अॼु ईरान जे दौरे ते रवानो थींदो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जमान मूजिब इस्माइल बकाईअ चयो आहे त मोहसिन नकवीअ जो ईरान जो दौरो ॿ तरफ़े लाॻापन ते ॿधल हूंदो। मोहसिन नकवीअ जे ईरान दौरे बाबति कंहिं बि अमरीकी पैगाम जी ख़बर न आहे। मेडिकल ऐं डेंटल कॉलेजिस में दाख़िला लाइ MDK टेस्ट शुरू थी वई। सिंध जे 34,235 उमेदवारनि समेत मजमूई तौर ते 138,160 उमेदवार टेस्ट में हिसो वठी रहिया आहिनि। पंजाब में 19,199, खेबर पख्तूनख्वा में 38,841, बलोचिस्तान में 9,923, आज़ाद कश्मीर में 2,761, गिलगित बल्तिस्तान में 1,721, इस्लामाबाद में 1,245 ऐं आलमी मर्कज़ रियाज़ में 273 उमेदवार टेस्ट ॾींदा। जॾहिं त कराची, हैदराबाद, जामछुरो, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काणो ऐं सखर समेत 8 सेंटरनि लाइ कमेटियूं क़ाइमु कयूं वयूं। PMDC ॼाणायो आहे त हर सूबे लाइ घटि में घटि 2 धार सुवालनामा तयार कया विया आहिनि। इम्तिहाननि लाइ हर पर्चे में 180 सुवाल शामिल हूंदा। IBA सखर जो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख इम्तिहानी सेंटर जे दौरे दौरान सख़्त गर्मीअ सबबि बेहोश थी वियो।

0: ऐं हड़तालनि ऐं एहतजाजनि वारियूं ॻाल्हियूं समुझ खां ॿाहिरि आहिनि। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो तक़रीब खे ख़िताब। मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त वॾनि ॾुखियाईनि सां मुआशी इस्तहकाम हासिल कयो आहे। एहतजाजनि ऐं धरणनि सां मईशत खे नुक़सान पहुचंदो। अहिड़ियुनि हालतुनि में धरणा हणणु समुझ खां ॿाहिरि आहे। मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दीअ जे पुठियां दुश्मन क़ुवतूं आहिनि। आलमी मार्केट में तेल जो अघु सस्तो थी वियो। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघ में लाथ जो इम्कान। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जे अघ में घटिताई रिकॉर्ड कई वई आहे। अमरीकी तेल 1.58% घटिताईअ खां पोइ $100 फी बेरल थी वियो। बरतानवी तेल $103 ऐं इमारती तेल $117 फी बेरल थी वियो। यमन खां हूसी बागियुनि जा हिकु भेरो ॿीहर सऊदी अरब ते मिज़ाइल हमला। रियाज़ ते बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हमिलो नाकाम। सऊदी इतिहाद जो चवणु आहे त ताइफ़, बेश, फुरसान ऐं ॿियनि शहरनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला आया विया। हूसी बागियुनि शहरी इलाइक़नि खे निशानो बणाइण जी कोशिश कई। रियाज़ ते फायर कयल बैलिस्टिक मिज़ाइल खे हदफ ते पहुचण खां अॻु तबाह कयो वियो। तुर्किया हूसी बागियुनि ख़िलाफ़ सऊदी अरब जे मदद ते गौर वीचार शुरू करे छॾियो। तुर्किया परॾेही वज़ीर हाकान फिदान चयो आहे त हूसी बागियुनि जे हमले ख़िलाफ़ सऊदी अरब जी मदद कंदासीं। मका मुआहिदे तहत पाकिस्तान सां गॾिजी सऊदी अरब जे फ़ौजी ज़रूरतुनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। यमन जंग ख़तम करण लाइ सभिनी धुरियुनि ताईं तजवीज़ूं पहुचाए छॾियूं आहिनि। सऊदीअ खे ईरान अमरीका जंग जो हिसो क़बूलण जोॻो न आहे। विच उभर जो बहरान हाणे मुआशी तौर बि नाक़ाबिले क़बूल बणिजी चुको आहे। शिकत आण वारो माहौल हाणे ख़तम थियणु घुर्जे। यमन जे ॾाखणे इलाइक़े में सरकारी फ़ौज जो हूसी बागियुनि ते हमिलो। घटि में घटि 48 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। हूसिन बे 31 यमनी फ़ौजियुनि खे मारण जी दावा। परॾेही ख़बरू इदारे मूजिबि यमनी सरकारी फ़ौज जे हमिले में 48 खां वधीक हूसी मारिजी विया आहिनि, जॾहिं त हूसिन बे 31 यमनी फ़ौजियुनि खे मारण जी दावा कई आहे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसन रज़ाई चयो आहे त कतर ऐं पाकिस्तानी ट्राकड़ी कंदड़नि सां मुशावरत जारी आहे। ईरान अमरीका सां ॻाल्हियुनि लाइ पंहिंजा शर्त उन्हनि ताईं पहुचाए छॾिया आहिनि। अरब मीडिया खे इंटरव्यू ॾींदे मोहसन रज़ाई चयो त ईरान फैसलाइती जंग लाइ तयारु आहे। ट्रंप जे धमकियुनि जो को बि नतीजो न निकरंदो। नेतन्याहू जी भड़कायल जंग मां निकिरण लाइ ईरान जा शर्त मञणु वाशिंगटन जे मफ़ाद में हूंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी। खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्व सास्की वरकवल महेरवई। زکه چه هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوری.
3: هر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم۔ صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے۔ داغ دھبے، جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے۔ استعمال کا آسان طریقہ، رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں، پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں۔ نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں۔ ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں۔ دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم، ملک رائز بیوٹی سوپ، ملک رائز ایکنی کریم۔ ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں۔ مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق، شاہی بازار مہراب پور، 03000-3105-109-03000-3105-109
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा जगह जो डारू जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत होंगी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 0306-1623-793।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
6: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-335-69।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा?
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जीएफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और जल्द, कम वक्त बेहतरीन नतीजे। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म, लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा ब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
4: आपका शो बड़ा जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। इंतजार अली, कैसे हैं आप और कहां से आपने जो ज्वाइन किया है लाड़काना से? तो जी बहुत खुशी हुई आज से, हम यकीन है कि आप लोग भी, आप भी मुझे जो है ना सारे लिसनर्स की तरह हर बार ज्वाइन किया करेंगे। मुझे इंतजार रहेगा आपका भी, और आप मुझे ज्वाइन किया करेंगे। संडे संडे रहती हूँ मैं आपके साथ पूरे पूरे दो घंटे।

वन ओ से जाता है ओ एन ई वन, और अगर बोलेंगे तो वी के हिसाब से वो आवाज निकलती है वन, और अगर ऐसे ही सिमिलर आप लफ्ज देखें तो वंस जी. बिल्कुल ये ठीक आंसर है इसके. मैंने आपको देखो आज आंसर भी बता दिए हैं और सॉन्ग में प्ले करूंगी जर्सी बातें. और लेकिन अब्दुल रजाक ने सॉन्ग का कहा था कि सॉन्ग है तुम जो यादों ही है. अच्छा जी जरूर जरूर हम आपको सॉन्ग भी जरूर प्ले करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास एक और सॉन्ग भी है वो भी हम प्ले करेंगे जरूर. और अच्छा जेपल ने जो मुझे सॉन्ग कहा था ना वो मैंने प्ले अभी तक नहीं किया, हम राजी सॉन्ग कहा था उन्होंने. ओके जी फिर मर्जी सॉन्ग है हमारे पास जी, हम लोग जरूर प्ले करेंगे. ये मैं चाहती हूँ कि हम राजी हम लास्ट में प्ले करें क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग, तो हम इसको लास्ट में प्ले करते हैं. और अभी एक और सॉन्ग है जो हम प्ले करने लगे हैं, सुनते हैं सॉन्ग को भी साथ में. और ये है तफ़ैल खान संजवानी का जो कि मसरूर अहमद ने जो हमें राइट आंसर दिया था सॉन्ग का, सवाल नाम उन्होंने नहीं बताया था मुझे क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा था कि फैजली की आवाज में अगर आप अगर मेरे जवाब ठीक होता है फैजली की आवाज में सॉन्ग प्ले कर दिया, लेकिन फैजली की आवाज में हम एक सॉन्ग प्ले कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यह मैं अपने पसंद का उनको सॉन्ग सुना रही हूँ. तो फैल खान संजवानी की आवाज में सॉन्ग हम प्ले करते हैं मसूर अहमद के जवाब ठीक देने पर, तो सुनते हैं सॉन्ग को भी करते हैं एंजॉय.

यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग एक सॉन्ग जो कि मंसूर अहमद की जो जवाब देने पर ठीक जवाब देने पर जो हमने सॉन्ग प्ले किया था. और जी उसके अलावा हमारे पास जो ठीक जवाब दिया था वो थे अब्दुल रजाक और उनका जवाब बिल्कुल ठीक था. उन्होंने जो सॉन्ग की फरमाइश की थी जी वो सॉन्ग हम अब करने लगे हैं प्लीज़. तो जी इस सॉन्ग को भी साथ में इंजॉय करते हैं और देखते हैं कौन सा सॉन्ग है. मैंने तो कभी नहीं सुना.

0: तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक फरमाइश सॉन्ग, ये भी धनंजय यादों ही अकेली, ओके जी ये वाला सॉन्ग भी हमने साथ में एंजॉय किया, यकीन है आप लोगों को भी ये सॉन्ग मतलब साथ में एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। और जिसने ये प्ले करवाया अब्दुल रज़ाक, उन्होंने भी हमारे साथ ये सॉन्ग को सुना होगा, क्योंकि आप लोग अगर अपनी फरमाइश बता रहे हो तो मैं आपसे लोगों से जब भी कह रही होती हूँ कि अपनी फरमाइश बताने के बाद आप लोग गायब मत हुआ करें, मेरे साथ रहे कनेक्ट हुआ करें, ताकि जो ना अगर आपका सॉन्ग प्ले हो रहा होता है तो आपको पता भी चल जाता है और आप लोग हमारे साथ अपने सॉन्ग को एंजॉय भी कर लेते हैं। हम तो करते ही लाजमी, लेकिन आप भी करेंगे ना, जिसने नाम बताया अगर वही ना करे तो फायदा क्या सॉन्ग को प्ले करने का। ओके और यहाँ पर देख लेते हैं अभी हमारे साथ और कौन मौजूद हैं। अच्छा जी कहते हैं कि थैंक यू सो मच जेबर, कहते हैं कि आपने मेरा सॉन्ग जो है प्ले किया और साथ में कहते हैं करने का मतलब कि जो मैं लास्ट में प्ले करूंगी इसलिए करने का थैंक यू बोला है उन्होंने। और साथ में कहते हैं कि भाई कोई पोएट्री भी सुना दें, पहले पहले पोएट्री सुनाया करते हैं जी, मैं पहले पहले बहुत सारी पोएट्रीज वगैरह सुनाया करती थी। कहते हैं कि अभी भी हम इंतजार में, अगर आपको पोएट्री सुना दें मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपकी सॉन्ग चलाने से पहले, आपका सॉन्ग चलाने से पहले मैं आपको एक पोएट्री ज़रूर सुना के जाऊंगी। और उसके अलावा कहते हैं मौर्य से अब्बास मेरा हमारे साथ मौजूद है, अब्बास मेहर कैसे हैं आप और कहाँ से आपने मतलब मौर्य के किस शहर से किस सिटी से आपने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया है। और क्या करते वक्त आपने मुझे ज्वाइन किया, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ पर हैं, घर पर हैं, ऑफिस में, बाहर हैं, कहाँ पर हैं, जैसे हैं जहाँ पर हैं वो ज़रूर बताया करें, ताकि पता चल जाता है मुझे भी और सुनने वालों को भी कि मेरे साथ जो लिसनर मौजूद है वो कहाँ से मुझसे बात कर रहे हैं। और बहुत खुशी हुई ऐसे ही आपने हर बार मुझे ज्वाइन करते रहना है अब्बास महल, ऐसे ही आपका भी इंतजार रहेगा हमेशा, आप जैसे आज आपने मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया और एसएमएस किया ऐसे ही थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आपने मुझे हर बार मुझे ज्वाइन करते रहना है, मैं करूंगी आपका इंतजार जैसे कि आप लोग भी कर रहे होते हैं मेरा इंतजार। तो जी और मेरे सवाल को सुनने के लिए आप लोग फौरन से रेडी रहा करें 11 बजे से, जैसे कि रहता है मेरा आपका साथ पूरे पूरे दोपहर 1 बजे तक, 2 घंटे का साथ होता है बहुत होता है, और ये बात बहुत जो है बातें करने में पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हो जाती है, कैसे गुजर जाता है ये टाइम। तो जो मेरे सवाल होते हैं मुझे मेरे सवाल होते हैं दिमाग को तो बहुत जोर बिल्कुल नहीं डालना होता है, तो आपने क्या करना है मुझे टाइमली ज्वाइन करते रहना है और मेरे सवाल को सुना है और फौरन से मुझे जवाब दे देना होता है, और जिंदा सॉन्ग का नाम बताना होता है और सॉन्ग सुने होते हैं मजे मजे के। अच्छा जी जो तो यहाँ पर टाइम होता है हम बस एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के साथ जाएगा जी, ब्रेक पे जैसे ही जाएंगे वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बात रहेगी मेरे साथ।
1: It's 12:30 p.m. This time check.
2: ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
3: हा साईं ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे,
2: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
3: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
2: छा छा?
3: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि, हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
2: वाह सोणी वाह, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई, पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
3: साईं रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी।
2: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
3: हा साईं हा।
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: धर्माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, خود پولیو رنز دا قدمونه و دروله همشی نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی 2 ساسکی ورکول مهی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کزیاتوی او دا حقی دا خوبون و الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری।
7: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
8: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
9: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
10: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
11: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
10: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
11: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
12: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर आई

0: कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9186-51।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और सॉन्ग में प्ले करने लगी हूँ और सॉन्ग हम प्ले करते हैं, और सॉन्ग को प्ले करने के

0: प्ले और सॉन्ग को सुनते हैं, साथ एंजॉय करते हैं मेरे साथ और सॉन्ग को एंजॉय करते हैं. उसके बाद मैं करूंगी फरमाइशी सॉन्ग प्ले, जो कि मुझे फरमाइशी सॉन्ग प्ले करना था, याद होगा आप लोगों को. अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग भी कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बता दें. चलिए कोई बात नहीं, अब तो सवाल खत्म हो चुका है, सिग्नल हमारा वैसे ही खत्म हो चुका है, तो क्वेश्चन मेरा खत्म है. लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं वो जरूर मुझे बताइएगा. लेकिन अभी हम इस सॉन्ग को कर दिया प्ले, करते हैं मेरी पसंद के सॉन्ग को भी एंजॉय.
1: Kashmir Beats, Singing with the Stars, Season 1.

तो जी हम रहते हैं यहाँ पर भी हम लोग एक सॉन्ग, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे पसंद का एक सॉन्ग सुनेंगे, तो जी कोई भी न्यू सॉन्ग होता है तो वो मैं अकेले नहीं सुनती, हमेशा आप लोगों के साथ, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ ही सुन रही होती हूँ। तो आज भी ऐसा ही है बिल्कुल। जरा आप लोग मुझे अपनी एक्टिविटीज बताएं तो जरा कि आज आप लोगों की कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आज आप लोगों की एक्टिविटीज होने वाली हैं।

0: अच्छा जी, तो यहाँ पर भी हम बस एक छोटा सा टाइम होता है एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल की तरफ जाने का। अच्छा, जैसे ही हम छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएंगे। ये बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, कहीं जाएगा नहीं। और इसके बाद आके मैं अपने आपको पोएट्री बताऊंगी और उसके बाद हम चलाएंगे एक फॉर्मेटी सॉन्ग, उसके बाद करेंगे टाइडल ओवर लाइफ का टाइम वैसे ही हो जाएगा। तो लाइफ कर देंगे और अभी टाइम होता है छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का। ब्रेक में जाएगा नहीं, करते हैं एंजॉय बाकी की बातों को।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कम्प्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने कहा था कि मैं ब्रेक से जैसे आऊंगी अपनी पोएट्री आपको सुनाऊंगी और उसके बाद हम करेंगे एक और सॉन्ग को प्ले। और जैसा कि यहाँ पर टाइम हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और 10 मिनट में क्या क्या हम लोग बातें कर सकते हैं, तो जी चले मैं आपको बताती हूँ कि किसने मुझे कहा था कि पोएट्री सुनाने, आरजे जयपाल ने। तो क्या जयपाल आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी मैं अपनी पोएट्री आपको सुनाने लगी हूँ, तो देखते हैं और सुनिएगा रहिएगा मेरे साथ। कहते हैं कि खुशियों के जजीरों से सितारों की हदों तक, खुशियों के जजीरों से सितारों की हदों तक, शहर में सब कुछ है बस एक तेरी कमी है। आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आस ना न थी। यूं हमसे हर घड़ी है गुरेजा ये कायनात, यूं हमसे हर घड़ी है गुरेजा ये कायनात, जैसे हमारा हक ही नहीं कायनात पर। ये मैंने पोएट्री पेश की है आप सबको और आप मेरी तरफ से आप सबके लिए है, ये डेडिकेट करती हूँ आप सबको और लिसनर्स को आज के और इस सेगमेंट के सारे जो विनर हैं मेरे उन सबको ये डेडिकेट करती हूँ मैं अपनी पोएट्रीज और स्पेशली ये जो की थी और

और सिर्फ मैं आपको बताऊं कि जी और क्या बोलते हैं, अभी हम लोग यहाँ एक सॉन्ग प्ले करेंगे और जो कि जयपल की फरमाइश पर था ये सॉन्ग, और मैंने कहा था मैं लास्ट में बजा कर जी रखना है अपना, आप लोगों ने अपना बहुत सारा किया। अच्छा आज आज के सेगमेंट में बहुत सारे लोग मेरे साथ न्यू लिसनर्स मौजूद थे जी, बहुत खुशी हुई आप लोग जो जो मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम आए थे। तो ज़रूर आप लोगों ने क्या करना है, हर इतवार को मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी सुबह 11 से 1 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए हर इतवार रहेगा। अब आप लोगों का इंतजार भी मुझे जो न्यू लिसनर्स थे मेरे आज के, तो जी मेरे सवाल सुनने के साथ मुझे जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। और जब तक लिए अल्लाह हाफिज़ है, और जब तक अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखना, मेरी भी दुआ में हमेशा आप लोग रहते हैं। तो ऐसे ही है जी, और यहाँ पर अभी हम एक सॉन्ग को प्ले करेंगे जो कि जयपल की फरमाइश पर है, तो इस सॉन्ग को भी इंजॉय करेंगे साथ में, और उसके बाद जाएंगे अपने अपने घर, बल्कि मैं तो अपने घर जाऊँगी, आप लोग तो अपने घर पर ही बैठे हैं। ओके ओके जी, और कुछ ड्राइविंग का अलग अलग से दुआ है कि वो हमेशा की तरह मतलब अल्लाह ताला उनको सेफ सफर मतलब अता करने की तौफीक अता फरमाए कि वो अपने घर पे आसानी से पहुंचे, जो जो रास्ते में है भाई, पैदल चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, कार पे चल रहे हैं, जो भी है, और उसके अलावा जो घर में बैठा है अल्लाह ताला उनको मतलब उनकी परेशानी को ख़त्म करे। आप सबके लिए दुआ मेरे साथ, मेरी दुआ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी कि मैं मेरे दिल में हमेशा आप लोगों की दुआ रहती है, तो ऐसे ही आप लोग भी अपने दिल में मेरे लिए दुआ रखिएगा और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। जब तक मिलते हैं एक अगले सेगमेंट नए सवाल के साथ, तो जब तक रखना अपना बहुत सारा ख्याल दीजिए। मैं यहाँ पर कर दिया है सॉन्ग को प्ले, और ये है हम राजवी सॉन्ग, ओएसटी है ये है ड्रामा रूपोश का, ये जो है ओएसटी सॉन्ग है उसको मैंने कर दिया है प्ले, और ये सुनेंगे हम लोग।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मेडिकल ऐं डेंटल कॉलेजिस में दाख़िला लाइ MDK टेस्ट शुरू थी वई. सिंध जे 34,235 उमेदवारनि समेत मजमूई तौर ते 138,160 उमेदवार टेस्ट में हिसो वठी रहिया आहिनि. पंजाब में 49,199, खेबर पख़्तूनख़्वा में 38,841, बलोचिस्तान में 9,923, आज़ाद कश्मीर में 2,761, गिलगित बल्तिस्तान में 1,721, इस्लामाबाद में 1,245 ऐं हिकु आलमी मर्कज़ रियाज़ में 237 उमेदवार टेस्ट ॾींदा. जॾहिं त कराची, हैदराबाद, जामछरो, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काणो ऐं सखर समेत 8 सेंटर लाइ कमेटियूं क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि. PMDC ॼाणायो आहे त हर सूबे लाइ घटि में घटि 2 धार सुवालनामा तयार कया विया आहिनि. इम्तिहान लाइ हर पर्चे में 180 सुवाल शामिल हूंदा. IBA सखर जो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख इम्तिहानी सेंटर जे दौरे दौरान सख़्त गर्मीअ सबबि बेहोश थी वियो. कलात वेझो सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारिजी विया, 23 मुगी बाज़ियाब. ISPR मूजिबि 18 ऐं 19 सेप्टेम्बर जे विच वारी राति दहशतगर्दनि N25 ते चौकी क़ाइमु कई हुई. दहशतगर्दनि जो शहरनि खे अगवा करणु, भतो वठणु ऐं गाॾियूं फुरकण जो मनसूबो हो. सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे नापाक इरादा नाकाम बणाए छॾिया. फायरिंग जी ॾे वठि में 5 दहशतगर्द मारिजी विया, 23 मुगियुनि खे बाज़ियाब करायो वियो, जॾहिं त दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार हथ. घरू वज़ीर मोहसिन नकवी अॼु ईरान दौरे ते रवानो थींदो. ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जमान मोहम्मद इस्माइल बकाईअ चयो आहे त मोहसिन नकवीअ जो ईरान जो दौरो ॿ तरफ़े लाॻापन ते ॿधल हूंदो. मोहसिन नकवीअ जे ईरान दौरे बाबति कंहिं बि अमरीकी पैगाम जी ख़बर न आहे. वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीमी इंतज़ामनि बाबति इजलास. तालीम वारो वज़ीर सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी ऐं ॿिया अमलदार शरीक. वॾे वज़ीर पारां ॿीहर तामीर थियल स्कूलनि में दाख़िला मुहिम शुरू करण जी हिदायत. सिहत मुराद अली शाह चयो त सिंध में 838 नवनि स्कूलनि जी तामीर मुकमल थियण वारी आहे. नवनि स्कूलनि सां लॻभॻि 2.5 लख ॿारनि लाइ तालीमी मौक़ा पैदा थींदा.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: माशाल्लाह फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 03000-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारे से कसीदा जो कि हम सब लोगों ने मिलकर सुना। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो किस तरह आप हमें ज्वाइन करेंगे वो तरीके कार बताए जाएंगे। लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये तो बताऊं सबसे पहले कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए प्रोग्राम का जो सवाल यानी कि टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल जनाब, तो आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से टॉपिक पूछूंगी वो कुछ इस तरह से होगा कि आप सारे लोग मुझे बताइए। हाँ जी, सवाल को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि सवाल को अगर गौर से सुनेंगे तभी तो सही से जवाब दे पाएंगे ना। तो सवाल जो होने वाला है वो बिल्कुल ये होगा कि आप मुझे बताएं कि एक कमरे में 10 मोमबत्तियां जल रही थी, ठीक है, हवा से 2 बुझ गई, और आप मुझे बताएं सुबह कितनी मोमबत्तियां बचेंगी। हाँ जी, एक कमरे में 10 मोमबत्तियां जल रही थी, ठीक है, हवा से 2 बुझ गई, सुबह आप उठकर देखेंगे तो कितनी मोमबत्तियां बचेंगी, आपने ये बताना है मुझे। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे वो जरा आपको बताएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए। बिल्कुल जी, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है, और पेज पर आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जी, तो जल्दी जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई वाकई आप हमारी पोस्ट से कितनी ज्यादा मोहब्बतें करते हैं। वैसे तो कमेंट्स तो आप कर देते हैं, वो तो जरूरी होता है, लेकिन पोस्ट को लाइक और शेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आप ही हमारे साथ मौजूद एक प्रोग्राम का हिस्सा है, और टॉपिक को फॉलो कीजिएगा। ओके जी, तो टॉपिक जरा दोबारा से रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए। हाँ जी, टॉपिक मैंने ये पूछा कि आप मुझे बताएंगे एक कमरे में 10 मोमबत्तियां जल रही हैं, ठीक है, हवा से 2 बुझ गई, सुबह आप उठेंगे देखेंगे तो कितनी मोमबत्तियां बची होंगी वहां पर। ओके जी, तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम किस किसने इस्तेमाल करके देखी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के जो यूजर्स है ना वो माशाल्लाह बड़े सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितनी कमाल की प्रोडक्ट है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं, तो उसके लिए जल्दी से आपने क्या करना है, आपने नंबर्स के ऊपर रब्ता करना होता है, क्योंकि नंबर्स के ऊपर जैसे ही आप रब्ता करेंगे ना तो उससे सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जो भी आप मालूमात उनसे लेना चाहते हैं कि भाई साहब प्राइस क्या होगी या फिर हम कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, ये तमाम बातें भी आप उनसे नॉर्मली पूछ सकते हैं, और वो

0: को बता देंगे कि भाई आपने क्या करना है और कैसे करना है। ओके जनाब, तो जल्दी जल्दी से आपने डायल करना है 03-12-50-25-907। बुरी 312 50 पंजवी है 970 आई बियो नंबर आहे 03-27-38-43-09। बुरी 332 है 73-84-309 ही नंबर साइंस जिन्ते तमार रातो करे आराम सा पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के आई डी स्किन जे फेस वॉश के अवेलेबल कराए सगो था। ही बा प्रोडक्ट मार्केट में आयन जनाब अगर तमा इस्तेमाल करन चाहियो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा के मिले पई एंड डी स्किन जो फेस वॉश तमा के मिले पियो। ओके जी, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपने परचेज करना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है ताकि आपको भी पता चले कि भाईजान डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कितने कमाल के रिजल्ट्स हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से खूबसूरती का ख्याल रखते जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते जाइए। ओके जी, तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और जरा बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम अगर पोस्ट पर आते हैं तो यहाँ पर कासिर खान हमारे साथ मौजूद है, कहते हाय हेलो, और फरवा कहती है वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे, आप कैसी हैं आप, मैं ठीक हूं जी आप बताएं, और मोहम्मद अली हमारे साथ है, अजीम एके हमारे साथ है, ओके जी ओके बहुत शुक्रिया आपका भी, और बरकत नमादारी जमाली बलोच हमारे साथ है, आप हमें बलोचिस्तान से सुन रहे हैं, भाई को खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा फरवा लिखती है, आप ही अर्ज किया है चले आओ मेरे हमदम मेरी दुनिया अधूरी है हुजूम में दर्द से थक कर तुझे दिल ने पुकारा है। क्या बात है जी, बढ़िया हो गया ये तो। अच्छा फहीम भाई हमारे साथ कहते कुछ यादों असांजू याद रख जा, कुछ गालियों असांजू याद रख जा, असां गड हुजू न हुजू कुछ पल गड रहयासी ओ याद रख जा। वालेकुम अस्सलाम इन मौलाले सलामत, अजा छा लाही खुश आयो सफा चा को स्लेट कलम मस्जी डबे असां भी अची वयासी प्रोग्राम ते लाजवाब आए हमेशा जिया अवां वांगे बहुत शुक्रिया आई ठीक ठाक आयो तवां बुधायो पांजा हाल अहवाल। उन खां अलावा इंतजार अली हमारे साथ इंतजार अली वालेकुम अस्सलाम, और कहते असां भी अची वयासी तवां जे प्यारे शो में, तवां जो शो डाडो सुठो आहे, थैंक यू जी थैंक यू, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और मोहम्मद मीरन जिकराणी भाई हमें सुन रहे हैं, जेका बाबा से बहुत शुक्रिया। इमरान खान रुख हमें सुन रहे, नाइस यू, थैंक यू इमरान भाई। अच्छा हजार खान भाई आ चुके हैं, हजार खान जतोई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर हाउ आर यू, गुड शो थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। इंतजार भाई कहते अदा तुम्हारा शो लाइक एंड शेयर करे छड़ियो आई, थैंक यू थैंक यू। अच्छा शीजा की निदड़ी हमारे साथ है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम प्यारी आरजी वेलकम टू शो, तबीयत कैसी है मूड कैसा है, तबीयत बस ठीक ठाक ही है और मूड भी बस ठीक ठाक ही है। और वजीर हमारे साथ है, वजीर भाई हमें ठट्टा से सुन रहे हैं, डॉक्टर वजीर अली कहते नाइस यो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहा जाता है। और साथ ही साथ मोहम्मद अली हमें सुन रहे हैं, बाजी सिद्रा अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया, ठीक है जी, निदली ने भी टॉपिक का जवाब बता दिया, क्या बात है। असमत हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम असमत, और अनवर भाई हमें सुन रहे कहते अस्सलाम वालेकुम से सी गानो जरूर बुधायो, बिल्कुल भामा कोशिश क्या तमाम भाईरन जो पसंद जी फरमाइशू आए उन्हें हलाइंदासी प्रोग्राम में, पर तमाम पोस्ट के जरा लाइक एंड शेयर करना हलजो आई मुख्य बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कहीं कहीं परचेज करे वरतो आहे आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम केयर के इस्तेमाल करे पयो। दर्दे दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम डियर फेवरेट आरजे चंदा जानी, आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी हैं। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक अगर चोर ना ले गए हो तो 10 ही बचेंगे, 10 कैसे बचेंगे बताएं तो मुझे। निदड़ी कहती है कि वैसे उस दिन मेरा वाला ओएसटी प्ले किया था, हाँ जी बिल्कुल किया था मैंने 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सालार सिकंदर हमें सुन रहे हैं, सालार सिकंदर आपको वेलकम हो गया, दर्द दिल ने भी टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया जी। असमत लिखते हैं कि सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, मैं राइटर असमत मेमन खैरपुर मीरज से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। खैरपुर वाले लोगों के लिए भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जनाब, आप खैरपुर में कहीं भी किसी भी करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएंगे तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। इतनी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं कि जब आप परचेज करेंगे ना तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज करते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि आप अपनी खूबसूरती में किस तरह से इजाफा हासिल करते जा रहे हैं। तो मर्द हजरात हो गए या फिर खवातीन हो गई, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठा सकता है। अच्छा दर्दी दिल कहती है कि ख्वाब देख रही हूँ कि सच में आई हो, भाई क्या मतलब मैं कोई सालों के बाद आई हूँ। मैं तो रोज ही आती हूँ और दो दो मरतब आती हूँ, तो बस ये तो आप बातें बोलना बंद ही कर दे। वैसे कल के लिए थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि माजरत, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज्यादा वाली खराब थी, तो इसी वजह से आपको पता है कि अगर मैं, मुझे ना हल्का सा बुखार होता है तभी मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ, लेकिन वो ऐसा था कि पानी सर से ऊपर जा चुका था, बस इसी वजह से थोड़ा सा छुट्टी कर ली थी। बाकी आपको मेरी आवाज से अंदाजा हो ही चुका होगा कि मेरी तबीयत देखें ठीक नहीं है। तो मुझे तंग मत कीजिए ज्यादा गानों की फरमाइशें कर करके, वरना मेरा पारा हाई हो जाएगा। बस प्रोग्राम सुनते रहिए और पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बातें कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम किस किस ने इस्तेमाल करके देखी है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहेंगे ना, तो उससे ये फायदा तो हो जाएगा कि भाई आपके लिए आसानी हो जाएगी, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएंगे और वहां से जाकर इजीली डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को परचेज कर सकते हैं। अगर ये वाला सीन है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिल रही है लेकिन डी स्किन फेस वॉश अभी आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं हुआ, तो आप वो भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से नंबर के ऊपर रابطہ करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराते रहिए। ठीक हो गया, चलेंगे यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए, पूरी पूरी 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो यूज कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30 PM.
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1-1-1-4-7-5-2-6-4 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
3: नूरे जा पीओ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच।
4: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
5: हां भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा।
6: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
7: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो नवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
8: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
9: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
10: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
11: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
12: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 0300-338-5569।
13: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सोम

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली। मैं जरा भूल जाती हूँ मेहरापुर नूरियाबाद और जनाब लाड़काना की समाधि। तो जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी समातों का, मोहब्बतों का और चाहतों का बहुत ढेर सारा शुक्रिया। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें तो फिर तो भाई क्या ही बात बन जाती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ना, वो बड़े खूबसूरत हो चुके हैं, उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ चुका है। वैसे भी जब खूबसूरती आपको मिल जाती है ना तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि खूबसूरत हो जाए, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखें, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज तो करना ही पड़ेगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज नहीं करेंगे और खूबसूरती भी हासिल करना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा बाबू भाई। तो खूबसूरती हासिल करने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और साथ ही साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए। और इसी के साथ साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब बताते जाइए और हाँ, पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए। अच्छा, तो आज के प्रोग्राम का जो मैंने आप लोगों से टॉपिक पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं, हाँ जी, एक कमरे में 10 मोमबत्तियां जल रही थी, ठीक है, हवा से 2 बुझ गई, सुबह आप उठकर देखते हैं तो कितनी मोमबत्तियां बची होंगी वहां पर, आपने मुझे ये बताना है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं या वैसा बनना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे। अच्छा, तो बिल्कुल ज्वाइन करते जाइए और यहाँ पर मैं आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताऊंगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि कई मरतबा हमें जरा पता नहीं होता कि भाई हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, कौन से प्रोडक्ट हमारी खूबसूरती के लिए सही और साबित जो होंगे ना, वो हमें लगेगा कि भाई ये वाले प्रोडक्ट सही है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि आपकी स्किन कई मरतबा सेंसिटिव भी हो जाती है, कॉम्बिनेशन टाइप भी हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि भाई गर्मियों के मौसम में आपकी स्किन तो अलग होती है लेकिन सर्दियों का जैसे ही मौसम आ जाता है तो आपकी स्किन अलग हो जाती है, तो इस स्किन को कॉम्बिनेशन टाइप कहते हैं। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो या फिर सेंसिटिव हो, हर स्किन के ऊपर आराम से आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज क्यों कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर जरा आते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपने इसलिए करना है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सबसे पहली बात तो ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि 1000 गालन जी हिकड़ी गाल तही मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि जगह स्किन रिलेटेड डॉक्टर सुना है ना, उन्होंने मिली करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तैयार कयो आहे। अगर तवहां भी चाहियो था असां वटि कोई अड़ो प्रोडक्ट हुजे जेको भई असां इस्तेमाल कयूं, असांजी स्किन जी हिफाज़त भी थी वञे, असांजी स्किन ते खूबसूरती भी अची वञे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे यूज़ खां फौरन बाद ई तव्हांखे उहा खूबसूरती मिलण स्टार्ट थी वेंदी आहे। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर वाइटमिन ई बीड्स है जनाब, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, अल्फा आरबोटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें इसके अंदर एड की गई है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात हो रही है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं ताकि आपको खूबसूरती मिले वो भी नेक्स्ट लेवल वाले, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लगा कर देखे होंगे, मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं और उन्हीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और यही वाली बात हमें जो है ना परेशान कर देती है कि इतनी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट हमने जो है ना वो सही से सिलेक्ट करना है, स्किन को देना है, इस चीज में भी हम जरा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ताकि कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जाता है, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर किया जाए और आप लोगों को सीधा रास्ता बता दिया जाए कि आप अब बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो मैंने आपको विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के बारे में बताया है ना, तो इन दोनों चीजों का जो जिक्र है ना, ये मैं इसलिए बार बार करती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आप जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं वो कितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्योंकि विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी इतने ढेर सारे प्रोडक्ट ना, उनमें से सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन का यूज किया गया है। तो कुल मिलाकर ऐसा साबित होता है और ऐसा ये रियलाइज होगा आप लोगों को कि वाकई भाई आप कितने प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक ये भी बात है कि विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन का असर क्या होता है, यानी कि इससे क्या फायदा मिलता है। तो इससे फायदा और असर ये होगा कि भाई आपके चेहरे पर आप देखेंगे ना कि नॉर्मली आप जैसे भी कोई नाइट क्रीम लगाते हैं तो उससे आपको नॉर्मल सा रिजल्ट मिलता है, नॉर्मल सा रिजल्ट, ठीक है, ये चीज तो हर कोई जानते हैं। लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो ये एक नाइट क्रीम भी है, प्लस ये एक आपको फेशियल का रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट भी है, यानी कि ये 2-in-1 फार्मूला है। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगी जनाब ऐसी खूबसूरती, ऐसा निखार जो कि आप ऐसा
महसूस करेंगे कि भाई हम तो कोई लग रहा है कि महंगा सा कोई फेशियल करा के आए हैं। और यानी कि जो महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर ये विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स डाले जाते हैं, बिल्कुल वही माइक्रो बीड्स और विटामिन ई बीड्स डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी एड किए गए हैं। तो इतना कमाल का प्रोडक्ट जब आपके पास मौजूद है तो भाई तहां मतलब ना शुक्र आयो तहां नथा इस्तेमाल कयो। आपको इस्तेमाल करना चाहिए और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा सिद्रा बाजी इतना क्यों बताती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे जाके पूछिए भी उनको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। तो आप भी यूज करके देखिए, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके मुझे बताइए कि आपने भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लिया है। अच्छा, उन खां अलावा अगर तुम पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइन चाहो था तो तुम छाकना तुम्हारे नंबर जो बुधायो वे तो प्रोग्राम में उन्नति तुम्हें राबतो करो है और राबतो करण का फोन बाद तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराया वा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश कोई तुम यूज करना तक खबर पड़ी बाबा साई प्रोडक्ट है कमाल जो रिजल्ट है जो तक सिर्फ ब रात में मिलने वालों है। सो अड़ो को प्रोडक्ट गोले दिखारो जो तक ब रात में रिजल्ट दे तुम्हारे लिए सेफ भी हुए तुम्हारी स्किन के मुताबिक भी तैयार थियल हो। सो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे खूबसूरती के लिए सफा भलो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर। सो चाहे तुम मर्द हसरात आए चाहे तुम खवातीन आए हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे पानी खूबसूरती के बेहतर तरीके खां बेहतर बनाए सके थो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अगर आप कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा। आपके मैसेजेस की जाने भी आ रहे हैं, आप जरा टॉपिक को फॉलो करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए कौन कौन और कहां कहां से हमें सुन रहे हैं। मैं जरा आप लोगों को ये थोड़ा सा गाना सुनाती हूं और गाना सुनिए उस गाने के बाद जो है ना नहीं गाने के बीच में ही आप लोगों के मैसेजेस की जाने आ जाते हैं। तो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरे 3 बजे तक।

0: बोलो शीजा।
1: हाँ जी बोलो बोलो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हाँ जी अच्छा शीजा की निदड़ी हमारे साथ कहती है कि मतलब दोनों ही खराब है, मूड भी और तबीयत भी। अपना ख्याल रखो ना, तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अंदाजा है मुझे। और मोहम्मद राशिद अवान हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा, हमेशा खुश रहे आमीन, खूब इंजॉय कर रहे हैं आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया भाई जी आपकी मोहब्बतें होती हैं। चाचा खालिद हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा से जो हाउ आर यू, हो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं चाचा कैसे हैं। और कहते हैं अब कैसी है आपका नहीं नहीं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काफी। हजार भाई कहते हैं कि हवा से अच्छा सही है जी सही है। दर्द दिल कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही है, एक दिन नहीं आई तो हमें एक साल लग रहा है। अल्लाह रे एडो प्यार कंदा आयो छा सच में। अच्छा हिदायतुल्लाह आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम है ठीक हो कहते हैं। कॉपी सॉन्ग लाया हूँ मंजूर से किरानी का, लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी ठीक है देख लेंगे हम चला भी लेंगे। और रशीद खोसू भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, वालेकुम अस्सलाम प्यारी भाई को वेलकम कहते हैं। और चाचा खालिद कहते हैं आज आपको तंग नहीं करेंगे वेगी भाईटी, थैंक यू सो मच वेगा चाचा, या बस मोहब्बत बरकरार रखो, बाकी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज था वैसे ही कहो पया। और असमत कहते हैं कि राइटर असमत मेमन की तरफ से आवाज की मलिका अंदाज निराला, सिस्टर के प्रोग्राम ने दिल को संभाला आई लीड़े। अनवर भाई कहते हैं कि टॉपिक अब मैं समझा, अच्छा टॉपिक अब आपको समझ लगा है, सही है जी बढ़िया आपने सही जवाब दिया है टॉपिक के ऊपर। अच्छा असमत लिखते हैं कि सिस्टर जब बोले तो लगता है फूल खिले हो के गुलशन में, जैसे नगमे चले हो एफएम पर, आवाज से जगमगाती है हर शाम अपनी, सुनने वालों के दिलों में दिए जलते हैं। क्या बात है जी क्या बात है क्या बात है, बढ़िया हो गया ये। अच्छा वहीं भाई कहते भाव क्या हुआ था कि तबीयत को, बस ये मौसम चेंज हो रहा है तो उस वजह से सारे लोग ही बीमार हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, वरना तो मैं बहुत कम ही बीमार होती हूँ, क्योंकि जो लोग अपना ख्याल रखते हैं वो कम ही बीमार होते हैं। तो ख्याल तो बहुत ज्यादा रखती हूँ, लेकिन ऐसा है कि मौसम अगर चेंज हो जाता है तो इंसान ही जरा समझ गए होंगे। अच्छा हजार भाई जान लिखते हैं कि सिस्टर मैं तो तरस गया हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लिए, क्यों आपके यहाँ नहीं मिल रही क्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम, कहाँ रहते हैं आप बताएं तो। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं और आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, क्या बात है जी ये तो अच्छी बात है। और अबू हनीफ अलबलोशी हमें सुन रहे हैं कहते आंसर आपने दिया है बहुत बढ़िया जी, आपको भी वेलकम कहते हैं। और हजार भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सा कमेंट किया है, दुआएं भर भर के दे दी है बहुत शुक्रिया। और बतूल मेमन हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, आई एम बतूल फ्रॉम कांदड़ो सिटी से मटियारी स्टेशन से आपका प्रोग्राम अम्मी के साथ सुन रही हूँ, आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन और मटियारी स्टेशन से बहुत अच्छे सॉन्ग चलते हैं, सॉन्ग चलाएं प्लीज अब तेरी याद ओएसडी, चले मैं देखती हूँ अगर प्यारी मुझे मिल गया ये गाना तो आपके लिए हम लाजमी लगा देंगे बतूल, बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है,
1: आपको और आपकी अम्मी दोनों को वेलकम कहते हैं। और आप मुझे ये बताइए मटियारी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मैंने ये चीज जरा नोटिस करी है कि क्योंकि कई मरतबा खवातीन हो या फिर मर्द हजरात हो वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के चक्करों में आ जाते हैं जो भाई उनकी स्किन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन के लिए कोई अच्छा सा कोई सेफ सा प्रोडक्ट बता दें तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक तो ये बात है कि भाई ये मेडिकेटेड फार्मूला है, तो नो टेंशन कि भाई हमारी स्किन खराब हो जाएगी या हम सेंसिटिव स्किन वाले लोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, सारी चीजों के लिए मैं तो आपको यस ही बोलूंगी। तो लगाइए दिल खोल के लगाइए और स्किन का सारा ख्याल रखिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं।

ਹਾਂਜੀ ਨਗਾਲ ਮੇ ਸ਼ਕੁਨਾ बिल्कुल जी. सो आप मुझे बताएं कहां से सुन रहे हैं हम. आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली या फिर अभी तक नहीं? भाई मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं नहीं, मुझे ये भी बताइएगा. और इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो हमारे साथ यहां पर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप ही सिदरा में आयशा मेमन हूँ. आप हमें ठेड़ी से सुन रही है. आयशा मेमन डेली बेसिस पर हमारा प्रोग्राम सुन रही होती है. और आयशा मेमन जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज भी कर रही है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब भी खत्म हो जाती है तो फिर वो दोबारा लेने चली जाती है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके वो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी गोरी गोरी हो चुकी हैं कि सब लोग आयशा से उनकी खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं. तो क्या बात है आयशा, आपको वेलकम कहती है. आप इतनी प्यार और मोहब्बत और खुलूस से हमारे प्रोग्राम को पसंद करती है. बहुत शुक्रिया.

बिल्कुल जी, एक मरतबा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लेते हैं ना, तब तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के दीवाने बन जाएंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतनी कमाल की प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करने के बाद ही आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि दीवानगी के सिलसिले का हुए जो मुरीद, इस गेसुए दराज सवा पीर ही नहीं। हाँ जी, थोड़ी समझ नहीं आई बात। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। इंतजार कहते हैं कि अदा गानों तो बुधाए जो सब कुछ तो है तेरे नाल, मां दिसां थी तांजा गाना जेके लगी सग्या लिस्ट में सब हणाईंदासी, ठीक है, आई तां के बुधराईंदासी, पर तां थोड़ो सबर भी कंदा कयो। और चाचा कहते हैं आज कराची में गर्मी बहुत है, गर्मी तो खैर इधर भी है, पता नहीं क्या हो गया, गर्मी दोबारा से वापस आ गई, विच में थोड़ो असांके होप मिली वयो हो, तो बाबा हाने सी अच्छी वयो आए, सियारो अचण वारो आए, थोड़ी थोड़ी ये हल्की हल्की थदी थदी हवाओं हुई, भला डियां गुजरन पया, भलियू रातू गुजरन। गर्मी ने बोला इतनी भी जल्दी है क्या, अन्या ते असा हुंदा सी बाबा, तवा के ना थोड़ो तड़पाईंदा सी, सो वरी वराए गर्मी अच्छी वई है। और ये निदड़ी कहती है कि हमें यहाँ सर्दी लग रही है, इसका मतलब ये बुखार का जादू है। हाँ जी, कुछ ऐसा ही सीन है। तो फरवा, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है जी, ठीक है। और इकबाल आशारी भाई हमें सुन रहे हैं, आप हमें सुनते हैं जी मीरपुर खास से, क्या बात है, मीरपुर खास में भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगा, अगर आपने टॉपिक का भी जवाब दिया है, ये भी ठीक है। भाई फहीम के कान जो है ना माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, वो ऐसे सेंस कर लेते हैं सारी बातों को। ऐसा है ना फहीम, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये चीज जरा नोटिस करी है। अच्छा, अब्दुल गफार भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम खुलूस, वालेकुम अस्सलाम, और आप हमें मेलसी से सुन रहे हैं, मेलसी में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम भाई मिल रही है, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइएगा और मेलसी से आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मैंने देखा था मेलसी में भी मिल रही है, तो आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा, ठीक है अब्दुल गफार भाई। अनवर भाई, आपने इतनी लंबी चौड़ी सी शायरी भेज दी है, सो जरा मैं माजरत करूंगी, क्योंकि वैसे ही मैं थोड़ा कम बोल पा रही हूँ आज के प्रोग्राम में, तो इतने लंबे चौड़े मैसेजेस मतलब आज नहीं करें, ठीक है। हिदायतुल्लाह, आपने टॉपिक का जवाब दिया है और कहते ही एक भी नहीं बचेगी। हाँ भाई, आपने तो वखरा ही जवाब दे दिया। अच्छा, हजार भाई कहते मेरा जवाब गलत था इसीलिए मैं हंस रहा था। हाँ चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, इंसान को अपने ऊपर भी हंसना चाहिए। और इनका अलावा अब्दुल गफार भाई, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया जी। और ये अबू हनीफ लिखते हैं कि आंसर ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं या फिर नहीं, जल्दी से कीजिए, क्योंकि ये भी आप ही लोगों का काम होता है, तो कीजिए अपना काम, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए, जो नंबर आपको बताते हैं, ताकि नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे ना, तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, वो अवेलेबल हो जाएगा। तो डी स्किन का फेस वॉश हो या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, यूज करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। और हाँ, आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि भाई ये सारे प्रोडक्ट्स आप सब लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, तो चाहे वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, यूज कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए। जी जी, चाचा खालिद, आपने टॉपिक का जवाब दिया है जो कि मतलब सही है। अच्छा फरवा कहती है, आप ही मुझे शो की स्टार्टिंग में आपकी आवाज से पता चल गया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, मलिक नजर हमारे साथ कहते हैं, मलिक नजर हुसैन, ओके जी, खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपको वेलकम कहते हैं। अली रज़ा लगारी हमें सुन रहे हैं, कहते सिस्टर सिद्रा कैसी हैं, शो तमाम नाई से तमाम एसएमएस प्रोग्राम में शामिल करें, हम आपको एसएमएस करते हैं, आप प्रोग्राम में हमारा एसएमएस शामिल नहीं करती हैं, सिस्टर आप हमको प्रोग्राम में शामिल किया करें। जी जी बिल्कुल, भाई को शामिल प्रोग्राम रखा गया है। और उनका अलावा तां खींचूं था भली करी आया, तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर जो, ठीक है। और उनका अलावा इतनी टाइम था बाबा न्यूज ब्रेक वठूं था, उनका पोस्ट शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुआ, वापसी जल्दी मोटी तमाम नासी तवां की कार्ड नहीं बिनाए वणणो इते बैठा होचो मां हिया वनी ओ हिया मोटान थी। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

को भी रस्तो न आहे, मुतालबो न मञियो वियो त एहतजाज हुकूमत किराइण में तब्दील थी वेंदो। हुकूमत पंहिंजी ख़राब हुकुमरानीअ जो बदिलो अवाम खां वठी रही आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तरण चयो आहे त इस्लामाबाद में एहतजाज करण न ॾींदासीं, पीटीआई वारनि खे इस्लामाबाद में किथे बि रस्ता बंदि करण न ॾींदासीं। जमायत इस्लामीअ खे बि सलाह आहे त इस्लामाबाद तरफ़ न अचनि, कानून सभिनी लाइ बराबरि आहे।

आपघाती हमले जो केस दाखिल के समय दहशतगर्दी कत्ल कलम शामिल किया हुआ। FIR मूजिब पुलिस लाइन भरसा बारूद भरसा भरल गाड़ी जरिए आपघाती हमलो किया। हमले बाद दहशतगर्दन फायरिंग कई, 18 जना शहीद थी वया। पाक फौज पुलिस ए CTD दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सो वरतो। कलात वेझो सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मार विया, 23 मुखबी बाजियाब। ISPR मूजिब 18-19 सेप्टेम्बर के विच रात दहशतगर्दन इन 25 ते चौकी कायम कई। दहशतगर्दन जो शहरन के अगवा करण, भत्तो वठण, गाड़ी फुरकण जो मनसूबो। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई करे नापाक इरादा नाकाम बनाए छड़िया। फायरिंग की डे वठ में 5 दहशतगर्द मार विया, 23 मुखबीन के बाजियाब कराया वो। दहशतगर्दन के कब्जे में वे अंग में हथियार। हाँ हुकूमत बिजली खरीद न कंदी, बिजली पैदा कंदड़ इस्तेमाल कंदड़ पा में खरीद फरोख्त कंदा। तवानाई आरे वजीर अवेस लगारी चाहिए तो वापंदर पांजे मर्जी से बिजली खरीद करण जा पाबंद हुंदा। पावर डिवीजन बिजली नीलामी के लिए प्रोपोजल जारी कर छो। इंदड़ 5 साल तीन बिजली की नीलामी कई वेंदी। इंदड़ कुछ साल में बिजली एक मंडी जी हलंदी। PTI बानी जो जेल में तिबी मायनो जरिए घरू वजीर मोहसिन नकवी अज ईरान दौरे से रवानो थो। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान मूजिब इस्माइल बकई मोहसिन नकवी जो ईरान दौरो बतरफ लागापन बदल हों। मोहसिन नकवी के ईरान दौरे बाबत कें भी अमरीकी पैगाम की खबर ना है।

0: आलमी मार्केट में तेल जो अघ सस्तो थी वियो। पेट्रोल ए डीजल जी अघ में लात जो इम्कान। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जी अघ में घटताई रिकॉर्ड कई वही है। अमेरिकी तेल एक डाई 58% घटाई का 100 डॉलर फी बिलर थी वियो। बरतानवी तेल 103 डॉलर ए अमारती तेल 117 डॉलर फी बेरल थी वियो है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ तालीमी इंतजाम बाबत इजलास। तालीम वारो वजीर सैयद सरदार शाह चीफ सेक्रेटरी ए बिया अमलदार शरीक। वडे वजीर पारा बीहर तमीर थियल स्कूलन में दाखिला अमम शुरू करण की हिदायत। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो त सिंध में 838 नवन स्कूलन की तमीर मुकमल थियण वारी है। नवन स्कूलन से लगभग 2.5 लख बारन लाए तालीमी मौका पैदा थींदा। यमन का हौसी बागन जहा एक भेरों बीहर सऊदी अरब से मिजाइल हमला। रियाज से बैलिस्टिक मिजाइल जो हमलो नाकाम। सऊदी इतिहाद चवण है ताइफ बेश फुरसान बियन शहर से मिजाइल ए ड्रोन हमला नाकाम बनाया वया। हौसी बागन शहरी इलाक के निशानो बनाने की कोशिश कई। रियाज से फायर कया वया। बैलिस्टिक मिजाइल के अदब से पहुंचने का अग तबाह किया वो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मालवन भारन लाए खुश खबरी। 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो। जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अवहां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब है।
3: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी। خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکي ورکول مهیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزري مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03000310509।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मरीजन जो मायनो कंदा है राबते जिला
9: मेहरापुर के हो तो आवाज 204 की है। सुनते रहो जी FM 94,
10: सूरती का असल राज।

माजुदी जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एंड स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। क्योंकि आप लोग अगर अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले हैं, या फिर कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि हमें सही से कोई गाइड नहीं कर पाता कि भाई हमने क्या करना है, अपनी ब्यूटी से रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट का हमने जो ना वो परचेज करना है, कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। और इसी भागम भाग में जो है ना, हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब कर लेते हैं जो कि भैया हमें नहीं लगाने चाहिए थे। तो अगर आप भी इन चीजों से बचना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन जरा हटके और जरा उन प्रोडक्ट्स को भगा के जो आपके चेहरे को नुकसान पहुंचाए, और उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके जो आपके चेहरे के लिए सेफ हो और यस हो, तो उनके लिए आप लोगों को हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहकर ये तमाम बातें सुननी होंगी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये चीज आसान हो जाए और थोड़ी सी ये चीज आपके जहन में क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह के प्रोडक्ट का सिलेक्ट करना है, इस्तेमाल करना, और कौन से प्रोडक्ट को अपनी जिंदगी से बाय बाय बोलना है। तो अगर हम यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी ना, जब तो मैं इतनी बात करती हूँ। और जितने भी मेरे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं जिन्होंने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया है ना, उन तमाम लोगों से मुझे इतना पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स मिला है, यकीन कीजिए कि मैं खुद ही देख कर हैरान थी कि भाई ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इतना कमाल का आपको रिजल्ट मिल गया है। और मैं पर्सनली खुद भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रही हूँ। अब तो भाई डी स्किन का जो फेस वॉश आ चुका है ना मार्केट में, वो बेसिकली अभी अभी आया है, तो हम ये सोच रहे थे कि भाई डी स्किन का फेस वॉश भी आप यूज कीजिए और फिर हम भी इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ऐसा है कि पहले क्या पता हम ही इस्तेमाल कर लें, आपको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे, फिर परचेज करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस मत बनाइएगा, इसे बस आप आज ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, और जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उसके पर रابطہ कीजिए, और रابطہ करने के फौरन बाद ही उनको बताइए भाई साहब जल्दी कीजिए, फटाफट से हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम विद डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दे, ताकि हम इस्तेमाल कर सके और अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ा सके, असां भी जरा लश्कारा मारियो बेन मानन जी, असां भी सोना थी वञो, असांजी रंगत में भी इजाफो अची वञे, असांजे चेहरे ते भी ब्लैक हेड्स आहिनि, व्हाइट हेड्स आहिनि, क्रिकल्स आहिनि, रिंकल्स आहिनि, या फिर निशानात आहिनि, या वरी तव्हांजी रंगत थोड़ी सांवरी थी वही है। तो इन चीजों के हटाने चलाने चीजों के खत्म करने लाए बाय बाय करने चलाए तमाम के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज तो करो पंदो बाबा गाल तो सिद्धी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जो वो मर्द हज़रात भी करे सकन था, खवातीन भी करे सकन थी, यानी कि ही बिन्ही मानन जलाए, यानी कि तमाम चाहे मर्द हज़रात आयो चाहे तमाम खवातीन आयो, तमाम हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे सके तो। आई मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, नो टेंशन का, घबराने की गाल ही कोने का। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बिल्कुल बाबा उन डॉक्टर्स मिली करे तैयार किया जेके तमाम जी स्किन से रिलेटेड तवांके दवाओं वगैरह ॾींदा आहिनि डॉक्टर, बिल्कुल उहे डॉक्टर उन्हनि मिली करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे तयार कयो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांखे सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल खां फौरन बाद तव्हांखे भलो रिज़ल्ट ॾियणु स्टार्ट थी वेंदी आहे। सो ॿ रातिनि खां फौरन बाद ई तव्हांखे भलो रिज़ल्ट मिले थो, यकीन कयो बाबा तमामु कमाल जो प्रोडक्ट आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस करे ॾिसो, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो। ऐं अगरि तव्हां चाहियो था त बाबा असां अवेलेबल कराइण चाहियूं था, सिद्रा बाजी तूं नंबर त ॿुधाए, त मां नंबर ॿुधायांव थी, नंबर तव्हां नोट करे वठो ठीकु आहे। ओके जी, सो नंबर है 0333-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 आई बियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 बुड़ी 312-50-95-907 ही नंबर्स आहिनि जंहिं ते तव्हां राबितो करे ईज़ीली पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराए सघो था। फेस वॉश जी अगरि ॻाल्हि कई वञे बाबा, त फेस वॉश जे बारे में बि कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके तव्हांखे ख़बर हुजणु ज़रूरी आहे। कई मरतबा असां इन चीज़ में बि थोरो कंफ्यूज़ हूंदा आहियूं त बाबा असांखे साबुण लॻाइणु घुरिजे या असांखे फेस वॉश लॻाइणु घुरिजे। ऐं कुझु माण्हू त वरी ईअं हूंदो आहे जेके घणी ट्रेवल वग़ैरह कंदा आहिनि, त उन्हनि खे थोरो आसानी थींदी आहे त भई असां फेस वॉश लॻाइण वारा आहियूं, असां फेस वॉश यूज़ कंदासीं, या काफ़ी माण्हुनि जी मतिलबु चॉइस हूंदी आहे, त तव्हांजी चॉइस ते बि
डिपेंड करे तो अगर तुम फेस वॉश वठण जा शौकीन आयो या फेस वॉश तुम्हें घड़ो मतलब सही लगन पाँगी स्किन से लगने के लिए तो तुम डी स्किन जो फेस वॉश एक मरतबा मुझे चवण से लाजमी ट्राई कर दिसो छो तो बाबा डी स्किन जो जो फेस वॉश है ना इनके सफा मतलब एडवांस तरीके से तैयार किया है जैसे तुम नॉर्मली कोई भी फेस वॉश यूज किया हों तो उनको जी तुम रिजल्ट मिलो हों तुम थोड़ा सेटिस्फाइड हों पर जैसे तुम डी स्किन जो फेस वॉश यूज कर तुम्हें खबर पवी बाबा फेस वॉश चेबो शाखी है फेस वॉश एडो जबरदस्त है एतो क्रीमी फॉर्म में आए इन टेक्स्चर इनके अलावा हाइलोरोनिक एसिड सीरम इनके अंदर एड किया है जो तुम्हें स्किन के अंदर तीन वही तुम्हारी स्किन के डीपली क्लीन कह स्किन के मॉइस्चराइज कह तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट भी रख अलग से तुम मॉइस्चराइज करने की जरूरत न पवी या खोड़ सारा अड़ा वेचारा मू हूँ गोठवारा मू जिन खबर न होंगी तो असें स्किन की सही तरीके से केयर क्या करें घुर्ज तो तुम्हें इलाही सारा प्रोडक्ट परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत ना है बस तुम डी स्किन जो फेस वॉश वी अचो डी स्किन क्रीम वी अचो फेस वॉश से पाँच फेस वॉश कंदा रहो मुंह धोईंदा रहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अप्लाई कंदा रहो पे चेहरे से तुम जैसे ही बई प्रोडक्ट साथ में इस्तेमाल कर खबर पवी बाबा वाह जो रिजल्ट अच्छा स्टार्ट थी हाँ इनफ थी वही बस कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करो छो तो खूबसूरती तो असें मिली चुकी है सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए या वो डी स्किन जो फेस वॉश हुए तुम लगे ऐसो खूबसूरती जो ख्याल रखन ताजी पानी जिम्मेदारी होंगी है सो पानी जिम्मेदारी के पूरा करो हाँ पोस्ट के लाइक एंड शेयर भी कहना हलो जी अस खोड़ सारे मानों के बुधा सो तो बाबा मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश हाँ अवेलेबल थी वो है सो तुम इस्तेमाल कर पाया को यो भी तुम मुझे बुधाइंदा हलो तुम्हारा फीडबैक्स असा तमाम इंपॉर्टेंट हूँ सो फीडबैक्स दींदा हलो कें कें इस्तेमाल करने का बाद में कड़ो रिजल्ट मिलो तक वो भी तेयर कहना कर बाकी रही गाल अब टॉपिक पुछो है तो सवाल अच्छे प्रोग्राम

हाँ भैया गाली मारी सड़ी थी, बाकी बियो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल करे ॾिसो। अच्छा हितेश असां गॾु मौजूद आहे शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से शायर गाज़ी खान रिंद रिज़वान अली रिंद फैज़ान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कुनैन ज़हरा आपका शो सुन रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी FM की टीम को सुनने वालों को खुश रखे, आमीन सुमामीन। क्या बात है, कितने अच्छे लोग हैं, देख ले, सबको दुआएं दे रही, बहुत शुक्रिया।

ओके जी गोट मोहम्मद तैयब थे वो से हबीबुल्ला थेबू भाई कहते हैं आपका शो वेरी नाइस है सलाम आपको जी वालेकुम अस्सलाम आपको और हबीबुल्ला थेबू कहते हैं सॉन्ग बुद्ध राय जो हो सके तो मेरा एक काम करो शाम का एक पहर मेरे नाम करो हाजिर हाजिर हो सकेगा तो यो गानों तांज हलाए बैठूं था मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है हाँ जी बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोग बिल्कुल यही कह रहे हैं ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद फैजान अली रिंद और शहजाद अली रिंद कहते हैं बाजी जवाब खां पोए ते लगे तो मुखे तमाजो मैसेज थोड़ो मिसिंग पार्ट थी वयो आहे सो भाजो मोहब्बत हुआ है ता प्रोग्राम बुधो पया थैंक यू वेरी मच

ओके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो आदत बि हली वेंदी सही आहे ऐं तव्हांखे ख़ूबसूरती बि मिली वेंदी. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद साबित रहंदो. और हफ़ी सोलंकी में सुन रही है फ्रॉम मोरो सिटी, के फर्स्ट टाइम SMS किया है आपके प्रोग्राम में. वेरी नाइस शो, सलाम टू ऑल लिसनर्स एंड यू. टॉपिक का जवाब है, क्या बात है, बढ़िया जी. कहते हैं कि जो ठीक है एक्सप्लेन कर दिया सारा मैसेज. ओके, बहुत शुक्रिया आपको. हम वेलकम कहते हैं हफीज सोलंकी भाई और अंसर हमारे साथ हैं जी. अंसर भाई आपको भी वेलकम हो गया. शहजाद अली राजपेट फ्रॉम बसीरो कहते हैं कि तुम नजरों से दूर हो, आंखों से नहीं, ख्वाबों से दूर हो, ख्यालों से नहीं, तुम दिल से दूर हो के बाद आपका मैसेज ही हमसे दूर हो गया.

क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। ऐसे आधा मैसेज इंग्लिश में लेकर आधा उर्दू में लिखेंगे तो ऐसे ही होता है। सो कोशिश क्या करें, या पूरा उर्दू में लिखा करें या पूरा इंग्लिश में लिखा करें, ठीक है। और बहुत शुक्रिया शहजादा ही आप हमारे साथ हैं। और इरम हमारे साथ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, अल्लाह पाक जल्दी आपको सेहतयाब करे, आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। इरम कहती हैं यार मेरी भी तबीयत अभी तक थोड़ी सी खराब है, मेरे लिए भी दुआ करो जी, आपके लिए भी ढेर सारी दुआ। और इरम क्या कहती है, अच्छा इतना ही मैसेज था, ठीक है। अच्छा कहती हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब तो मैंने कब का छोड़ दिया, मेरे ख्याल में ये दूसरा साल स्टार्ट हो गया होगा या तीसरा। और ये मुनव्वर भाई कहते हैं, मुनव्वर अली मुगल मीरपुर खासी, हाय बेना लाड़काना में बिरयानी पुलाव या चावल क्या मशहूर है। भाई लाड़काना में तो सारी चीजें ही अच्छी मिलती है, मैं तो एक मतलब फूडी इंसान हूँ, तो मुझसे ये खाने पीने के मामले ज्यादा मत पूछा करें, क्योंकि मेरे पास च्वाइस नहीं होती। मैं कहती हूँ भाई ये भी चीज बड़ी अच्छी मिलती है, ये भी चीज बड़ी अच्छी मिलती है, तो मैं सही से आपको नहीं बता पाऊंगी कि भाई आपने क्या लेना है क्या खाना है। बिरयानी तो मतलब लव है, ऐसा समझ लें, बिरयानी तो मतलब सावा। सो बिरयानी तो कहीं से भी मिल जाए तो हमें अच्छी लगती है। असा एक दफा इतना बिरयानी खाधी से चंदा वाह वाह वाह, अड़ी बिरयानी तो कोई नहीं ठाईंदो हूं, वरी बेहंदा खाईंदा चंदा जी वाह वाह वाह, अड़ी बिरयानी तो कोई नहीं ठाईंदो हूं। सो हमारा ये वाला सीन चल रहा है। बाकी लाड़काना में बिरयानी बहुत सारी जगहों पर अच्छी अच्छी मिलती है, और पुलाव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिलता है। और मुनव्वर भाई कहते हैं मीरपुर खास में सुबह दो, ओके ओके, आपने टॉपिक का जवाब दिया सही, मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, ठीक ठाक है, आप बताएं जरा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं नहीं, ये भी बताइएगा।

0: गाना सुने, ये बड़ा ही अच्छा गाना है, और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। अच्छा, कुछ आप लोगों के कमेंट्स ऊपर चले गए हैं, तो जिनके नहीं रीड हो सकेंगे तो जरा समझ जाइएगा। और चाचा, मैंने नई पार्लर का कोई कोर्स वोर्स नहीं किया, और निदड़ी कहती है कि शायद बबर का गाना लगाएगा, बिल्कुल लगायूं था। और नसीम गुलाम दीन भाई हमारे साथ मौजूद है जी, नूरियाबाद से, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई को। करीम बख्श शर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। सादिकाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हुबदार अली शेख भाई हमें सुन रहे हैं, और मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। और आप हमें सखर से सुन रहे हैं, सखर में भी आपको आराम से जी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी, कहीं से भी जाएंगे तो, और जाइएगा परचेज कीजिएगा। वफा शहजादो मक्सी भाई हमें सुन रहे, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्लाह कहते हैं, वैसे आज कराची में बाबा सर्दी बहुत है। अच्छा अच्छा, ये आप तंज बड़ा अच्छा कर लेते हैं वैसे। बस ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलकर जाइए और सीधा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेकर आइए, ठीक है। और गुलाब बच्चों गुल हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। नहीं भाई, वो क्या है ना कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो इस सबको नजला बुखार और जुकाम हो चुका है। और चाचा कहते हैं, आपकी ख्वाहिशों को सराहते हुए डी स्किन ब्यूटी क्रीम वालों ने आपको ये आप से जरा किसने बोला है मुझे बताइएगा, तो क्योंकि एक आपका ऐसा कमेंट मैंने देखा जो ऊपर चला गया था, मैं जब तक उसके पास आती तो वो तब तक प्याला कर चुका था, तो मुझे बताएं जरा ये अफवाहें हैं या ये वैसे ही आपको सही पक्की वाली खबर है। मुझे ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं मिली। और कहते हैं जी, हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप लोगों के लिए तैयार की गई है। अच्छा, दर्दी दिल कहती हैं कि इससे भी कहीं ज्यादा प्यार है, दुआ है कि मेरी चंदा को, बहुत शुक्रिया मेरी जान, थैंक यू सो मच। फहीम भाई कहते हैं, भाउ असा अवां जो प्रोग्राम शोकस अब धंधायूं उन करे, आई नो इन मां इन चीज मां अंदाजो लगाए सकजे थो, त वाके तां प्रोग्राम शोकस अब धंधायो। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं, बुआ जी वेलकम इन दिस शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे मोहम्मद जमान भाई। तालिब मरी भाई हमें सुन रहे हैं, गोट लाल मोहम्मद मरी तालिब मरी, बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी वेलकम हो गया। और जी फरवा कहती हैं, आज आपको सॉन्ग ही रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू। निदरी कहती हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अच्छी है रे, मैंने यूज की है रे, और आप सभी यूज करो रे, ओके आना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तां भी पाना जेको मानो यूज करे वो सभी के बुधाए था बाबा, तां सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करो जे सभी के खबर पे था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो जो फेस वॉश आए वो केतरो कमाल जो आए, अगर तव्हां जे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कोने तो तव्हां जल्दी जल्दी अवेलेबल कराए वठो, जेको तव्हां के नंबर बुधायो आ प्रोग्राम के अंदर उन नंबर ते तव्हां राबतो कजो, तव्हां कॉल भी करे सघो था, तव्हां मैसेज भी करे सघो था, मैसेज कर या कॉल कर उनके बुधा तो बाबा तुम किथा आयो, तमां डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराने चाहियो था, तो वो जल्दी तमां जे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए छड़ींदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश तमां जे लाए बाबा, ट्राई करी दिसो, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आए, जल्दी मोटी तमां डेटूं था, तमां इते बैठा हो, ओहीं वनी ओहीं मोटू था, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।
1: जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो, आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें, शराइत और जवाबित लागू है।
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो, A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो, स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे, उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। आपते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
1: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी। نپدی وجہ دا پولیو دا ہر مہم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی، او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی 2 ساسکی ورکول مہی روی، زکچ ہم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کزیاتوی او دا حغی دا خوبون والوت وزری مومی۔ پولیو یعنی مستقل مازوری۔
5: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو۔ ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ RPMG ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی۔ ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر، رابطے دے لائے 0320-1800-003۔
0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراپور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں۔ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراپور، 0300-338-5569۔
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
6: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 शाम 5 ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 03016196851
0: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले
7: आहे तकरीबन पर कोई भी अगर इया तो तमा जे करीबी जनरल स्टोर से कोन मिली रही है तो तमा के जेको नंबर बुधाए तो नंबर ते राबतो करी बैठो आई राबतो करने का फौरन बाद ही तमा जे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल थी वेंदी बाबा मदीस स्किन ब्यूटी क्रीम आई अगर तमा नंबर अन्या ताई नोट ना है कर तो तमा के एक दफो बियर नंबर बुधाए दी नंबर के नोट करी बैठो ओके जी नंबर आहे 03273834309 बड़ी 300 है 63 84 309 आई बियो नंबर आहे 03125025907 बड़ी 312 हां 50 25 है 907 आई तारिक भाई जो ये नंबर था तारिक भाई सफाई है मतलब मोबाइल ते चढ़ो बैठो तव्हां जंहिंमहिल बि फोन कंदा न तारिक भाई अटेंड करे तव्हांखे चवंदो हलो ॿुधायो बाबा किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइणी आहे ऐं पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में मिंट में अवेलेबल थी वेंदी सो तव्हां राबितो कयो बाबा ऐं फोन करे उन्हनि खां पुछो हाल अहिवाल वठो किथे किथे अवेलेबल आहे ऐं हिते हिते फलाणी फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन जो फेस वॉश हुजे नथो मिले त तव्हां उन्हनि खां पुछा करायो उन्हनि खे चओ ठीकु आहे उन्हनि खे ॾसियो बाबा त किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराइणु घुरिजे ओके जी सो तव्हां ताईं जिते जिते बि मुंहिंजो आवाज़ वञे पियो तव्हां सभु माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश जो यूज़ कयो बाबा ख़ूबसूरती हाणे तव्हांजी तव्हांजे हथनि में आहे छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश हाणे तव्हांजे सफ़ा ग़रीब अची पहुतो आहे सो तव्हां बि इस्तेमालु कयो प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहिनि तव्हां हेॾा मतिलबु पंहिंजी सॼी ज़िंदगी में जेके बि प्रोडक्ट लॻाया हूंदा आहिनि उन्हनि खां 10 गुना छा मतिलबु 100 गुना ज़्यादा ई प्रोडक्ट बहितरीन आहिनि ऐं हिननि खे मेडिकेटेड फार्मूले सां तयारु कयो वियो आहे ऐं स्किन सां रिलेटेड जेके डॉक्टर्स हूंदा आहिनि उन्हनि मिली करे ई फार्मूलो ईजाद कयो आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां ट्राई करे ॾिसो तव्हांखे यकीननि ॾाढा सुठा ई प्रोडक्ट लॻंदा सो तव्हां अॼु ई इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे 2 रातिनि जे इस्तेमाल खां फौरन बाद ई रिज़ल्ट ॾींदी छो त हिन जे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि माइक्रो बीट्स आहिनि ही 2-in-1 फार्मूलो आहे यानी कि नाइट क्रीम बि आहे तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी अहिड़ो जो ॾियणु तव्हां फेशियल करायो आहे सफ़ा महांगो फेशियल करायो आहे सो मुनासिब पैसनि में तव्हांखे अगरि को एॾो सुठो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे त बाबा को नाशकरो हूंदो जेको न कंदो वञो बाबा परचेज़ कयो इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी अचो

जी। अच्छा फहीम भाई, हिते नंबर सिंधी में हिकु हिकु करे ॿुधाए अदा, जीअं ॿुड़ी हिकु ॿ टे चार पंज, असांखे 300-400 लिखण न ईंदा आहिनि, तव्हां 1-2-4-5 वारो लिखो सही आहे। ॿुड़ी 300-400 वारो जेके हूंदा, जेके लिखण वारा उहे लिखी वेंदा, सही आहे। तव्हां 1-2-3-4 वारो लिखो। और इन लाइ मां तव्हांखे भई ॿिन्ही तरीक़नि सां ॿुधाए छॾींदी आहियां, तव्हां पोस्ट खे लाइक शेयर नायो कंदा, तव्हांजो कसूर आहे। सो पोस्ट को लाइक शेयर कीजिए। और जी हिदायत अल्लाह कहते हैं कि नहीं जाते ना आपका शो भी सुनते ही आदत हो गई है, अब ना सुने तो मजा नहीं आता। अच्छा मन यह गाल हुई, सही सही। अच्छा रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं बहन अहमद मुगल का कोई भी गाना आपसे एक वीक से फरमाइश कर रहा हूँ, प्ले नहीं। नहीं भाई, मैंने तो अहमद मुगल का आज ही गाना देखा आपकी फरमाइश में, तो मैं देखती हूँ टाइम बच गया तो लगा देंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं जी दर्द दिल, कहती है कि किसी ने मुझसे पूछा तुम हमेशा हर किसी के लिए क्यों मौजूद होती हो, मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसा महसूस होता है जब आपके लिए कोई भी मौजूद ना हो। अच्छा तो गाल कही दे। अच्छा तालिब मरी भाई, बहुत शुक्रिया, आप बताएं आपके सिटी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं। अच्छा ये पूछ रहे हैं कि भाऊ लाड़काना में चिंगचियों का हवाल बताओ, चिंगचियों जो सागो ही हाला बाबा चिंगचिन की वरी छाती दो। ये हमारा जिगना हराम करेंगे। और हजार भाई कहते हैं कि हम भी आपका शो एंजॉय कर रहे हैं सिस्टर, बहुत शुक्रिया जी, एंजॉय करते रहिए। रमजान भाई कहते हैं कि मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि देना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है, वाह वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। और कहते हैं कि लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, वाह वाह वाह वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। दर्द दिल कहती है कि बस करो चंदा मेरे मुंह में बिरयानी का नाम सुनते ही भाई मुंह में पानी आ गया, क्या बात है। तमाम भी बिरयानी लवर आयो ना करें भाई। रहमान अली शंबानी भाई हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। निदली कहती है कि लाड़काना में हाँ जी हाँ जी सभी अच्छे हैं, बस ये जो पहली आपने चीज लिखी ना उसको छोड़ के। अली रजा लगारी भाई हमें सुन रहे, कहते गोठ जाम खान लगारी से, अली रजा लगारी सिस्टर वालेकुम अस्सलाम भाई, आपने वही मैसेज कॉपी पेस्ट कर दिया, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। और आपको दिल के तांगे रही से वेलकम कहते हैं। और आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा। और गुलाम मोहम्मद मरी बलोच वालेकुम अस्सलाम सिदरा, बिल्कुल ठीक ठाक है। और आप हमारे साथ हैं डॉक्टर कश्यप मरी बलोच फ्रॉम मीरपुर खास, ओके डॉक्टर कश्यप मरी को हम दिल से वेलकम कहते हैं, शो बेस्ट है सिद्रा जानी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कश्यप। अच्छा मुगल उमरानी भाइयों में सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, स्टिकर्स भेज दिए हैं। और कामरेड मोला बख्श हमारे साथ हैं, कहते हैं माशाल्लाह शो, थैंक यू जी। और अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि मैम आपका प्रोग्राम बहुत नाइस है, 2 घंटे ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई गम है ही नहीं। हाँ बाबा हाँ सही था जो दुनिया में गम किथे आए न, ये अजायो माण्हू नेॾो मतलब मथे ते खयो आहे ॾुखनि खे, ना ही बाबा कुझु भी ना है, पानी जिंदगी में चिल रहो रिलैक्स रहो मूड के सफाई हैप्पी शेपी रखो, कुछ भी ना है, खिल भोग में जिंदगी गुजारे हो बाबा, 4 दिन जिंदगी लगे तो 2 दिन गुजरी वया बाकी 2 दिन बचाए सो एंजॉय कयो एंड डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो।

क्या बात है, दर्द दिल कहती है कि जब तुम आ जाती हो चंदा शो करने। हाँ हाँ, मैं तो आ ही गई हूँ, लेकिन अब आप बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके घरों में कब तक आ जाएगी। हाँ भाई, तो बिन हयाती अजाब आ, पर कई भी माण्हू केतिरो पंहिंजे ज़हन ते सवार न कयो, न खां बिना हयाती सफ़ाई अज़ाब लॻे थो बाबा। खोड़ चीज़ूं आहिनि मोहबत के सिवा, और बि बहुत चीज़ें आहिनि भई दुनिया में। अनवर भाई हमारे साथ, अनवर भाई थैंक यू सो मच। फरवा, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। हज़ार भाई कहते हैं, सिस्टर आज आपका शो लाजवाब, जबरदस्त और बेहतरीन था, मजा आ गया शो सुन के, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और अली रजा लगारी भाई, आपको भी प्रोग्राम हमारा पसंद आ गया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गोठ जाम खान लगारी में तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी कोन, अली रसा भाउ मूंखे ॿुधाए जो, जंहिंसां ख़बर पई त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर जॻह ते मिली रही आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाए छॾींदो, तव्हांजी ज़िंदगी खे चेंज करे छॾींदो। छो त हाणे मार्केट में अहिड़ा भला भला प्रोडक्ट अचनि था, तव्हांखे इन चीज़ जो शायदि अंदाज़ो न हूंदो, तव्हां जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट आहे।

0: जियो करे से
1: दुखने जो माज में मार था।
0: अच्छा नजर मोमन भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम छाला तानो खुशायो सफा मोबतुआन बाबा प्रोग्राम के पसंद कयो पया मोमन जमान भाई ये दे अरे हां बाबा डी स्किन ब्यूरे क्रीम का वन फुल ड्रम परचेज कर रखा हुआ है कमरे की साइड में घर आने जाने वालों को कहा है कि यहां से डुबकी मार के जाया करो मुखे लगल सर के डबी उनन के दींदा हुंदा बाबा ये खणी वणो पर उनन के ता टुबो डारायो था सही है यो भी सही है। अच्छा ये हमारे साथी जी फहाद बलोच भाई वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे ही ठीक ठाक है मजे में है। और चाचा कहते हैं लास्ट सैडी लिंक शाम 5 बजे वाले शो में आओगी आप हाँ बिल्कुल ही नमी आया है तो नमी और फहाद भाई कहते काफी टाइम के बाद आज आपका शो सुन रहा हूँ शामिल हो रहा हूँ आप सिद्रा थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई रोज ही आया करे ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करे नहीं बताए तो

नहीं फहीम भाई, वो डर डर के नहीं, बस ऐसा है कि थोड़ा गला खराब है ना, तो उस वजह से वो आपको ऐसा लग रहा होगा। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। साईं वरी चंदा असांखे 1, 2, 3, 4 भी लिखना नहीं आता। अरे बाबा बाकी छा ईंदो अथव लिखण? अच्छा कॉमेंट लिखण ईंदो अथव। सही सही। बाबा शायद बबर हले तो ॿुधोसि।

अच्छा जाग जा नहीं चाचू हमारे साथ कहते हैं मास्टर मंजूर जो गानो चाचू हली वयो आई तां नबो दो छाबला डेडिकेट कर तो अजरा खोसो आई मुखे सो थैंक यू सो मच तां सा गड मौजूद आयो। मुनवर भाई कहते हैं कि जी हां बहना फेस वॉश का इस्तेमाल करता हूं रोज। मैं ठीक हूं अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। ऐसे ही ठीक ठाक रहें खुशबाश रहें और हमारे साथ रहें। एरम कहते हैं कि यार आपने थर्सडे को शाम वाले शो में बताया। हाँ ना तभी से बस सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया हमारा। और ये मुनव्वर भाई कहते कि बेना भाई ये आपने कैसी बात कह दी, उनको तो हमारा प्रोग्राम नहीं अच्छा लगता। सच में ये देखकर मुझे बड़ी

हा भाई सही आहे, भलो आहे तव्हां पोस्ट खे लाइक शेयर कोन कयो अञा ताईं, करे वठोसि हाणे थोरो टाइम बचो अथसि. सही आहे, ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु कोन कयो त करे वठोसि बाबा, थोरो टाइम बचो प्रोग्राम ख़तम थियण में. बाक़ी त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था, तव्हां राजो लॻायो, ठीकु आहे, लॻाए सुम्ही पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे एॾा भला रिज़ल्ट ॾींदी, तव्हां पाण चवंदा वाह वाह असां छो एॾी लेट कईसीं. डी स्किन ब्यूटी क्रीम त असांखे तॾहिं लॻाइणु घुरिजे पई जॾहिं सिदराबाजी पहिरियों प्रोग्राम कयो हुयो. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां हाणे बि यूज़ करे सघो था, तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो. ऐं खूबसूरती जी दुनिया में तव्हां बि कदम रखो बाबा, तव्हां सभु मर्द हुजो मायूं हुजो, तव्हां सभु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था. ऐं अगरि फर्ज़ करियो तव्हां क्रीमुनि खां थोरो अवॉइड कंदा आहियो, न इस्तेमालु करे सघंदा आहियो, या फिर कोई मसलो आहे स्किन सां रिलेटेड, त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे सघो था, ठीकु आहे. ऐं डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न उहो तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी वाक़ई बाबा एॾा भला भला फेस वॉश मार्केट में अची विया आहिनि. पर डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे उनजो त कमाल जो रिज़ल्ट आहे, तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो ऐं तव्हांखे ख़बर पवंदी त केॾा भला प्रोडक्ट आहिनि. सो यूज़ कयो ऐं ख़ूबसूरत रहो बाबा.

ये गाना बहुत अच्छा है. ड्रामे को जरा थोड़ा साइड पे रख के बात करें तो बीना ने सारे पाकिस्तान क्या मतलब इंडिया की भी ख्वातीन का जो दिमाग है ना थोड़ा सा खराब कर दिया है. वो ऐसे क्योंकि बातें सारी ठीक है, बस वो जो उसने तरीका चुना ना वो थोड़ा सा गलत था. खैर सारे हसीने चेहरों. अगर ऐसा होता मतलब अगर मतलब मुझे ये चीज होती कि मैं इस ड्रामे को जरा सही तरीके से बताती तो हाँ वो चली भी जाए कोई मसला नहीं. लेकिन उसने ऐसा था कि वो अपनी स्किल्स को ज्यादा इम्प्रूव करती, कुछ अच्छा अपने लिए करती, कोई बिजनेस करती, कोई एनजीओ खोलती वुमेन राइट्स के हिसाब से. लेकिन ये क्या तरीका था बहन. अजीब ही औरतों का दिमाग खराब हो गया. यानी कि इसने प्रूव कर दिया कि ये सईम जाहिल. मौसम बहार का. बाकी सारी बातें साइड पे, गाना बड़ा अच्छा है तो हम एंजॉय करेंगे. फहद भाई अपनी स्टडी को जरा अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, पढ़े लिखे देश का नाम रोशन कीजिए. और दर्दे दिल बहुत शुक्रिया मेरी जान. निदड़ी आपका भी बहुत शुक्रिया. ओ इन्ना शाला. अली रजा लगारी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे पूरे प्रोग्राम में. और फहीम भाई मेरे लिए तो वही. अच्छा मजे भाई आपके तो फिर. यासीन खंड हमारे प्रोग्राम में लास्ट में आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी वेलकम हो गया. चाचा खालिद हाँ जी, और भी बहुत दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा. और जी हिदायतुल्लाह थैंक यू वेरी मच. हजार भाई आपका भी बहुत शुक्रिया. इसी के साथ बस लेते हैं आप लोगों से इजाजत. जब तो याद अच्छा जेको मानू चाहे तो ना गिफ्ट गिफ्ट दियो असांगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम असां गिफ्ट दियो तमा सबरीन की यारा तोफन जी सलामी आई तमा के ना तोफन जी अगया बिहारे करे मौसम बहार वठो बाबा पान एतरो भी पान दी खर्च नकंदा वडा कंजूस आया कसम सा. ये पैसा बचाए ता के बंगला ठहराणा है. वठी तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश हणो खुश थियो जिंदगी में खूबसूरती के दिसी आई वरी मिलू था ता सा पंची बची वाली प्रोग्राम में. सो से जो लोग हैं मिलते मेरे लिए. हाँ जी मोकलानी ना है सलामत साथ सलामत. अपना इन्ना शला ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक

0: असली चीजां चारों मसालों जी सुन्याण पर ट्रेडमार्क नंबर 34,000 डीसी करे खरीद कंदा जीजान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जीजान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद जीजान चारों मसालो जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके भी सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फ्रेंड।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-96-8051
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
0: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Subah ho ya sham, bas GAF.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: ਬਦਣੋ ਆਏ ਪਰ ਧਰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਮੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਹਿੜੀ ਹਾਲਤੁਨਿ ਮੇ ਧਰਨਾ ਆਣ ਸਮਝ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਹਿਨਿ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਸਭਿਨੀ ਜੀ ਗਡਿਯਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਏ ਜਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮੀਅ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਖਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤਾਈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਚਯੋ ਤ ਅਸਾਂਜੋ ਇਹਤਜਾਜ ਰਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਆਏ ਨਈ ਭੰਜਣ ਰਾਹ ਚਾਹਿਯੂੰ ਥਾ हुकूमत वट लेवी खत्म करण का सवाए बो को भी रस्त न है मुतालबो न मो वो तो एतजाज हुकूमत किरायो हुकूमत पांजी खराब हुकुमरानी जो बदलो अवाम मां वठी रही है पीपल्स पार्टी तरफा जमायत इस्लामी जी लांग मार्च जी हिमायत सूबाई वजीर नासिर शाह तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी पेट्रोल लेवी के खात्मे की गाल कई है पीपी मामलों कौमी असम्बली सेनेट में बो थारियो तेल अगन में वाद से आवाम जो तकलीफू वधन थियं जमायत इस्लामी से सियासी इख्तिलाफ़ पांच जाय ते पर ट्रेन मार्च की हिमायत कयूं था संदन एतजाज पुरमन हों वफाकी वजीर अतातरण चयो आहे त इस्लामाबाद में एतजाज करण न ॾींदासीं पीटीआई वारनि खे इस्लामाबाद में किथे बि न ॾींदासीं जमायत इस्लामीअ खे बि सलाह आहे त इस्लामाबाद तरफ़ न अचनि कानून सभिनी लाइ बराबरि आहे

सियासी जमायतुनि जे एहतजाजनि खे ॾिसंदे इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ते कंटेनर रखिया विया। श्रीनगर हाईवे जे 9 भरिसां कंटेनर रखिया विया। श्रीनगर चौक, डीजी चौक मार्ग लाइ भरिसां बि कंटेनर रखिया विया। पंजाब हुकूमत अटक पुल ते लोही सीखण वारा कंटेनर लॻाए छॾिया। पंजाब जे सिंध समा वारे वज़ीर उज़्मा बुखारीअ चयो आहे त पीटीआई बानीअ जा ॿार लंडन में आराम पिया कनि, हिते केपीअ जे ॿारनि खे सियासत लाइ इस्तेमालु कयो पियो वञे।

तकलीफ़ जो एहसास आए। पेट्रोल अघनि में अवाम खे रिलीफ ॾेई रहिया आहियूं। आलमी मार्केट में तेल जा अघ आसमान ते पहुतल आहिनि। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो आहे त ख़ितो इंतिहाई नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे। क़ौमी मफ़ादनि ऐं मुल्की ज़रूरतुनि मूजिबि फ़ैसिला कया पिया वञनि। कराची में सुपर हाईवे भरिसां घर मां 5 घर भातियुनि जा लाश हथ। पुलिस जो चवणु आहे त एहसनाबाद में फ्लैट मां 5 घर भातियुनि जा लाश मिलिया आहिनि। ज़ाल मुड़ुस ऐं 3 ॿारनि जा केतिरा ई ॾींहं पुराणा लाश मिलिया आहिनि। वधीक जांच कई पई वञे। लाहौर पुलिस पीटीआई बानीअ जी भेण अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे वरितो। अलीमा ख़ान जे ख़ानदाननि ज़रियनि मूजिबि अलीमा ख़ान खे लाहौर जे अरपा माल वारे घर मां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। पीटीआई बानीअ जो जेल में तिबी मुआइनो ज़रियनि मूजिबि बानीअ जी ब्लड प्रेशर ऐं रत जी चकास कई वई। मेडिकल टीम में शिफ़ा आई अस्पताल ऐं पिम्स अस्पताल जा डॉक्टर शामिल हुआ। हाणे हुकूमत बिजली ख़रीद न कंदी। बिजली पैदा कंदड़ ऐं इस्तेमाल कंदड़ पाण में ख़रीद ऐं विकिरो कंदा। तवानाई वारे वज़ीर अवेस लगारी चयो आहे त वापिरदार पंहिंजे मर्ज़ीअ सां बिजली ख़रीद करण जा पाबंद हूंदा। पावर डिवीज़न बिजली नीलामीअ जे लाइ प्रोपोज़ल जारी करे छॾियो। ईंदड़ 5 सालनि ताईं बिजलीअ जी नीलामी कई वेंदी। ईंदड़ कुझु सालनि में बिजली 1 मंडीअ जीअं हलंदी। कलात वेझो सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारिजी विया। 23 मुगवी बाज़ियाब। ISPR मूजिबि 18 ऐं 19 सेप्टेम्बर जे विच वारे राति दहशतगर्दनि N25 ते चौकी क़ाइमु कई हुई। दहशतगर्दनि जो शहरनि खे अगवा करण, भतो वठण ऐं गाॾियूं फुरकण जो मनसूबो। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे नापाक इरादनि खे नाकाम बणाए छॾियो। फायरिंग जी ॾेवठ में 5 दहशतगर्द मारिजी विया। 23 में मुगबिन खे बाज़ियाब करायो वियो। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार हथ। कुवाट पुलिस लाइन ते आपघाती हमले जो केस दाख़िल करे छॾियो। केस में दहशतगर्दी क़त्ल ऐं ॿिया कलम शामिल कया विया। FIR मूजिबि पुलिस लाइन भरिसां बारूद सां भरियल गाॾी ज़रिए आपघात हमिलो कयो वियो। हमले बाद दहशतगर्दनि फायरिंग कई। 21 ॼणा शहीद थिया। पाक फ़ौज, पुलिस ऐं CTD दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हिसो वरितो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी अॼु ईरान दौरे ते रवानो थींदो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जमान मूजिबि इस्माइल बकाई चयो आहे त मोहसिन नक़वी जो ईरान दौरो ॿतरफ़े लाॻापन ते ॿधल हूंदो। मोहसिन नक़वी जे ईरानी दौरे बाबति कंहिं बि अमरीकी पैगाम जी ख़बर न आहे।

0: वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीमी इंतिज़ामनि बाबति इजलास, तालीम वारो वज़ीर सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी ऐं ॿिया अमलदार शरीक। वॾे वज़ीर पारां ॿीहर तामीर थियल स्कूलनि में दाख़िला मुहिम शुरू करण जी हिदायत। सैयद मुराद अली शाह चयो त सिंध में 838 नवनि स्कूलनि जी तामीर मुकमल थियण वारी आहे। नवनि स्कूलनि सां लॻभॻ 2.5 लख ॿारनि लाइ तालीमी मौक़ा पैदा थींदा।
1: मेरे से चक्कर लेना बहुत महंगा तुम्हारे लिए पड़ेगा, जरा सोचो समझो। एक आदमी था पहले मेरे से चक्कर ली, आज तक उसकी लाठी लिया
2: चैलेंज देम टू कम इन अ रेस्ट्रिक्ट इफ दे कैन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस।

0: अगूणे वजीर आजम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे के मोभी पुट शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की टी वर्सी अज मलाई पई वे गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में कारकुनन की आमद जो सिलसिलो जारी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर है तो शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो समेत सतन शहीद की वर्सी है। टीह साल गुजरी व्या पर असा सा गड उन शहीद के भी इंसाफ न मिली सको है। इन निज़ाम असा के दबाने की कोशिश कई है, असा के अलाह इंसाफ डी इन दुनिया में जैसी तई मुमकिन हों ओतरो इंसाफ हासिल कर जिदोजहद जारी रखी। जामछोरो में बिजली की अण ऐलानियल लोडशेडिंग ए बदमनी खिलाफ एहतजाज, वधंदड़ बदमनी चोरी ए फुरन सा गड मंशा के विक्रे खिलाफ अवामी इतिहाद पारा एहतजाज किया वो। शहर के मुख चौक का रैली कढ़ी वही, रैली में सियासी समाजी इल्मी अदबी तंजीम जो अगवाण शरीक। शहरन अण ऐलानियल लोडशेडिंग सबब कारोबार मुतासिर थी रो है। बदमनी ए मंशा के विक्रे सबब अवाम अजाब में वरतल है। बदमनी से जब्तो हाँ लोडशेडिंग खत्म कई वे। भान सैदाबाद के यूसी अराजी के मुख्तलिफ गोठन के रहवासियों पारा बिजली बंदश खिलाफ एहतजाज। रहवासियों हिस्को अमलदार खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों कदे इंडस हाईवे से धरणो अगवाण गोठ मिठल गंभीर एजाज गंभीर यासीन गंभीर रफीक गायचो जमाल आड़ू ए अली हसन गायचो समेत मुख्तलिफ गोठन में बिजली बंद है। गरा बिल अदा करण बावजूद बिजली फराहम नथी कई वे, वफाकी सरकार मसलो हल करे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पियारियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509, 03000 310509।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03005569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
4: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
5: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har bar ja nandra kadam, ek nayi duniya da vadhan ta. Par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

कराची जे इस्लामाबाद वारे इलाइक़े में हिकु फ्लैट मां पंज लाश हथ SSP ओभर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पाड़ेसरनि जे इतलाउ बाद पुलिस दरवाज़ो टोड़े फ्लैट में दाख़िल थी ज़ाल मुड़ुस ऐं संदनि टे ॿारनि जा लाश कढिया। डॉक्टर उमर जो पंजाब में रहंदड़ भाउ लातालकी ज़ाहिर करे रहियो आहे। टिन्ही ॿारनि जी उमिरि 10 वरनि खां घटि आहे। पोस्टमार्टम बाद मौत जा कारण मालूम थी सघंदा।

सियासी जमातुन जे इहतजाज के ॾिसंदे इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ते कंटेनर रखिया विया। श्रीनगर हाईवे ते G9 वेझो कंटेनर लॻाया विया। सरीना चौक, डी चौक ऐं मारगला एवेन्यू भरिसां बि कंटेनर रखिया विया। पंजाब हुकूमत अटक पुल ते लोही शीखनि वारा कंटेनर पहुचाए छॾिया। पंजाब जी सुध समा वारे वज़ीर उज़्मा बुख़ारी जो चवणु आहे त PTI बानीअ जा ॿार लंडन में आराम

احتجاجنی ऐं धरणनि सां मुल्क खे रोज़ानो 120 अरब रुपियनि जो नुक़सान थींदो आहे। धरणा हणण पाण खे तकलीफ़ पहुचाइण वारी ॻाल्हि हूंदी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त वॾनि ॾुखियाईनि सां मुआशी इस्तेहकाम हासिल कयो, हाणे तरक़ी तरफ़ वधणो आहे, पर धरणा तरक़ीअ जे सफ़र में रुकावट बणजंदा। अहिड़नि हालतुनि में धरणा हणणु समुझ खां ॿाहिरि आहे। मुआशी तरक़ी सभिनी जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। जमात इस्लामी जी अॼु कराचीअ खां इस्लामाबाद ताईं ट्रेन ज़रिए लॉन्ग मार्च जी शुरूआति। हाफिज़ नईम चयो त असांजो एहतजाज रियासत ख़िलाफ़ नाहे ऐं नई भञटा चाहियूं था। हुकूमत वटि लेवी ख़तमु करण खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो नाहे। मुतालबो न मञियो वियो त एहतजाजनि हुकूमत किरायो में तब्दील थी वेंदी। हुकूमत पंहिंजी ख़राबु हुकमरानी जो बदिलो अवाम वठी रही आहे।

पीपल्स पार्टीअ तरफ़ां जमात इस्लामी जी लांग मार्च जी हिमायत सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो त बिलावल भुटो बे पेट्रो लेवीअ जी ख़ात्मे जी ॻाल्हि कई। पीपल्स पार्टी मामिलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि उथारियो आहे। तेल अघनि में वाध सां अवाम जूं तकलीफ़ूं वधनि थियूं। जमात इस्लामीअ सां सियासी इख़्तिलाफ़ पंहिंजे जाइ ते, पर ट्रेन मार्च जी हिमायत कयूं था। संदन एहतजाज पुरमुन हूंदो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
2: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व जवाबित लागू हैं।
4: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
5: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दे यो निवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ता कज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
6: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-5109 0300-310-5109। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم सिस्टम 03000072734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
0: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601001

बहन है, फ्रेंड्स है, उन सबको मेरी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैं हाजिर हो चुकी हूँ आप सबकी खिदमत में, आप सबकी अपनी प्यारी प्यारी सी आवाज के साथ, वही सुर वही अंदाज हमेशा की तरह आप सबके साथ। आपकी आरजे कमल खान आ चुकी है आप लोग की खिदमत में एक प्यारा सा प्रोग्राम अच्छे से शो के साथ। जी बिल्कुल, आवाज का रिश्ता जो हमारे और आपके दरमियान हमेशा से कायम रहा, एक अरसे से ये रिश्ता हमारे और आपके दरमियान कायम है। तो जी बिल्कुल, आवाज का रिश्ता, जहाँ आवाज वहाँ रिश्ता, दिल से दिल तक का रिश्ता, ऐसा

शाम 5 से 7 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है हर सैटरडे एंड संडे इवनिंग में. तो जी बिल्कुल बेहतर से सबको पहले तो शाम बखैर. ठंडा ठंडा टाइम है और सब आज तो वैसे संडे है, आज तो हर जगह से ऑफ है ऑफिस से और सब जगह की छुट्टी इंजॉय कर रहे होंगे. आई होप आप लोग संडे को बहुत अच्छे तरीके से मेरी तरह आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा. तो जी बिल्कुल ये टाइम आप लोगों की खिदमत का था और आप लोगों के लिए ही मैं आ चुकी हूँ. तो आज के मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, उसे आप मेरा सवाल समझें या टॉपिक मैं तो जो हम इस पर डिस्कस करेंगे बात करेंगे बहुत अच्छे से टॉपिक है जो आजकल हमारे माशरे में मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है. लोगों में ये चीज नोट की जा रही है देखी जा रही है कि वो खुद से ज्यादा मतलब

तो आप खुद को उससे कंपेयर कर रहे हैं, ये गलत है. मतलब कि आपकी सांवली रंगत, आपका छोटा कद, हाइट लंबी है, या आपके हेयर का कलर चेचे कर्ली हेयर है, आपके आइस ब्लैक हैं, किसी की ग्रे हैं, हेजल ग्रे हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, कोई स्मार्ट है, कोई दुबला पतला, कोई मोटा है, कोई फैट है, मतलब कि तो जैसे आप सबसे जिसे आप सबसे छुपाते फिरते हैं, असल में अल्लाह ने वही चीज़ आपको सबसे अलग बनाने के लिए दी है. मतलब कि अगर आपका रंग डीम है, आपके बाल कर्ली हैं, और आपकी जिस्मत मतलब कि आप हेल्दी हैं या फिर स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट है, तो मतलब कि आप ये मत समझें कि आप दूसरे से कमतर हैं, बल्कि आप अच्छे हैं, आप दूसरे से बहुत अच्छे हैं. मतलब कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो. आपको इस बात को कंफर्म करने के लिए किसी की भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, किसी से आप तस्दीक नहीं कर सकते. आपको क्या पड़े किसी से तस्दीक करें कि मैं कैसा हूँ, क्यों, जबकि आपको पता है अल्लाह ने आपको मुकम्मल इंसान बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया है. क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है. तो अल्लाह को जो रंग, जो रूप, जो कद, जो हाइट, जो आपके साथ सूटेबल लगी, जो उसे पसंद आए, उसने आपको वो दिए. तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप खूबसूरत नहीं हैं? आप बहुत खूबसूरत हैं. अगर आप देखें जो आपको अपनी खामी नजर आ रही, वही आपकी असल पहचान है. तो जी बिल्कुल प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करते हैं पहले हम प्रोग्राम में. तो जी बिल्कुल, मैं जिन्हें जमशेद की खूबसूरत सी आवाज़ में ये सॉन्ग प्ले कर रही हूँ,

0: at 5:30 PM. This song check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा.
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569.
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वन्य थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी. आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120.

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मजूरी।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए FM 94।

बार बार पानी पी रही हूँ, घूट घूट करके मैं पानी जरूर पीती हूँ। तो आप लोग भी पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया करें। अच्छा जी, तो एक और अच्छे से ट्रैक की तरफ चलते हैं प्रोग्राम में। तो वरना सब बनिए कि कोमल सिर्फ बातें करती है, बातें नहीं करती। कोमल अच्छे से सॉन्ग प्ले करती है और एक अच्छा सा सॉन्ग में प्ले कर रही हूँ, मोहब्बत सच्चियाँ फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म का ये अच्छा सा सॉन्ग है जी। बिल्कुल, ये एक फिल्म तो मैंने नहीं देखी लेकिन समटाइम सॉन्ग सुना है तो सॉन्ग बहुत अच्छा मुझे लगता है, मैं जीना तेरे नाल। इसकी भी अशआर बहुत अच्छे होते हैं। तो जी मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें, मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करेंगे ये अच्छा सा सॉन्ग। आवाज़ के रिश्ते में एक और खूबसूरत सी आवाज़ हमने शामिल कर ली है।

0: 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islami Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Shah Latif ka Sufi Thikana.
3: Fatih Mehran ki awaaz.
4: ਹਰ ਬਾਰ ਜਾਂ ਨੰਦੜਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਧਨ ਤਾ ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਇਨਨ ਕਦਮਨ ਕੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਸਕੇ ਤੋ ਇਨਹੀ ਕਰੇ ਜਦਹੀ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਓ ਵਰਕਰਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਥੇ ਤਾਂ ਦਰ ਖੋਲਿਓ ਐਂ ਪਹਿਜੇ ਬਾਰਨ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਖਾਂ ਬਚਾਓ ਜਬ ਕਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋ ਤੇ ਇਹ ਕਤਰਾ ਬਾਰਨ ਮੇ ਮੁਦਾਫਤੀ ਤਾਕਤ ਕੇ ਵਧਾਇਨ ਥਾ ਐਂ ਇਨਨ ਜੇ ਖਵਾਬਨ ਕੇ ਉਡਾਮ ਰਹਿਨ ਥਾ ਪੋਲੀਓ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੀ ਮਾਜ਼ੂਰੀ
1: ਸੋਨਾ सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1-1-1-4-7-5-2-6-4 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत जवाबित लागू है
5: मंजिल अभी बाकी है और सफर रवा है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया शाहराहे भुट्टो कराची के सनती इलाकों बंदरगाहों और मोटरवे एम

तो जी बिल्कुल, पर आवाज़ के रिश्ते में एक और खूबसूरत सा सॉन्ग मैं प्ले कर चुकी हूँ, आप लोग की खिदमत में पेश कर चुकी हूँ। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे मेरे साथ साथ। अब यार तो यार होता है, ये तो जिनके दोस्त यार है उन्हें पता होगा, वाकई दोस्त दोस्त होते हैं।

ॻाल्हाईंदे चयो त पाड़ेसरनि जे इतलाबाद पुलिस दरवाज़ो टोड़े फ्लैट में दाख़िल थी ज़ाल मुड़ुस ऐं संदनि टे ॿारनि जा लाश कढिया। डॉक्टर उमर जो पंजाब में रहंदड़ भाउ लातालकी ज़ाहिर करे रहियो आहे। टिनी ॿारनि जी उमिरि 10 वरनि खां घटि आहे। पोस्टमार्टम बाद मौत जा कारण मालूम थी सघंदा।

सियासी जमातुनि जे एहतजाज खे ॾिसंदे इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ते कंटेनर रखिया विया। श्रीनगर हाईवे ते G9 भरिसां कंटेनर रखिया विया। सरीना चौक, डी चौक ऐं मार्गिला एवेन्यू भरिसां बि कंटेनर रखिया विया। पंजाब हुकूमत अटक पुल ते लोही शीखनि वारनि कंटेनर पहुचाए छॾिया। पंजाब जी सिद्ध समा वारे वज़ीर अज़मा बुख़ारी जो चवणो हो त PTI बानीअ जा ॿार लंडन में आराम कनि पिया, हिते KP जे ॿारनि खे सियासत लाइ इस्तेमालु कयो पियो वञे। احتجاجن ऐं धरणनि सां मुल्क खे रोज़ानो 120 अरब रुपियनि जो नुक़सान थींदो। धरणा हणणु पाण खे तकलीफ़ पहुचाइण वारी ॻाल्हि हूंदी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब। मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त वॾनि ॾुखियाईनि सां मुआशी इस्तेहकाम हासिल कयो आहे, हाणे तरक़ी तरफ़ वधणो आहे, पर धरणा तरक़ीअ जे सफ़र में रुकावट बणजंदा। अहिड़ी हालतुनि में धरणा हणणु समुझ खां ॿाहिरि आहे। मुआशी तरक़ी सभिनी जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। जमात इस्लामी जे अॼु कराचीअ खां इस्लामाबाद ताईं ट्रेन ज़रिए लॉन्ग मार्च जी शुरूआति। हाफिज़ नईम चयो त असांजो एहतजाज रियासत ख़िलाफ़ न आहे ऐं नई भञटा चाहियूं था। हुकूमत वटि लेवी ख़तमु करण खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो न आहे। मुतालबो न मञियो वियो त एहतजाज हुकूमत किरायो में तब्दील थी वेंदो। हुकूमत पंहिंजी ख़राबु हुकमरानी जो बदिलो अवाम मां वठी रही आहे। पीपल्स पार्टी तरफ़ां जमात इस्लामी जी लॉन्ग मार्च जी हिमायत। सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि पेट्रोल लेवी जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कई। पीपल्स पार्टी मामिलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि उथारियो। तेल अघनि में वाध सां आवाम जूं तकलीफ़ूं वधनि थियूं। जमात इस्लामी सां सियासी इख़्तिलाफ़ पंहिंजी जाइ ते, पर ट्रेन मार्च जी हिमायत कयूं था। संदन एहतजाज पुरअमुन हूंदो आहे। कंहिं बि सियासी पार्टीअ खे पुरतशद न बणायो वञे।

वफाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त इस्लामाबाद में एहतजाज करण न ॾींदासीं। पीटीआई वारनि खे इस्लामाबाद में किथे बि रस्ता बंदि करण जो हक़ नाहे। जमात इस्लामी खे बि सलाह आहे त इस्लामाबाद तरफ़ न अचनि। कानून सभिनी लाइ बराबरि आहे। अवाम जी तकलीफ़ जो अहसास आहे। पेट्रोल अघनि में अवाम खे रिलीफ ॾेई रहिया आहियूं। आलमी मार्केट में तेल जा अघ आसमान ते पहुतल आहिनि। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो त ख़ितो इंतिहाई नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे। क़ौमी मफ़ादनि ऐं मुल्की ज़रूरतुनि मूजिबि फ़ैसिला कया पिया वञनि।

लाहौर पुलिस पीटीआई बानी की भेण अलीमा खान के गिरफ्तार कर वरतो। अलीमा खान की खानदानी जरिए मूजिब अलीमा खान के लाहौर के अपर माल इलाके वे घर में गिरफ्तार किया वो। अलीमा खान के गिरफ्तार कर कोट लखपत जेल मुंतकिल कर वो है। पीटीआई बानी जो जेल में तिबी मुआन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला ला एमडीके टेस्ट वरती वही शागिर्द कामयाबी लाए पुरामेंद की अजी अपलोड थींदी। सिंध जे जो 3265 उम्मीदवार समेत मजमूई तौर ते 1,36,160 उम्मीदवार टेस्ट में सो वरतो। पंजाब में 49,199, खैबर पख्तूनख्वा में 38,841, बलोचिस्तान में 9,923, आजाद कश्मीर में 2,761, गिलगित बल्तिस्तान में 1,721, इस्लामाबाद में 1,245, एक आलमी मर्कज रियाज में 237 उम्मीदवार टेस्ट दिनी। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, लाड़कानो ए सखर में 9 सेंटर्स कायम कया व्या हुआ। आईबीएस सखर जो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख गर्मी सब बेहोश थी वो। संदस चवण हो तो पेपर की तैयारी लाए सारी रात जागिस, निंड पूरी न होने सब बेहोश थी वियस।

हुकूमत अॼु खां बिजली ख़रीद न कंदी। बिजली ठाहींदड़ ऐं वाफ़ेदार ख़रीद ऐं विकिरो कंदा। हुकूमत खे केर बि बिजली न विकिणी सघंदो। तवानाई वारे वज़ीर अवेस लिगारी चयो त नओं निज़ाम पहिरियों सनती ऐं बिजली जे वॾनि वाफ़ेदारनि ते लागू थींदो। पावर डिवीज़न बिजली नीलामीअ जे लाइ प्रपोज़ल जारी करे छॾियो। ईंदड़ 5 सालनि ताईं बिजलीअ जी नीलामी कई वेंदी।

कलात में दहशतगर्दनि जूं अवामी अच वञ में रुकावटूं विझण जूं कोशिशूं नाकाम। सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारिजी विया, 23 मुगवी बाज़ियाब। ISPR मूजिबि 18 ऐं 19 सेप्टेम्बर जी विच वारी राति दहशतगर्दनि N25 ते चौकी क़ाइमु कई हुई। दहशतगर्दनि जो शहरनि खे अगवा करणु, भतो वठणु ऐं गाॾियूं फुर करण जो मनसूबो हो। सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे नापाक इरादा नाकाम बणाए छॾिया। फायरिंग जी ॾे वठ में 5 दहशतगर्द मारिजी विया हुआ, 23 मुगवनि खे बाज़ियाब करायो वियो। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार बि हथ। कोहाट पुलिस लाइन्स ते अपघाती हमले जो केस दाखिल, केस में दहशतगर्दी, क़तल ऐं ॿिया क़लम शामिल कया विया। FIR मूजिबि पुलिस लाइन्स वेझो बारूद सां भरियल गाॾी ज़रिए अपघाती हमिलो कयो वियो। हमले बाद दहशतगर्द फायरिंग कई, 21 ॼणा शहीद थिया। पाक फ़ौज, पुलिस ऐं CTD दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हिसो वरितो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी अॼु ईरान दौरे ते रवानो थींदो। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान मूजिबि इस्माइल बकाई चयो त मोहसिन नक़वी जो ईरान दौरो बितरफ़ी लाॻापन ते ॿधलु हूंदो। मोहसिन नक़वी जी ईरान दौरे बाबति कंहिं बि अमरीकी पैगाम जी ख़बर नाहे।

0: आलमी मार्केट में तेल सस्तो थी वयो, पेट्रोल ऐं डीजल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-310509, 03000-310-5109।
3: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अवां के खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जना पहिरियों कदम वधायो।
6: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

ऐं अव्हां सभु ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि। जीअं त लिसनर्स, अल्लाह पाक जूं हज़ारे नेमतूं असां वटि मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां सभु खां वॾी नेमत सिहत आहे। जॾहिं तंदुरुस्ती हुजे थी, तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो ख़ूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमूर साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि।

0: आया असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851। सब खां पहिरीं त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चवंदासीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कीअं आहियो? तबियत सभु ठीकु आहे
1: जी? साईं अलाह ताला जा सां।

0: जेतिरो माण्हू मेडिसिन खाईंदो आहे या अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं दवाऊं इस्तेमालु कंदो आहे जंहिंजे करे जेको आहे सो इहे मसाइल थी वेंदा आहिनि। लेकिन होम्योपैथिक में अल्लाह ताला जी महिरबानी सां असां वटि तमामु हिकिड़ी बहितरीन ट्रीटमेंट मौजूदु हूंदी आहे जेकी मरीज़ खे ॾींदा आहियूं। कुझु टाइम ताईं उहो इस्तेमालु उनखे करणी हूंदी आहे, उन सां उहो उनजो बग़ैर इंजेक्शन जे उनजो सूर बि घटिजी वेंदो आहे ऐं उनजी सोजन बि घटिजी वेंदी आहे ऐं उनजी जेकी मिख जी कमी हूंदी आहे उहा बि पूरी थींदी वेंदी आहे। अच्छा, सूर इहा त मां ॿुधायमि त इन में इनजो इलाजु छा आहे या इन जो थींदो आहे या न थींदो आहे। एक्चुअली उनजी सुञाणप बि तव्हांखे मां ॿुधायमि, जॾहिं सूर थी वेंदो आहे त इहो मिख घटिजी वेंदी आहे, सोजन थी वेंदी आहे। जेकॾहिं उन में सूर शिदत सां थी वेंदो आहे, बुखार बि घणनि खे रहणु लॻंदो आहे, माण्हू डिप्रेशन में अची वेंदो आहे, अॻिते इन में यूरिक एसिड बि जिस्म इंसानी जिस्म जो जेको यूरिक एसिड हूंदो आहे उहो बि वधी वेंदो आहे। अमूमन 7 ताईं उनजी रेंज हूंदी आहे जेको नॉर्मल हूंदो आहे, पर जॾहिं यूरिक एसिड फीमेल में 6 ताईं हूंदो आहे, मर्दनि में 7 ताईं हूंदो आहे, पर जॾहिं उहो उन रेंज खां वधी वेंदा आहिनि त उन सां गॾोगॾु उनजे करे उनखे यानी हॾनि में तकलीफ़ वधी वेंदी आहे, जोड़नि में सूर तमामु घणो वधी वेंदो आहे, सोजन बि घणी थी वेंदी आहे ऐं अॻिते हली जेको आहे सो पेशेंट जो बी पी बि हाई थियणु लॻंदो आहे ऐं गुर्दा बि गुर्दनि ते बि असरु थियणु लॻंदो आहे। गुर्दा अॻिते हली ईअं बि थियो आहे जो गुर्दा बि फेल थी वेंदा आहिनि। इन जे करे अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ूं जेकॾहिं थियनि थियूं त महिरबानी करे हिकु त पंहिंजे मुंहुं दवाई हरगिज़ न वठो ऐं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मां इहो चवणु चाहींदुसि हिन प्लेटफॉर्म तां त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त खोड़ सारा पेशेंट असां वटां बि अहिड़ा आया जेके न ठीकु थी सघिया, सिर्फ़ु उनजी वजह इहा ई हुई जो मरीज़ लेट सां आया ऐं हुननि अहिड़े क़िस्म जूं दवाऊं इस्तेमालु थियल हुयूं इन जे करे। पर जेकॾहिं कुझु अरसो हुनजी दवा इस्तेमालु थियल बि आहे ऐं असां वटि बर वक़्तु अची वञे थो ऐं कुझु टाइम ज़ाहिर आहे हिकिड़ो पेशेंट मरीज़ त मरीज़ हूंदो आहे, असां वटि वरी उबतो सिस्टम हूंदो आहे, हिकिड़ो माण्हू किथे 2 साल 5 साल 10 सालनि 15 सालनि ताईं मरीज़ इन बीमारी में तकलीफ़ में रहंदो आहे। असां अमूमनि पंहिंजे प्रोग्रामनि में चवंदा आहियूं त घटि में घटि 3 महीननि ताईं असांजी ट्रीटमेंट हलंदी आहे, त हू मरीज़ उन खे ज़हन में रखी वेंदो आहे त 3 महीननि में पेशेंट बिल्कुलु बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। लेकिन थींदो ई आहे असां चवंदा आहियूं घटि में घटि 3 महीना पेशेंट ट्रीटमेंट वठे त उन सां उनजी जेको आहे सो जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे त काफ़ी हद ताईं घटिजी वेंदी आहे ऐं आहिस्ते आहिस्ते जेकी नुक़्स हूंदो आहे उहो बि ख़तमु थींदो आहे, ख़तमु थींदो वेंदो आहे, उन में टाइम लॻंदो आहे। पोइ चाहे जेकॾहिं को अहिड़ो नुक़्स वधी वेंदो आहे, अहिड़ी का बीमारी घणी आहे त जेकॾहिं 3 महीना न त 5 महीननि ताईं 6 महीननि ताईं बि ट्रीटमेंट हुनजी हलंदी आहे। सो इहे ॻाल्हियूं नंढियूं नंढियूं हूंदियूं आहिनि जेकी असांजे प्रोग्राम जे तवसुर सां करणु ज़रूरी हूंदी आहे ऐं के ईअं हूंदा आहिनि दोस्त जेके फ़ोन करे ॿुधाईंदा आहिनि त असां दवा वरितीसीं ऐं दवा मां जेको आहे सो असांखे हीअं थियो त दवा मां पहिरीं ॻाल्हि ॿुधाई त असांजी दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट न आहे। हा, उहे पेशेंट जेके दवा खे सही इस्तेमालु न कंदा, रेगुलरली इस्तेमालु न कंदा, त उन्हनि खे फ़र्क़ु दवा न ॾींदी आहे। असां चयोसीं 3 महीना या 4 महीना दवा इस्तेमालु, उनजो इहो मक़सदु न आहे त तव्हां कुल ई महीने में हिकिड़ो दफ़ो दवा वठी वियो ऐं वरी 4 महीना आयो त तव्हां 4 महीना दवा खाधी, पर जेकॾहिं असां 10 ॾींहनि जी दवा ॾिनीसीं उनखे तव्हां रेगुलरली 6 महीननि ताईं दवा यूज़ कई त उनखे चइबो आहे 3-4 महीना दवा वठणु। पाणी जेकी दवा हूंदी आहे थधे पाणी में इस्तेमालु न करणी हूंदी आहे, दवा जा मखसूस डोज़ हूंदा आहिनि, हर दवा अलॻि अलॻि पाणी में पीअणी हूंदी आहे, 10-10 फुड़ा पीअणा हूंदा आहिनि। इहा हिकिड़ा सिगरेट पीबो आहे त सिगरेट खां जेको आहे सो 15 मिंट अॻे दवा पीबी आहे, गुरड़ी करे पोइ जेको आहे दवा पीबी आहे, दवा पी यकदमि सिगरेट न आहे पीअणो हूंदो, वरी गुरड़ी करे पोइ 10-15 मिंट खां पोइ सिगरेट पीबो आहे। त इहे हिकिड़ा दवा जा क़वानीन कानून हूंदा आहिनि, दवा जो तरीक़ेकार आहे, जेकॾहिं इन तरीक़े सां केरु दवा खे इस्तेमालु न कंदो आहे त पोइ जेको आहे सो दवा नाकारा थी वेंदी आहे ऐं दवा जो को असरु न रहंदो आहे। सो इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हुयूं जेके असां पंहिंजे ऐं नंढड़ी हिकिड़ी सम्झाणी हुई ऐं नंढड़ी हिकिड़ी ॼाण हुई जेके असां पंहिंजे ॿुधण ताईं पहुचाईसीं। उमेदु आहे त अॼोको प्रोग्राम जो मौज़ू अवां सभिनी खे ज़रूरु जेको आहे सो पसंदि आयो हूंदो। इन प्रोग्राम जे मुतालिक़ महिरबानी करे हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरु इहो ॻाल्हि नोट कंदा त हिन प्रोग्राम जे मुतालिक़ जेको बि रियल हक़ीक़ी को पेशेंट आहे, केस आहे, त उहो उन बारे में ज़रूरु सुवाल पुछंदा। अजायो पेशेंट जेको बि आहे, अजायो जेको बि शौक़ीन आहे, उहो ईअं महिरबानी करे इन प्रोग्राम में कॉल न करे त बहितर आहे, जो ॿिए जेको ज़रूरतमंद आहे उनजो टाइम बि वेस्ट थिए थो ऐं असांजे प्रोग्राम जो बि टाइम वेस्ट थींदो आहे। वॾी महिरबानी,
1: तमामु बहितर।

सरकालन जो सिलसिलो जारी थी चुको आहे, लेकिन इन खां पहिरियां ब्रेक वठंदासीं। हाणे वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, त हाणे हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो GFM 94 मेहरापुर।

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: ऐं अदी अॼु त ॾाढी ख़ुशि पई नज़र अची।
1: छो न ख़ुशि थियां अदी, जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
0: मां बि वञी चवां हुनखे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
2: जी जान, चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: हर ॿार जा नंढड़ा कदम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो। छो त ये कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: सोना सिर्फ ज़ेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कम्प्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रूपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डी कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो बीहर अवां सभिनी ॿुधंदड़नि खे खुश आमदीद चऊं था। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदा आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कंदा आहिनि। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-51।

डॉक्टर साहब, हर वाह खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 खां शाम 5 वगे तीन जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पोटा पेट्रोल पंप कोंटरी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहन। अंगारे जे डी क्लिनिक बंद होंदी आए, इन में हफ्ते जा 3 दिन जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंदी आए। बाकी दवा मरीज के स्टोर ता वठनी होंदी आए। ऐं असांजे प्रोग्राम में बेज़रिया लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-151।

0: डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर साहब हिकु कॉल जी तरफ़ हलंदासीं असांजे प्रोग्राम जी पहिरीं कॉल जी तरफ़। अस्सलाम वालेकुम, केरु ईंदा किथां खां? जी अजा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
1: मथे में गोरियूं थियूं आहिनि, हेतिरी वॾी थी विया, पकिड़े बि करे विया, नरम थी विया।
0: जी जी,
1: पोइ उन जो हल
0: डॉक्टर साहब खे असां अवां रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितर आहे, वरना अवां खे ॿुधाए थो डॉक्टर साहब। रेडियो ॿुधो। जी सर, जी सर,
2: ईंदो त हुनखे ॾिसी करे पोइ सही नमूने सां दवा ॾेई सघिबी। वॾी महिरबानी।
0: बिल्कुलु सर, ज़ाहिर आहे सर, साम्हूं ईंदो त हुन तरीक़े सां तव्हां मुआइनो कंदा त ओड़े हिसाब सां तव्हांजे दवा ॾींदा। लाइव कॉल जो नंबर हिकु दफ़ो अवां ॿीहर अवांखे रिपीट कराईंदासीं, 0201 91 8051।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬੀ ਕਾਲਜ ਤਰਫ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਅਜਾਦ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।
1: ਅਜਾਦ ਥੋੜਾ ਅਰਜ਼ ਆ।
0: ਜੀ ਜੀ।
1: ਯੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਓ ਮਾਨੀ ਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਥੀ ਤੇ ਪੋ ਛਿਕੂ ਬਚਨ ਥਿਉ ਐ ਬਲਗਮ ਬਚੇ ਥੋ।
0: ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਕਿਤਰੀ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਜੀ?
1: ਉਮਰ ਮਜਾ ਬਾਲ 70 ਸਾਲ ਆ।
0: ਠੀਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂ ਕੇ ਬੁਦਾਇ ਥੋ ਰੇਡੀਓ ਬੁਦੋ। ਜੀ ਸਰ।
2: ਜੀ ਸਹੀ चाचे की जी एक तो उम्र जो है सो माशाला सुठी है उन चाचे सिर्फ यही बुधा तो मानी खाए तो एलर्जी थे या मानी खाने से या कोई का शेख सणवी वगैरह या खट्टी वगैरह शे खाने से तकलीफ थे थी तो रूबरू उन खोले को बुधा तो चाचे को यो ही चंदा तो रूबरू डेखारे वजन तो उनका पुछी कर उनकी दवा दींदी इनशाला तला बिल्कुल सही थी।
0: प्रोग्राम आए सेज गाल ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु। प्रोग्राम हिकु ॿी ॻाल्हि जी तरफ़ हलंदासीं।

0: डॉक्टर साहब लगे तो कॉल ड्रॉप थी चुकी है।
1: दोस्तों के यूअर्स कंदासी तो थोड़ो बाहर निकली करे ना जिते एरिया हो जे खुलेल हो जे नेटवर्क सही हो जे तो उता भी गले।
0: बिल्कुल सर, एक बी कॉल जी तरफ ना सी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: अदा रेडियो सेट ऑफ कर जो।
0: रेडियो सेट अदा पहरिया बंद कर जो।
2: जी
0: शाह पुशन जाने डॉक्टर साहब का
2: घर पे
1: अदा कॉल ड्रॉप कर बाबा जी एक कॉल ड्रॉप कर।
0: सर असा लिसनर्स के पेरिया भी चवंदा आयो त जदे भी कॉल कियो तवा त सब का पेरिया वीडियो बंद कर
1: टाइम खराब करनो दो है पेरिया भी चला है त कॉल जदे तवा कयो त रेडियो सेट ऑफ करे पोई कंदा कयो।
0: बिल्कुल सर।
1: जी सर।

0: ॾेखारे आयो क्लिनिक बंद हुई। हा त सुभाणे सुभाणे क्लिनिक ते हूंदासीं, तव्हां रूबरू ते ॾेखारे वञो। ओके, अलाह
1: सर। इन करे बार बार असां एड्रेस ऐं टाइम तव्हांजो रिपीट कंदा आहियूं त
0: को पेशेंट आहे त मां पहिरियां बि ॻाल्हि कई त असांजे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि। मिसाल अंगारे जो ॾींहुं त साईं असां क्लिनिक ते बीठा आहियूं, अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक ऑफ हूंदी आहे। बाक़ी टाइमिंग जे हवाले सां ॿियनि ॾींहंनि में टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां ठीकु आहे, कॾहिं लेट सवेल थी वई वेंदी आहे कलाक अधु, लेकिन जेको टाइम हूंदो आहे, जेको ॾींहुं रखियलु हूंदो आहे, उहो ॾींहुं असांजो कॾहिं बि मिस न थींदो आहे। नंबर तव्हां वटि मौजूदु आहिनि पेशंट खे, जेकॾहिं देरि बि थींदी आहे त को बि पेशंट असां सां टचिंग में हूंदो आहे, कॉन्टेक्ट में हूंदो आहे, उते बोर्ड ते नंबर लिखियलु आहे त उहो पुछी करे पोइ जेको आहे सो उते इवेट करे वेंदा आहिनि ऐं उहे दवा वठी वेंदा आहिनि। इन जे करे अधे खे बि इहो ई चवंदासीं त तव्हां जेको आहे सो रूबरू ॾेखारे सघो था ऐं टाइमिंग तव्हां ज़रूरु जेको आहे सो नोट कजो ऐं ॾींहुं अव्हांजे नोटेज में हुजनि।
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वदनपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी पवंदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9896-8051। ऐं डॉक्टर साहब जो इहो साॻियो ई कॉन्टेक्ट नंबर आहे, हिन ते तव्हां कंहिं बि वक़्तु कॉन्टेक्ट करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था।

ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851।

0: प्रोग्राम में एक लाइव कॉल की तरफ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। अदा केरे किथां खां?
1: सर फकीराबाद खां था गलायूं।
0: जी जा छा पुछन ता डॉक्टर साहब खां?
1: सर पर माथे में तकलीफ हुई, माथे में दवा वती असे।
0: जी जी।
1: हाँ कमजोरी रह रही जिसम में जरा।
0: अच्छा किथां वरती दवा?
1: सही वरती है गंबट में जरा।
0: अच्छा
1: हाँ तबियत मन सही थी, हाँ मन जंगल में सहाई भी रहे थी, मन मन थक जी तो मन हाँ में सोर भी पाए तो।
0: जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, वहाँ के बुधाए तो रेडियो बुधो। जी सर
2: बिल्कुल, लेकिन मादे जी कमजोरी थी वेंदी आहे, उन खां पोइ ऐसा भी कमजोरी थी वेंदी आहे। एक त सौंफ हर खाधे खां पोइ मां हर मरीज खे ॿुधाईंदो आहियां, हर खाधे खां पोइ सौंफ जी चपटी जेको आहे सो वात में विझी छॾे माण्हू, उहा काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदे वारी आहे। उहा अवांजी ऐसा बि कमज़ोरी बि दूरि कंदी आहे त मादो बि सही कंदी आहे। या उनखां अलावा अदपा बादाम, अदपा सौंफ, अदपा मिसरी पाण में सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइण सां काफ़ी हद तक फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। लेकिन अञा बि कमज़ोरी घणी आहे त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारे वञनि। उन्हनि जी दवा थींदी आहे होम्योपैथिक में जेकी हर लिहाज़ सां बहितर हूंदी आहे, दवा ॾींदासीं इनशाला ताला ठीकु थींदो।
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन ते कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुंज रग जो सूरु, नक, कन, गलो, नज़लो, निछो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि में जो इलाजु कंदा आहिनि।
2: जो तरीक़ेकार सुनत नबवी जे मुताबिक़ आहे त अञा वधीक बहितरु आहे। असां ईअं हूंदो आहे, ईअं कंदा आहियूं त जेको बेकुमलो हिकिड़ो खाधो खाईंदा आहियूं या चांहि ज़्यादा पीअंदा आहियूं, पोइ जेको आहे सो मादे ते भोजन पिणु रहंदो आहे, या सिगरेट बि पीअंदा आहियूं। लेकिन ईअं बि थींदो आहे जो मानी खाई वरी हिकदमि पाणी पी छॾींदा आहियूं, त उहो बि जेको आहे सो मादे जे लाइ हानिकार हूंदो आहे। हिकु त मानी खाइण खां अॻे अधु कलाकु अॻे पाणी पीअणु घुरिजे, ऐं मानी खाइण खां कलाकु ॾेढ खां बाद में पाणी पीअणु घुरिजे। इहो हिकिड़ो रूटीन आहे। ऐं मानी जेको आहे सो खाई यकदमि सुम्हणु न खपे, घटि में घटि ॿ कलाक उनजो वक़फ़ो हुजे, त इहो हिकिड़ो तरीक़ेकार हूंदो आहे। हुन खां पोइ सणबी शइ, चिकनाहट वारी शइ, तरियल शइ, खटी शइ या भोजन पिणु कंदी आहे, उन खां थोरो परहेज़ कंदा कयो। ऐं उनखां पोइ जीरो ऐं सौंफ़ चमची चमची पाणीअ में काढ़े उनजो काढ़ो जेको आहे सो ठाहे करे उन में तव्हां अदरक बि मिलाए सघो था। उहो तव्हां सुबुह जो नेराने जेको आहे सो पीअंदो, इनशाला ताला उन सां काफ़ी इफ़ाक़ो अची वेंदो आहे। जेके बि माथे ते ग़लीज़ जेके मादा अची वेंदा आहिनि उहे बि अख़राज थी वेंदा, अवांजो कॉन्स्टिपेशन जेकॾहिं कब्ज़ आहे त उहा बि ख़तमु थी वेंदी, अवांजो हाज़मो बि दुरुस्त थी वेंदो आहे। ऐं जेकॾहिं ईअं न त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त सौंफ़ तव्हां हर खाधे खां पोइ ईअं बि चॿाड़े सघो था, उहो बि अव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघे थो। चांहि जो इस्तेमालु घटि कयो, घटियूं शयूं, ॿाहिरियूं शयूं इस्तेमालु घटि कयो, इनशाला ताला काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो। अञा बि फ़र्क़ु न पए त होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु करे सघो था असां वटां, अला कंदो उन में बि अव्हांखे शिफ़ा मिली वेंदी। वॾी महिरबानी
0: जी सर। प्रोग्राम जी लास्ट कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अदा केरे किथां खां? छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां? जी अदा इलाज बिल्कुलु मौजूदु आहे, अवां रूबरू ॾेखारियो डॉक्टर साहब खे। डॉक्टर साहब ॿुधाए थो वधीक। जी सर,
2: हा जी साईं बिल्कुलु हुनखे ॿुधाईंदासीं हुनजो इलाज ट्रीटमेंट मौजूदु आहे अलाह ताला जी महिरबानी सां सभई पेशंट असांजे इन होम्योपैथिक इलाज सां इन मादे जे बीमारियुनि में या पिते में जेके पथरियूं हूंदियूं आहिनि या जिगर ते जेकी सोज़िश चर्बी थी वेंदी आहे या गुर्दे में जेको किचरो अची वेंदो आहे उन सां अलहमदिल्ला हुनखे शिफ़ा मिली चुकी आहे। अदे खे बि इहो ई मशवरो ॾींदुसि त मेहरापुर हालाणी वेझी आहे, मेहरापुर हिकु दफ़ो अची साम्हूं वज्रा पोटा पेट्रोल पंप तव्हां जेकी एड्रेस ॿुधाईंदा आहियो उहा हुते अची रूबरू ॾेखारींदा इनशा ताला दवा जे हिसाब सां जॾहिं दवा मिलंदी मरीज़ खाईंदो इनशा ताला काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो। वॾी महिरबानी
0: डॉक्टर साहब, वक़्त जो एहसास वक़्तु पूरो थी चुको आहे असांजे प्रोग्राम जो, आख़िर में मां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा?
2: बिल्कुलु वक़्तु चवे आऊं बादशाह ऐं वक़्तु कंहिंजो इंतज़ारु न कंदो आहे ऐं वक़्त जो टाइम तव्हां अंदाज़ो पाण लॻाए सघो था। मैसेज इहो आहे त हर वक़्तु ख़ुशि रहंदा करियो ऐं छो जो ख़ुशी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदी आहे ऐं रूह खे ख़ुशी तॾहिं तस्कीन पहुचाईंदी आहे जॾहिं रूह पाक हूंदो आहे। रूह पाक तॾहिं थींदो आहे जॾहिं मां हर वक़्तु वज़ू में हूंदो ऐं नमाज़ पढ़ंदा हुजो। वॾी महिरबानी।
0: ऐं असांजे प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु बि अॼु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। दुआ आहे त अल्लाह पाक तव्हां सभिनी खे सदा तंदुरुस्त ऐं सदा ख़ुशि रखे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अहसान अली सियाल खे। अलाह हाफ़िज़।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
3: हर हंध के सोमनाथ बढ़ाने होने की रवायत रही है।
4: डॉक्टर उमर जो पंजाब में रहंदड़ भाव लाताल की जाहिर कर रहे हुआ है। टिनी बालन की उम्र दहन वरन का घटा है। पोस्टमार्टम बाद मौत का कारण मालूम थी सकता। सियासी जमातन के एहतजाज के दिसंदे इस्लामाबाद के पेट्रोल रोडन के कंटेनर रखा व्या।
3: पीटीआई बानिया जी भेण लाहौर मा गिरफ्तार। डीसी लाहौर जो चवणा है तलीमा खान के 3 MPO तहत हिरासत में वरतो वयो। पार्टी जरिए मूजिब अलीमा खान के लिटन रोड का हिरासत में वठी कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो आहे।
4: वज़ीर उज़्मा बुखारी चयो त पीटीआई बानी जा ॿार लंडन में आराम कन पिया। हिते खैबर पख्तूनख्वा जे ॿारनि खे सियासत लाइ इस्तेमाल कयो।
3: कराची के एहसन आबाद वाले इलाके में एक फ्लैट में 5 लाश हथ एसएसपी ओबर मीडिया से गालंदे चयो तो पाड़ेसरन के इत्तलाबाद पुलिस दरवाजो टोड़े फ्लैट में दाखिल की तो जाल मुड़ से तंदी टे बाड़न जा लाश मिलया। डॉक्टर उमर जो पंजाब में रहंदड़ भाव लाता
4: मोहम्मद औरंगजेब जो इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब। मोहम्मद औरंगजेब चयो तो वडन दुखियाइन सा मौशी इस्तेहकाम हासिल कयो आहे। हाने तरकी तरफ वधणो आहे पर धरना तरकी जे सफर में रुकावट बणजंदा। अड़ी हालतुन में धरना हणण समझ का बाहर आहे।

0: इस्लामाबाद मार्च हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने यह तय किया हुआ है कि हम अपनी नाअहली, अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपनी बैड गवर्नेंस का बदला आवाम से लेंगे। हत्या टैक्स, गुंडा टैक्स, चड्डा टैक्स जो लेवी की सूरत में है, ये पेट्रोल की हर लीटर पर वसूल किया जा रहा है। लेवी का भत्ता अगर रहेगा तो फिर एहतजाज भी बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि फिर ऐसा ना हो कि ये हुकूमत गिराव तहरीक में तब्दील हो जाए।
1: जमात इस्लामी जी अज कराची का इस्लामाबाद ताई ट्रेन जरिए लॉन्ग मार्च की शुरुआत। हाफिज रहीम चयो तो इसां जो एहतजाज रियासत खिलाफ न नई भज ड्राह चाहूं था। हुकूमत वट लेवी खत्म करण का सवाय बियो को भी रस्तो ना है। मुतालबो न मंजो वयो तो एहतजाज हुकूमत केरायो में तब्दील थी वेंदो। हुकूमत पांजी खराब हुकुमरानी जो बदलो अवाम वठी रही है।

0: पीपल्स पार्टी तरफ़ा जमात इस्लामी की लॉन्ग मार्च की हिमायत सूबाई वजीर नासिर शाह जो चवण हो तो बिलावल भुट्टो भी पेट्रोल लेवी की खात्मे की गाल कई। पीपी मामलो कौमी असेंबली सेनेट में भी उथारो है। तेल अगन में वाद से आवाम जो तकलीफू वधन थ जमात इस्लामी से सियासी इख्तिलाफ़ पाँच जाए थे पर ट्रेन मार्च की हिमायत क्यूं था। संदन एहतजाज पुर अमन हों कें भी सियासी पार्टी के तशद पुरतशद न बनाए वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105109-03000-3105109।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

0: PM. This plan check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International.
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें और सिंध के रहने वालों के ख्याल राउंड अप में वार की शब्द GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर
3: सवाल ये फुकुल सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सिंध में पौणा 41 लख न्याणियों स्कूलन का बाहर बहुतन जी हालत खराब आए सिंध सरकार पारां कणक जो इमदादी अघ मुकरर करण वारो फैसलो ब हफ्ता मुलतवी कणक पोखींदड़ 25 एकड़न ताईं जे मालिक 5.5 लख आबादगारन ऐं हारियुनि लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान सिंध जे फ्लोर मिलन खे 1 अक्टूबर खां कणक फराहमीअ जो फैसलो अटो सस्तो करण जो हुकुम सिंध सरकार पारां 10 सालनि खां पोइ ॻोढ़ाणू डेम हाणे छोड़ बंदि नए डेम जूं तयारियूं मंशात खे आहे बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्ते जो हुकुम सिंध में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी नोटिफिकेशन जारी स्पेशल रिपोर्ट बि अव्हां ॿुधी सघंदा सिंध में हारियुनि जा हक़ जबरी पोरे ऐं तशदुद जा अंग अखर सिंध हुकूमत सनफ़ी बराबरीअ बाबति पहिरीं सनफ़ी बराबरी रिपोर्ट पधरी करे छॾी काल इंसानी हक़नि वारे ख़ासि मामिल राजवीर सिंह सोढो वज़ीर आला सां मुलाक़ात में रिपोर्ट पेश कई रिपोर्ट मूजिबि साल 2023 में सिंध जी आबादी 5,56,90,000 ताईं पहुची वई जेका 2.57% सालियानी शरह सां वधी रही आहे हर 100 औरतुनि जे मुक़ाबले में मर्दनि जो अंगु 108.74 आहे रिपोर्ट में सिहत जे शुबे में लगातार अघभराई पेश कई वई आहे जिते सरकारी फंडनि जी विर्च साल 2023-2024 जे 214.5 अरब मां वधी साल 2024-2025 में 267.54 अरब रुपया थी वई आहे वियम दौरान माइरुनि जी फोतगीअ जी शरह 314 मां नुमाया तौर ते घटिजी हर लख ज़िंदा जमंदड़ ॿारनि ते 224 ताईं अची वई आहे जॾहिं त नवनि ॼावल ॿारनि जी फोतगीअ जी शरह हर 1,000 ज़िंदा जमंदड़ ॿारनि ते 24 हुई उन्हनि अघ भराइनि बावजूदि तालीम जे शोबो सूबे जी सुभ खां वॾो चैलेंज मां हिकु आहे रिपोर्ट मूजिबि मर्दनि में ख़्वांदगीअ जी शरह 68 ऐं औरतुनि में 47% आहे जॾहिं त बहराड़ी में औरतुनि में उहा शरह गणती जोगी हद ताईं घटि यानी 27.57 आहे 5 खां 16 सालनि जे उमिरि जूं 40,80,000 खां वधीक छोकिरियूं स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि जेका ॻाल्हि फौरी ऐं लॻातार क़दमनि जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे उन मौक़े ते वज़ीर आला मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत ख़ासि सीड़पकारी इदारती सुधारनि ऐं सनफ़ी ज़रूरतुनि खे नज़र में रखंदे तरक़ियाती मनसूबाबंदी ज़रिए उन्हनि रुकावटुनि खे ख़तमु करण जे लाइ पुरअज़म आहे हुन चयो त असां अहिड़ी सिंध अॾणु चाहियूं था जिथे हर औरत ऐं छोकिरीअ खे पढ़ण कमु करणु अॻुवाणी करणु ऐं समाज में पंहिंजो हिसो विझण जी बराबरि मौक़ा मिलनि सिंध सरकार पारां कणक जे इमदादी अघु मुक़रर करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी करे छॾियो आहे कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिकनि 5.5 लख आबादगारनि ऐं हारियुनि लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान कयो वियो आहे मार्च में खुराक खाते खे कणक विकिरो कंदड़ 56,471 आबादगारनि खे 2,000 रुपया वाधू 6,000 रुपया ॾियण जो फ़ैसिलो कणक सब्सिडी 14.9 खां वधी 16 अरब ताईं पहुची वेंदी उन ॾसमी काल वज़ीर आला मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में चयो वियो त आबादगारनि जे लाइ ऐलानियल कणक सब्सिडी पैकेज मां सिंध जे लॻभॻि 5.5 लख कणक जे आबादगारनि खे फ़ाइदो पहुचंदो वॾे वज़ीर सिंधारी सपोर्ट प्रोग्राम तहत 25 एकड़नि ताईं ज़मीन जे मालिकी रखंदड़ कणक जे आबादगारनि जी नए सिर रजिस्ट्रेशन जी हिदायत कई अॻु में फ़ाइदो वठंदड़नि जे रेवन्यू खाते ज़रिए ॿीहर तस्दीक कई वेंदी काबीना खे आगाही ॾिनी वई त मटियारी ऐं सखर दिलनि जे टिन ॾींहनि मटियारी दिले जे देह मटियारी ऐं पलेजाणी ऐं सखर जे देह बागड़जीअ में ब्लॉकचेन ई सिस्टम शुरू कयो वेंदो बोर्ड ऑफ रेवन्यू पारां IBA यूनिवर्सिटी सखर जे तावन सां ई ट्रांसफर सिस्टम तयारु कयो वियो आहे सिंध काबीना पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी काबीना इजलास में सिंध जी बासलाहियत रांदीगरनि जी ॻोल्हा ऐं हिमत अफ़ज़ाई जे लाइ क़दम खणण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे सिंध में स्पोर्ट्स हॉस्टल्स ऐं अकेडमीस क़ाइमु करण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे सिंध सरकार थर जे कोयले जी खुटाई

0: दौरान निकरंदड़ पानी के ज़खीरे के लिए कायम कल गोढ़ाणे डैम के 10 साल पो मकामी आबादी के लिए हानिकार करार दींदे पानी छोड़ न करण जो ऐलान कर छोड़ो। उन हवाले से सिंध के माहौलियाती खाते के पार्लियामानी सेक्रेटरी हसन अली शाह थर में कोयले की खोटाई के दौरान निकरंदड़ जहरीलो पानी के छोड़ के लिए ठायल गोढ़ाणे डैम खिलाफ़ मकामी रहवासियों की दांख नजर में रखंदे सिंध सरकार उते पानी छोड़ बंद कर छोड़ो है। कोयले की खोटाई दौरान निकरंदड़ पानी छोड़ करण लिए मुतबादिल हंध गोल्हियो पो वे उन पानी के ज़खीरे लाए गोढ़ाणे डैम के सामू जिते मानू की अच वे या जमीनू ना उते बो डैम ठा पो वे उन्हें तो गोठाने जो मौकुफ सही हो उते जे आसपास की जेरे जमीन पानी के कोयले की जहरीले पानी जहरीलो कर छो हो। सिंध सरकार 1 अक्टूबर का परगणे के फ्लोर मिलन के सरकारी कणक जारी करने जो फैसलो कर छोड़ो है। कल वजीर आला हाउस में थे इजलासमी खुराक खाते आगाह किया तो सूबे में 226.918 टन कणक जब्त कई वही है। उन्हीं में 57.122 टन फ्लोर मिलन में मौजूद है जडे त 179.796 टन व्यापारियों जखीरा अंदोजे कंदड़न वट हताई है जडे त 25.350 टन कणक से केस हली रो है। इजलास के बुधाया वो खुराक खाते अग में खेल कणक जहा 2.855 अरब रुपया अदा कर छा वे वजीर खुराक खाते की हिदायत कई तो 1 अक्टूबर का फ्लोर मिलन के कणक जारी करने के इंतजाम के हतमी शिकिल दिनी वे उन्होंने तो सरकारी कणक जो फायदो सार्फिन तई अटे की घटल कीमतों की सूरत में पहुंचन घुर्जे। खुराक खाते इजलास के आगाह किया तो सिंध पास्को का 1,90,000 मैट्रिक टन 2,23,450 मैट्रिक टन के विच में कणक खरीद कर मनसूबो रखे थी। उन लाइ ट्रांसपोर्टेशन जी ट्रेडर अगमी जारी किया वो है जडे त ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP 3,00,000 टन परदेही कणक की दरामद लाइ टेंडर जारी किया है। वो टेंडर इन हफ्ते खुलने जो इम्कान है। इजलास के खिताब कंदे मुराद अली शाह वर्जाया तो असा यकीनी बनाईदे तो सजी स्थिति में कणक की घुर्बल स्टॉक मौजूद हुए सार्फिन के सस्ती कीमत से अटो मिले। घरू खाते बाबत स्टैंडिंग कमेटी पारा मंशियात के रोकथाम के लिए IG सिंध के बलोचिस्तान के घरू वजीर से राबतो कर असरायती हिकमत अमली जोड़ने की हिदायत कई वही है। IG सिंध पारा सिंध में डोहन के वारदातों में घटाई वाली रिपोर्ट कमेटी के हवाले कई मोबाइल फोन फुरवार वारदातों में इजाफे जो एतराफ़ किया वो। कल PPMPA फरियाल टालपुर की सदारत हेठ थे इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मंशियात विक्रे के इल्ज़ाम हेठ आयल अनमोल उर्फ पिंके के केसन बिन मामलों से तफसीली गौर किया वो। पुलिस इख्तियार पारा स्टैंडिंग कमेटी में पेश कल रिपोर्ट में बलोचिस्तान में मंशियात जो फैक्ट्रियो उतना मंशियात सिंध डां अचे थी। स्टैंडिंग कमेटी IG सिंध की हिदायत कई तो बलोचिस्तान के घरू वजीर से राबतों कर मंशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए असरायती पॉलिसी ठाही वे। इजलास में IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ब्रीफिंग दींदे तो सिंध में मजमूई तौर से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी है। पुलिस इख्तियार इजलास के बुधा तो मंशियात विक्रो कदड़ 9,000 का जवाबदार के गिरफ्तार किया वो है जडे त बी ड्रग सप्लायर भी मारजी वो है। घरू खाते सूबे में हथियार जहा नवा लाइसेंस जारी करने पाबंदी लगे छी। घरू वजीर के तर्जमान मूजिब नवन हथियार की डीलरशिप जहा लाइसेंस जारी करने भी पाबंदी होंगी। तर्जमान मूजिब पाबंदी से फौरी तौर अमल जडे त पाबंदी ईंदड़ हुकूमत बरकरार रही को भी लाइसेंस जारी कदड़ अथॉरिटी हथियार जो नव लाइसेंस जारी न कर सकती जडे त हथियार के व्यापार के लिए डीलरशिप जो नव लाइसेंस भी जारी न किया वो। तर्जमान मूजिब रुगो गैरमामूली खास केसन में हथियार जहा लाइसेंस जारी करने की इजाजत दई अड़न केसन में लागापल इख्तियार अगवाट मंजूरी वन लाजमी होंगी। कायदन जबतन मूजिब खास केसन में घरू वजीर वे वजीर की मंजूरी घुर्बल होंगी। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध में हारिन के हकन जबरी पोरे औरतुन खिलाफ तशद्दुद बाबत अहम रिपोर्ट सामू आई है जैमी सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकन में हारिन से मुबैना ज्यादतिन जबरी पोरे बुनियादी हकन की खोट ते गणती जाहिर कई वही है। हारी वेलफेयर एसोसिएशन पारा हैदराबाद क्लब में सिंध में हारिन के हकन बाबत साल 2025 के सालियानी 10 रिपोर्ट जारी कई वही। रिपोर्ट की पधराई तकरीब के खिताब कंदे हारी वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी सदर सिंध में करोड़े हारिन जहा आइनी कानूनी इंसानी हक मुतासर थी रहा है। उन्होंने मुतालबो किया तो हारिन के लिए सूबाई कौमी असेंबली तोड़े सेनेट में खसूसी नुमाइंदगी दिनी वे जरई जमीन के निज़ाम में सुधार आंदा वन बेजमीन हारिन के कानूनी तौर रजिस्टर्ड कर हारी कार्ड जारी क्या वन। रिपोर्ट में उहो भी मुतालबो कयो वियो त बेज़मीन हारिन ऐं हरियाणिन खे सरकारी ज़मीन रिहाइश लाइ प्लाट ऐं बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि, जॾहिं त ज़रई मज़ूरनि खे सोशल सिक्योरिटी ऐं रजिस्ट्रेशन करे हुकूमत पारां मुक़ररु कयल घटि में घटि उजरत ॾिनी वञे। इंसानी हक़नि जे अॻवान पिणु हारियुनि जे बुनियादी हक़नि बाबति ख़दशनि जो इज़हार कंदे चयो आहे त हरियाणियुनि खे विरसे में मिलंदड़ ज़मीन जे रेवन्यू रिकॉर्ड में मुंतकिली ऐं ॿियनि क़ानूनी मामलनि ते बि ध्यानु ॾियणु ज़रूरी आहे। रिपोर्ट मूजिबि 2025 दौरान सिंध में औरतुनि ऐं छोकिरियुनि ख़िलाफ़ु तशदुद जा 772 केस रिपोर्ट थिया। उन्हनि में 218 क़तल, 138 अगवा, 124 ख़ुदकुशियूं, 104 रेप या जिन्सी ज़्यादती, 24 घरेलू तशदुद, 72 गैरत जे नाले ते क़तल ऐं 35 जबरी शादियुनि जा केस शामिल आहिनि। ज़िले लिहाज़ खां खैरपुर में 75, लाड़काणे में 55, दातू में 45, सखर में 40 ऐं घोटके में 35 वाकिया रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो त 2025 दौरान कबायली ऐं फिरके वाराणी तशद जे वाकी थिया। रिपोर्ट इलाइक़े बहराड़ी जी मई ज़रई शोबे में 10,000 ऐं मज़दूरनि खे मां उमरकोट में 4,068, मीरपुर ख़ास में 1,764 ऐं सांगड़ में 1,576 केस रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त 2021 खां पोइ जबरी पोरे जी रिपोर्ट थियल केसनि में घटिताई ज़रूरु आई आहे, पर हार ऐं कानूनी सुञाणप बाबति मसला अञा ज़रूरु उथारे थी त सिंध जी ज़रई मईशत अदा कंदड़ हुन मुकमल तौर ते।
1: हीउ हुयो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं निगहबान।

0: जी सालो हर वेझे पंसार अनवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम नकू कवई माशुमानुता द पसकी वर कवल महेर वई जकच हम द गसास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में हारे और रंगत को रोशन करे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे टीका रात को मिल्क राइज से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज भी चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्ने के लिए मिल्क राइज इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी सोप एक्ने क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से ना मजीद मालूमात जफर इकबाल सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-10-0300-310-3109
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर पुर एतमाद आई बा अख्तियार इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम एरिया जिते जी बेहतरीन तमाम जेन्युइन खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी तमाम बेहतर फ्यूल एक्ट्राइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320-18-00-003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को की चमक और हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक

0: नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले महरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले टूअर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों जो की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजह इसरापुर का विजीत रहा हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजह 300-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
2: मेहरान आयरन होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीया सिल्वर टी क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।

जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमए सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सिंध में पौणा 41 लख न्याणियों स्कूलन का बाहर बहराड़ी में औरतों की हालत खराब है हुकूमत रिपोर्ट पेश कर छी सिंध सरकार पारा कणक जो इमदादी अघ मुकरर करण वारो फैसलो ब हफ्ता मुलतवी कणक पोखींदड़ 25 एकड़न ताई जे मालिक 5.5 लख आबादगारन ऐं हारन लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान सिंध जे फ्लोर मिलन खे 1 अक्टूबर खां कणक फराहमी जो फैसलो अटो सस्तो करण जो हुकुम सिंध सरकार पारां 10 सालन खां पो गोढ़ाणू डेम हानिकार करार छोड़ बंद नए डेम जो तैयारियों मंशात के कि रोकजे घरू खाते पारा IG सिद्ध के बलोचिस्तान के घरू वजीर से राबते जो हुकुम सिंध में हथियारन जा नवा लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी नोटिफिकेशन जारी स्पेशल रिपोर्ट भी अवां बुधी सकदा सिंध में हारन जा हक जबरी पोरे ऐं तशद्दुद जा अंग अखर सिंध हुकूमत सनफी बराबरी बाबत पहरी सनफी बराबरी रिपोर्ट पधरी कर छी काल इंसानी हकन वाले खास मामले राजवीर सिंह सोढ़ो वजीर आला से मुलाकात में रिपोर्ट पेश कई रिपोर्ट मूजिब साल 2023 में सिंध की आबादी 5,56,90,000 तक पहुंची वही जेका 2.57% सालानी शरह से वधी रही है हर 100 औरतों के मुकाबले में मर्दन जो अंग 108.76 है रिपोर्ट में सेहत के शुबे में लगातार अगभराई पेश कई वही है जिते सरकारी फंडन की विर्च साल 2023-2024 के 214.5 अरब में वधी साल 2024-2025 में 267.54 अरब रुपया थी वही है वेम दौरान मायरों की फोतगी की शरह 314 में नुमाया तौर से घटी हर लख जिंदा जबंदड़ बारन ते 224 तई अची वही है जडें त नवन जावल बारन की फोतगी की शरह हर 1,000 जिंदा जबंदड़ बारन ते 24 हुई उन्हें अग भराइन बावजूद तालीम के शोबो सूबे की सुबह का वो चैलेंज में एक है रिपोर्ट मूजिब मर्दन में खुआंदगी की शरह 68 और औरतुन में 47% है जडें बहराड़ी में औरतुन में उ शरह गणती जोगी हद तई घट यानी 27.57 है 5-16 साल के उम्र जो 40 लख का वधिक छोकरियों स्कूलन का बाहर आन जाल फोरी ए लगातार कदम की जरूरत से जोर दिनों वो है उन मौके वजीर आला मुराद अली शाह तो सिंध हुकूमत खास सीड़पकारी इदारती सुधारन सनफी जरूरतों के नजर में रखते तरक्याती मनसूबाबंदी जरिए उन्न रुकावटों के खत्म करने के लिए पुरजम है उन्हें चो तो असा अड़ी सिंध अडण चाहूँ था जिते हर औरत छोकरे के पढ़ कम कर अगवाणी करण समाज में पाँ हिस्सों विझण की बराबर मौका मिलन सिंध सरकार पारा कणक की इमदादी अघ मुकर करण वो फैसलो ब हफ्ता मुलतवी कर छोड़ो है कणक पोखींदड़ 25 एकड़ तई के मालिकन 5.5 लख आबादगारन हार लाए DAP भाण के मद में 4,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान किया वो है मार्च में खुराक खाते के कणक विक्रो कंदड़ 56,471 आबादगारन के 2,000 रुपया वाधू 6,000 रुपया देने जो फैसलो कणक सब्सिडी 14.9 खां वधी 16 अरब तई पहुंची वेंदी उन दस में काल वजीर आला मुराद अली शाह की सदारत हेठ थियल सूबाई काबीना के इजलास में चयो वियो तो आबादगारन के लिए ऐलानियल कणक सब्सिडी पैकेज में सिंध के लगभग 5.5 लख कणक के आबादगारन के फायदो पहुंचो वे वजीर सिंधारी सपोर्ट प्रोग्राम तहत 25 एकड़ तई जमीन के मालिक रखंदड़ कणक के आबादगारन की नए सिर रजिस्ट्रेशन की हिदायत कई अग में फायदो वठंदड़न के रेवन्यू खाते जरिए बीहर तस्दीक कई वेंदी काबीना के आगाही दिनी वही तो मटियारी सखर दिलन के टिन देहन मटियारी दिल के देह मटियारी पलेजाणी सखर के देह बागड़जी में ब्लॉकचेन ई सिस्टम शुरू किया वो बोर्ड ऑफ रेवन्यू पारा IBA यूनिवर्सिटी सखर के तावन से ई ट्रांसफर सिस्टम तैयार किया वो है सिंध काबीना नए स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी दई छी काबीना इजलास में सिंध की बासलाहित रांदगरन की गोल्हा हिम्मत अफजाई के लिए कदम खड़ने की मंजूरी दिनी है सिंध में स्पोर्ट्स हॉस्टल्स अकेडमीज कायम करने जो पिण फैसलो किया वो है सिंध सरकार थर के कोयले की खुटाई दौरान निकरंदड़ पानी के जखीरन के लिए कायम कल गोढ़ाणे डेम के 10 साल मकामी आबादी के लिए हानिकार करार दींदे पानी छोड़ न करण जो ऐलान कर छोड़ो उन हवाले से सिंध के माहौलियाती खाते के पार्लियामानी सेक्रेटरी हसन अली शाह तो थर में कोयले की खुटाई के दौरान निकरंदड़ जहरीलो पानी के छोड़ के लिए ठायल गोढ़ाणे डेम खिलाफ मकामी रहवासन के दाख नजर में रखंदे सिंध सरकार उत पानी छोड़ बंद कर छोड़ो है कोयले की खुटाई दौरान निकरंदड़ पानी छोड़ करण लाए मुतबादल हंध गोल्हो
थियो पियो वञे। हुन चयो त पाणी जे ज़खीरनि जे लाइ ॻोढ़ाणे डेम जे साम्हूं जिते माण्हुनि जी अच वञ या ज़मीनूं न आहिनि उते ॿियो डेम ठाहियो पियो वञे। हुन चयो त ॻोठण जो मौक़ुफ़ु सही हो, उते जे आसपास जी ज़ेर ज़मीन पाणीअ खे बि कोयले जी ज़हरीले पाणी ज़हरीलो करे छॾियो हो। सिंध सरकार 1 अक्टूबर खां परगणे जे फ्लोर मिलनि खे सरकारी कणक जारी करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। काल्ह वज़ीर आला हाउस में थियल इजलासमी खुराक खाते आगाह कयो त सूबे में 226.918 टन कणक ज़ब्त कई वई आहे। उन ई मां 57.122 टन फ्लोर मिलनि में मौजूदु आहे, जॾहिं त 179.796 टन वापारियुनि ऐं ज़खीरा अंदोज़ कंदड़नि वटि हथ आई आहे, जॾहिं त 25.350 टन कणक ते केस हली रहियो आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त ख़ुराक खाते अॻ में खयल कणक जा 2.855 अरब रुपया अदा करे छॾिया। वॾे वज़ीर ख़ुराक खाते खे हिदायत कई त 1 अक्टूबर खां फ्लोर मिलनि खे कणक जारी करण जे इंतज़ामनि खे हतमी शिकिल ॾिनी वञे। हुननि चयो त सरकारी कणक जो फ़ाइदो सार्फिनि ताईं अटे जी घटियल क़ीमतुनि जी सूरत में पहुचणु घुरिजे। ख़ुराक खाते इजलास खे आगाह कयो त सिंध पास्को खां 1,90,000 मेट्रिक टन ऐं 2,23,450 मेट्रिक टन जे विच में कणक ख़रीद करण जो मनसूबो रखे थी। उन लाइ ट्रांसपोर्टेशन जी ट्रेडर अॻु में ई जारी कयो वियो आहे, जॾहिं त ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP 3,00,000 टन परॾेही कणक जी दरामद लाइ टेंडर जारी कयो आहे। उहो टेंडर हिन हफ़्ते खुलण जो इम्कान आहे। इजलास खे ख़िताब कंदे मुराद अली शाह वरजायो त असां यकीनी बणाईंदासीं त सॼी स्थिति में कणक जी घुरबल स्टॉक मौजूदु हुजे ऐं सार्फिनि खे सस्ती क़ीमत ते अटो मिले। घरू खाते बाबति स्टेडिंग कामेटी पारां मंशियात जे रोकथाम जे लाइ IG सिंध खे बलूचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राबितो करे असराइती हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई वई आहे। IG सिंध पारां सिंध में ॾोहनि जे वारदातुनि में घटताई वारी रिपोर्ट कामेटीअ हवाले कई। मोबाइल फ़ोन फुर वारनि वारदातुनि में इज़ाफ़े जो एतिराफ़ कयो वियो। काल्ह PPMPA फरियाल टालपुर जी सदारत हेठि थियल इजलास में सूबे में अमन अमान जी सूरत हाल, मंशियात विकिरे जे इल्ज़ामनि हेठि आयल अनमोल उर्फ़ पिंके जे केसनि ऐं ॿियनि मामलनि ते तफ़सीली गौर कयो वियो। पुलिस इख़्तियारनि पारां स्टेडिंग कमेटी में पेश कयल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त बलूचिस्तान मां मंशियात जूं फैक्ट्रियूं आहिनि, उतां मंशियात सिंध ॾांहुं अचे थी। स्टेडिंग कमेटी IG सिंध खे हिदायत कई त बलूचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राबितो करे मंशियात जी स्मगलिंग रोकण जे लाइ असराइती पॉलिसी ठाही वञे। इजलास में IG सिंध जावेद आलम ओढो ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त सिंध में मजमूई तौर ते अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थी आहे। पुलिस इख़्तियारनि इजलास खे ॿुधायो त मंशियात विकिरो कंदड़ 9,000 खां वधीक जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जॾहिं त 2 ॾींहं अॻु ड्रग सप्लायर बि मारिजी वियो आहे। घरू खाते सूबे में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। घरू वज़ीर जे तर्जुमान मूजिबि नवनि हथियारनि जी डीलरशिप जा लाइसेंस जारी करण ते बि पाबंदी हूंदी। तर्जुमान मूजिबि पाबंदीअ ते फौरी तौरु अमल थींदो, जॾहिं त पाबंदी ईंदड़ हुकूमत ताईं बरक़रार रहंदी। को बि लाइसेंस जारी कंदड़ अथॉरिटी हथियारनि जो नओं लाइसेंस जारी न करे सघंदी, जॾहिं त हथियारनि जे वापार जे लाइ डीलरशिप जो नओं लाइसेंस बि जारी न कयो वेंदो। तर्जुमान मूजिबि रुगो ग़ैरमामूली ऐं ख़ासि केसनि में हथियारनि जा लाइसेंस जारी करण जी इजाज़त ॾेई सघे। अहिड़नि केसनि में लाॻापियल इख़्तियारनि खां अॻुवाट मंज़ूरी वठणु लाज़मी हूंदी। क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि मूजिबि ख़ासि केसनि में घरू वज़ीर ऐं वॾे वज़ीर जी मंज़ूरी घुरबल हूंदी।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध में हारनि जे हक़नि, जबरी पोरे ऐं औरतुनि ख़िलाफ़ तशद्दुद बाबति अहम रिपोर्ट साम्हूं आई आहे, जंहिं में सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हारनि सां थींदड़ मुबैना ज़्यादतियुनि, जबरी पोरे ऐं बुनियादी हक़नि जी खोट ते ॻणती ज़ाहिर कई वई आहे। हारी वेलफेयर एसोसिएशन पारां हैदराबाद क्लब में सिंध में हारनि जे हक़नि बाबति साल 2025 जे सालियानी 10वीं रिपोर्ट जारी कई वई। रिपोर्ट जी पधराई तकरीब के खिताब कंदे हारी वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी सदर चयो त सिंध में करोड़े हारनि जा आइनी, कानूनी ऐं इंसानी हक़ मुतासिर थी रहा आहिनि। उन्हनि मुतालबो कयो त हारनि जे लाइ सूबाई ऐं क़ौमी असेंबलियुनि तोड़े सेनेट में ख़ुसूसी नुमाइंदगी ॾिनी वञे, ज़रई ज़मीन जे निज़ाम में सुधार आंदा वञनि ऐं बेज़मीन हारनि खे क़ानूनी तौरु रजिस्टर्ड करे हारी कार्ड जारी कया वञनि। रिपोर्ट में उहो बि मुतालबो कयो वियो त बेज़मीन हारनि ऐं हरियाणियुनि खे सरकारी ज़मीन, रिहाइश लाइ प्लाट ऐं बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि, जॾहिं त ज़रई मज़ूरनि खे सोशल सिक्योरिटी ऐं रजिस्ट्रेशन करे हुकूमत पारां मुक़ररु कयल घटि में घटि उजरत ॾिनी वञे। इंसानी हक़नि जे अॻवाण पिणु हारनि जे बुनियादी हक़नि बाबति ख़दशनि जो इज़हार कंदे चयो आहे त हरियाणियुनि खे विरसे में मिलंदड़ ज़मीन जे रेवन्यू रिकॉर्ड में मुंतकिली ऐं ॿियनि क़ानूनी मामलनि ते बि ध्यानु ॾियणु ज़रूरी आहे। रिपोर्ट मूजिबि 2025 दौरान सिंध में औरतुनि ऐं छोकिरियुनि ख़िलाफ़ तशद्दुद जा 772 केस रिपोर्ट थिया। उन्हनि में 218 क़त्ल, 138 अगवा, 124 ख़ुदकुशियूं, 104 रेप या जिन्सी ज़्यादती, 24 घरेलू तशद्दुद, 72 गैरत जे नाले ते क़त्ल ऐं 35 जबरी शादियुनि जा केस शामिल आहिनि। ज़िले लिहाज़ खां खैरपुर में 75, लाड़काणे में 55, दातू में 45, सखर में 40 ऐं घोटके में 35 वाक़िया रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो त 2025 दौरान कबायली ऐं फिरके वाराणी तशद्दुद जे वाक़नि में 337 माण्हू मुतासिर थिया, जिन मां 136 मारिजी विया ऐं 201 ज़ख़्मी थिया। रिपोर्ट मूजिबि खैरपुर ज़िलो कबायली तकरारनि खां वधीक मुतासिर इलाइक़ो मां रहियो, जॾहिं त अहिड़नि वाक़नि सबबि बहराड़ी जी मईशत, ज़रात ऐं हारे जे रोज़गार ते पिणु असरु पियो। रिपोर्ट मुताबिक़ 2018 खां 2025 ताईं ज़रई शोबे में 10,053 हारनि ऐं मज़दूरनि खे जबरी पोरे मां आज़ादु करायो वियो। उन्हनि मां उमरकोट में 4,068, मीरपुर ख़ास में 1,764 ऐं सांगड़ में 1,576 केस रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त 2021 खां पोइ जबरी पोरे जी रिपोर्ट थियल केसनि में घटताई ज़रूरु आई आहे, पर हारनि जे हक़नि तहफ़ुज़ ऐं क़ानूनी सुञाणप बाबति मसला अञा बि मौजूदु आहिनि। हीअ रिपोर्ट हिकु अहम सवाल ज़रूरु उथारे थी त सिंध जी ज़रई मईशत में बुनियादी किरदारु अदा कंदड़ हारनि खे संदन क़ानूनी, मुआशी ऐं इंसानी हक़ कॾहिं मुकमल तौर ते मिलंदा। हीउ हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए, और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।

परेशान है। हम भी शिकस्ता दिल हैं तो तू भी बहुत परेशान है अंदर से। रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो। अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगेन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जबरदस्त खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे प्यारी सी बैटर सी जबरदस्त सी लाइफ को। बिल्कुल आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन आ गया, कहां से आ गया और ये क्यों आया है बंदा। अरे बाबा, कभी कभार जब आप लोगों के घर बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं और या तो आपके चेहरे पर बहुत ही जबरदस्त खुशी होती है या फिर आपके चेहरे पर 12 बज जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि यार ये तो अजीब बात हो गई, ना बुलाया था ना किसी ने बताया था और ये शख्स जो है ये सामने आ गया है। तो कभी कभार बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं वो कभी कभार दिल पर छा जाते हैं और बहुत सारे लोगों के जो माथे होते हैं उनके ऊपर बल आ जाते हैं और 12 बज जाते हैं। लेकिन मेरे और चाचा रब्बू के चेहरे पर आज तक कभी बल नहीं आया भाई। मेहमान को हम कहते हैं वेलकम बखैर आले जियानु हरकल राशा हलन वसालन मरहबा व मरहबतैन। और क्या चाहे हैं बखैर आले, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जबरदस्त खैरियत से होंगे। बिल्कुल मुझे कहते हैं मासूम बूम बूम, मेरा नाम तो सुना होगा। पूछ लो इन हवाओं से, पूछ लो इन फिजाओं से, पूछ लो अपने घर की दीवारों से, पूछ लो इन हवाओं से। वैसे बूम बूम जहां चले जाते हैं वहां दस्तरखान लग जाते हैं। बहुत ज्यादा शुक्रिया तमामी का जिन्होंने ट्यून किया हुआ है। बिल्कुल वॉइस ऑफ हाँ बिल्कुल 88 GFM 88, बहुत ज्यादा शुक्रिया। और GFM नेटवर्क तमामी नेटवर्क का उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने ट्यून कर रखा है और मुझे मेरी इस आवाज को नाचीज से बंदे को तमाम के तमाम लोग सुन रहे हैं और मेरा और आपका साथ रहेगा बिल्कुल जनाब ठीक ठीक ठीक इस वक्त से लेकर हाय हाय 11 बजे तक आप लोगों के लिए लाया हूँ 10 बोरी बातें। इतनी बातें कि बस क्या बताऊं कितनी बातें।

बिल्कुल जनाब, मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक को, जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए प्ले कर चुका हूँ। आप लोगों का होस्ट दोस्त साथी संगीत बाली, मुझे कहते हैं बुम बुम, और बिल्कुल जनाब प्रोग्राम को कहते होते हैं दिल से दिल तक, और मैं आज आपके दिल तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाना चाहूंगा। और कहते हैं कि लव बिगेस्ट लव, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लव। कहते हैं कि ये खूबसूरती इंसानों से ही है, दीवारों से नहीं, बंगलों से नहीं, गाड़ियों से नहीं, क्योंकि सारी की सारी ये गाड़ियां, बंगले और ये जो भी आप देख रहे हैं जमाने के अंदर, अगर इसमें इंसान ना हो तो ये सारी की सारी रद्दी बराबर हैं। तो भाई एक दूसरे से प्यार कीजिए, मोहब्बतें समेटिए, मोहब्बतें बिटोरिए, मोहब्बतें उठा के अपने अपने बैग में ले जाइए और फिर एंजॉय कीजिए। मैं हफ्ते में एक ही दिन आऊंगा और संडे को कर देंगे फंडे, संडे नाइट में हाजिर आप लोगों का होस्ट दोस्त साथी संगी वैली, मुझे कहते हैं बूम बूम चैनल शहजाद भी तुसे सुनते पियो तुसे ऑन चैनल बिल्कुल GFM 88। वैसे अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो आई एम सो सॉरी, वैसे 10 साल पहले भी मैं यहीं था। मैं इतना पुराना हूँ जितना तुम्हारे वो सामने देखो पहाड़ जो है ना, वरोड़ी वाले पहाड़ जो है, इतना पुराना हूँ मैं, लेकिन मैं खूबसूरती मेरी गुलाम है।

0: प्यार में। बिल्कुल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, जबरदस्त, खैरियत से होंगे। और आज मेरा और आपका साथ बिल्कुल 88 से है, और हर संडे की नाइट आप लोग मुझे सुन सकते हैं बिल्कुल 9 बजे से लेकर ठीक ठीक ठीक 11 बजे तक। आप लोगों के साथ होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चिट चैट, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल, आप लोगों के लिए बहुत सारे खूबसूरत से ट्रैक, और अपनी आवाज में भी गुनगुनाऊंगा आप लोगों के लिए। और मुझे पता है बहुत सारे लिसनर जो मेरे पुराने लिसनर थे, इतने पुराने जितने पहाड़ हैं पुराने। और मैं आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं इतना पुराना हूं जितना पहाड़ होता है ना जी। आप लोगों ने कभी पेशावर जाए, आप लोग कभी मरी जाए, स्वात जाए, तो आप लोगों को बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे। और वो जो पहाड़ होते हैं उनकी खूबसूरती बहुत रही है, हमेशा से खूबसूरत है, खूबसूरत रहेंगे। और इंशाल्लाह लजीज अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को बड़ी उम्र दराज उम्र दे जनाब। वैसे मैं सही कहता हूँ।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम चाचा रबू। देखिए मैं जहाँ जाता हूँ आप मेरे पीछे आ जाते हैं, प्लीज खुदा दा वास्ता। आप मैं
1: यार क्या ये माइक देते कर, ये लाल

0: बैठ गए थे शहजाद के साथ सेल्फी लूं है।
1: बिल्कुल सामिन, मेरे साथ इस टाइम चाचा रब्बू मौजूद है।
0: मैं भी नाले मौजूद हूँ। भोला,
1: ओ भोला भोला भोला, बहुत मासूम सा है
0: यार। मैं अगर शहजाद तेरी इजाजत हो तो मैं इसकी थोड़ी तारीफ कर दूं। मोहतरम सामीन, ये ऐसा है भोला, इसका इतना बड़ा मुंह है, इसका मुंह अगर आपके कहीं पर बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं और उसमें कहीं चूहा घुस गया है, चूहा अंदर चला गया है, तो ये भोले का मुंह दिखा दो तो सारे के सारे चूहे बाहर।
2: मैं घर जा रहा।
1: बैठे बैठे भोला, प्लीज बैठे, ही मजाक कर रहा है
0: यार। मजाक करना प्यार, वही पैर तो हटा, इतना बड़ा पैर है यार तेरा।
1: चाचा रब्बू देखो, मुझे इंट्रो करनी है, मुझे अपने लिसनर्स के साथ बातें करनी है। इतनी दूर दराज तक मेरी आवाज जा रही है, पिशावर में भी आवाज मेरी सुनी जा रही है, सवाद में भी आवाज सुनी जा रही है, मेरी आवाज जो है कश्मीर की वादियों में भी सुनी जा रही है, बटग्राम में भी आवाज सुनी जा रही है, आपके लाहौर में मुझे सुना जा रहा है, कराची में मुझे सुना जा रहा है, क्योंकि मैं हूँ बूम बूम। वैसा नाम तो सुना होगा, जब सो गांव दूर दूर तक कोई बच्चा रोता है और वो सोता नहीं, तो माँ कहती है, ए मुन्ना, ए बबलू, ए बच्चा, ए पीले पीले दांतों वाले, ए टेढ़े टेढ़े दांतों वाले, चुप हो जा, चुप हो जा, वरना। बुम बुम आ जाएगा, और जब बुम बुम आते हैं तो हवाएं तूफान में बदल जाती है, टेबल पे पड़ी हुई चीजें खुद ब खुद थर थर आने लगती है, और फिर मेरे लिसनर से कोई काम नहीं होता, और वो फिर मेरे ही बारे में सोच रहे होते हैं कि ये बंदा है कौन, कहां से आया क्यों है, इसका मकसद क्या है। पूछ लो इन हवाओं से, पूछ लो इन फिजाओं से, पूछ लो अपने रेडियो सेट से, क्या वो मुझे नहीं जानते। पापा पापा, ये कौन आ गया? ओ सनी भाई, सनी भाई, बैठे बैठे बैठे।
3: नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा होकर ही बात करूंगा, क्योंकि मेरा ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है।
0: यार ये अजीब सी दाढ़ी वाला है, ये आधी दाढ़ी इसकी काली तेज है, आधी थोड़ी सफेद है।
3: ओ यार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली तो बस मुझे तारीख।
1: देखे देखे सनी भाई,
3: नहीं मैं खड़ा होकर बात करता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जो 2.5 किलो का था अब वो 1 पाव का रह चुका है। पता है क्यों? पता है क्योंकि आजकल मुझे कोई फिल्मों में काम नहीं देता, लेकिन मेरे बाबा से पूछ लो, फोन करके पूछो।
0: यार तेरे बाबा से क्या फोन करके पूछे, तू बैठ तक।
3: मैं बैठूंगा नहीं,
1: बैठूंगा नहीं मैं, अगर मेरा हाथ उठ गया तो चाचा रब्बू तुम उठोगे नहीं, उठ जाओगे। ओहो, आई एम सो सॉरी लिसनर्स, जितने भी लिसनर्स हैं, आई एम सो सॉरी, इस टाइम स्टूडियो में जो है 2.5 किलो हाथ वाला आ गया है बंदा, आई एम सो सॉरी। सनी भाई बैठ जाएं।
3: चलो तुम कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ, वैसे मैं इस छोटे मोटे लोगों के साथ बैठता नहीं हूँ।
1: देखिए अब हम छोटे मोटे लोग नहीं, मैं बहुत बड़ा आरजी हूँ मैं।
0: यार तुमसे बड़ा अर्ज मैं हूँ यार, पूछ लो बाबर से, पूछो इससे, पूछो उससे, पूछो वो शेबाजी से पूछो।
1: शेबाजी वैसे मुझे सुनेगा तो हंसेगा, खुश होगा वो, उसको पुरानी बातें भी याद होंगी, बड़ा मेरा पक्का दोस्त है भाई।
0: ये नाम इसका शेबाजी क्यों है?
1: ये मैंने प्यार से रखा था। जनाब हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस टाइम 9:29 हुआ चाहते हैं, और फिर कमर्शियल ब्रेक का भी टाइम है, आप लोगों के साथ साथ बहुत सारी बातें करूंगा, और आप लोगों के लिए बहुत सारे ट्रैक है मेरे पास, बहुत सारी चीजें हैं, इतनी चीजें उफ मेरे खुदा की कितनी चीज है आप लोगों के लिए। बिल्कुल जनाब ये प्ले करेंगे वक्तन पवक्तन, मेरे पास अच्छे अच्छे ट्रैक है, मेरे पास अच्छी अच्छी आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला भी स्टार्ट करेंगे, और कॉल आना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल जनाब दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी है और आप लोगों से कोई काम नहीं हो रहा, और फिर आप मेरे ही बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको मैं कहता चलूं कि आप मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करें मेरे बारे में ज्यादा, क्योंकि मैं समझ में नहीं, मैं डायरेक्ट दिल में आता हूँ, फिर मैं दिल से जाता नहीं गाइस।

0: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा
2: हा भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचां
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन ता पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
5: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 0300 3105109
6: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008569 अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: पड़ जाता है।
1: यार मैं आपके पीछे नहीं पड़ता, आप वो पीछे जो पड़ती है वो पुलिस होती है।
0: यार पुलिस का नाम ले ले यार।
1: अच्छा हुआ पुलिस वाले तो हमारे बड़े प्यार करते हैं। अभी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, आमिर मुझे सुन रहा है, इरफान मुझे सुन रहा है, पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं, सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। अच्छा
0: यार पुलिस अगर तेरे दोस्त है फिर मेरी तेरी दोस्ती खत्म है शहजादा।
1: यार रोए ना प्लीज। चाचा रब्बू प्लीज क्या हो गया आपको? अच्छा बात करूंगा चाचा रब्बू की भी, लेकिन बात नफ्सियात पे चल रही है। बच्चों के सामने आपने कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करनी कि बच्चे उसे अडॉप्ट करें। झूठ नहीं बोलना बच्चों के आगे, ठीक है? बच्चे जो है ना, आपको पता है बच्चों की जो लर्निंग होती है, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूं तो आई नो दैट, मुझे पता होता है कि यार बच्चे जो है किस टाइम से वो लर्निंग कर रहा है। 6 मंथ का जो बच्चा होता है ना, 6 मंथ आप अंदाजा लगाए 6 महीने क्या होता है, उस टाइम से उसकी लर्निंग जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। और फिर 6 साल के बाद उसकी वो जो मेमोरी होती है वो इतनी तेज होती है, 6 साल के बच्चे में मतलब जो उसका जो अकल का जो एक पैमाना होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है और वो बहुत सारी चीजों को जल्दी पिक करता है। हम तो कहते हैं यार बच्चा बड़ा हो तो हम स्कूल में दाखिल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे छोटे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, 2.5 साल 3.5 साल 3.5 साल जो है एक बेस्ट उम्र है बच्चे की एडमिशन, 4 साल, तो फिर आपको बच्चे और ऐसे ही जगह में दाखिल करें कि वहां पर माहौल भी हो, ऐसा ना हो कि आप बच्चे को छोड़ आए और जो है ना फिर वो जो है खाला उसके साथ घूमती रहे, और तो समझ रहे ना। तो आया जो है वो उसके पीछे पीछे और बच्चा।
0: यार मेरे को, यार मेरे को रुमाल दे, मैं नाक में रखू यार।
1: अभी तो मैं उसने नहीं किए यार। अच्छा तो मैं बात कर रहा था, बच्चे जो है 6 साल की उम्र, अच्छा 6 साल की बातें इसी तरीके से रहेगी। चाचा रब्बू के ऊपर एक बात याद आ गई, एकदम ऐसा हुआ कि चाचा रब्बू जो है ना जिससे इसकी मंगनी हुई थी चाचा रब्बू।
0: यार छोड़ दे, वो तेरी मासी फुल्लो मर गई, उन्हें छोड़ दे इस बात को। यार
1: बात ये है कि जब इसकी मंगनी नहीं हुई थी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप जो है ना आपकी तबीयत खराब होती है, आपने सिगरेट नोशी जो है आपने छोड़नी। इसने कहा सिगरेट तो मैं छोड़ दूंगा, नोशी को मैं नहीं छोड़ूंगा, नोशी जो है मेरी वो जो है ना वो मंगेतर है।
0: यार ये बात है, तू करता है यार, वो तेरी वासी फुलो यार, ना उसे जल्द।
1: अच्छा सामीन बातें बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं ऐसे ट्रैक चलाऊं कि आप बोलें यार मनोहर शहजाद ये तो भाई तू बड़ा जो है इंटेलिजेंट बंदा है, तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा सादा बंदा हूँ और सादे बंदे को सुनने के लिए आपको बड़ा दिल चाहिए, और दिल जो है किसी के पास नहीं होता, दिल होता है अच्छे लोगों के पास, चाचा रब्बू वालों के पास है। हाय हाय ये कौन सा ट्रैक चला दिया मनोहर शहजाद, अच्छा इसको स्किप करना पड़ेगा। हाँ ऐसे करते हैं आपके लिए एक प्यारा सा ट्रैक, मुझे कहते हैं MS और MS को कहते हैं मनोहर शहजाद।
0: यार तेरी जैसे तो मैं भी नाचना चाहता हूँ यार।
1: चलो चाचा रब्बू यहाँ ये हाथ पकड़े,
0: मेरी अम्मी कहती है कि तू भी जाके डांस करी।
1: चलो 1 2 3 3 नहीं 3।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: 9:45 PM. 9:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला Sharia compliant gold based financing.
3: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दे उन्नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुना उद्रवले हुमशी नुपदी वजा द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई जकच हुम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरिमुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
6: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: अरे बाबा वो टूटने ना देगा मेरे सबर का सिलसिला, वो टूटने ना देगा मेरे सबर का सिलसिला, वो कुन फरमाएगा और मौजा हो जाएगा, वो कुन फरमाएगा और मौजा हो जाएगा। Once again, warm welcome back तमामी को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है GFM 88 Secure और इसके साथ साथ जितने भी मेरे नेटवर्क साथी हैं उन तमामी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और ये प्रोग्राम हुआ करेगा आज मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, आपको कहेंगे वेलकम पखेर आले जी आन वर्कला चालन व सहलन मरहबा व मरहबतन, बिल्कुल मुझे कहते हैं बूम बूम शहजाद और आप तमामी को वेलकम पखेर आले और जी आन वर्कला राशा आहलन व सहलन। और बिल्कुल सामान चढ़ते जमा पुख्ता ना रूना खुए दीदी का ना आगे जी मुंगता कालून की मुंगता दे मैसेजेस की मुंगता दे बल्ला बल्ला खबर यू की मैसेज दे उकी खाना माचे वेली से पुख्तून या मस्तासु रूर या मस्तासु बांधे बल्ला बल्ला ग्रान या मा आओ दस्तासु दचाना मशर या मा दचाना कशर या मा ने प्रेदा इदा बालखतुना ए प्रेदा इदा कटुना और आपा सही वरता बाबा केड़ा आलन ठीक ठाक जबरदस्त खैरियत सा हुंदा चेतरा भी मुंजा सिंधी मानू प्यारा मानू सिंधी मानू दिल वारा मानू हाय हाय सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली दिल के ठाड़े हाय हाय। बाबा जेतरा भी मुंजा सिंधी लिसनर अन थैंक यू सो मच अदा जेतरी भी मुंजी पूरी सिंध बुधी रही आए थैंक यू सो मच। अगर मां सिंधी गालाइन टाइम अगर मां को मिस्टेक थी वंजे तो आई एम सो सॉरी व्हाई बिकॉज माय सिंधी इज नॉट दैट मच वेल बट आई वुड ट्राई मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिंधी भी बोलूं ऐसी बोलूंगी कि बस क्या बताऊं।
1: वैसे मेरे को भी थोड़ी थोड़ी आती है यार।
0: अच्छा कॉल का सिलसिला भी स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी बातें हैं बहुत सारी चिट चैट हैं आप लोगों के साथ और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं मुनव्वर शहजाद आप जो चाहते हो वो तो होता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मुनव्वर आप मुझे अच्छा सा ट्रैक सुनते हैं और जो मेरी पसंद का ट्रैक है मेरा साथ दीजिएगा मुझे कहते हैं बूम बूम। और बिल्कुल जनाब अगर आप कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 03000 and 11 3488 आप मुझ पर कॉल कर सकते हैं मुझे एहसास दिला सकते हैं मेरी मौजूदगी का क्योंकि मेरा और आपका साथ यूं रहेगा 11 बजे तक की समा में आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला आप लोगों की मोहब्बत है समेटूंगा अपने साथ एक बोझा मुझे ले जाना है। अभी हम डांस करने लगे आप फील करें कि मैं चाचा रबू ते भोला क्यों नचते पियान।

0: मुझे कहते हैं MS, वैसे नाम तो सुना होगा। अच्छा जी, आज का हमारा बात ये है कि मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे एक नंबर बताएंगे कि आप जिंदगी में किस चीज से डरते हैं। तो हमने नंबर, मैंने पर्चियां बनाई हुई है, इतनी पर्ची लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का पता ही नहीं चलता, एक घंटा गुजरने वाला है, आई डोंट नो कि घंटा कैसे गुजर गया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आपने बिल्कुल शॉर्ट सा प्रोग्राम करेंगे, मतलब बातें तो बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की इंट्रोडक्शन ज्यादा हो जाए क्योंकि मैं आया हूं फर्स्ट टाइम, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सुने और मुझे बताएं। वन से लेकर आपने हर कॉलर मुझे एक नंबर च्वाइस करेगा और फिर मैं उसे बताऊंगा कि तुम्हें किस चीज से ज्यादा डर। यार मुझे जो डर लगता है तेरे से ही लगता है यार। रियली? फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो लेंगे और बातें भी इसी तरीके से करेंगे, जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने सुना, उस ट्रैक को खामोश कर देते हैं और फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो, कुछ मैसेजेस भी आपको प्रोग्राम में हिस्सा बा। ठीक है, आज अभी आपने एक नंबर सिलेक्ट करना है कि आपको किस चीज से डर लगता है, मैं बताऊंगा आपको। आप क्या याद करोगे, आप कहोगे कि यार बंदा जो है नजूमी भी है और वाकई सही बता रहा है, तो आप जो है मुझे बताएंगे कि सर आपने एक नंबर सिलेक्ट किया, एक से लेकर 30 नंबर तक आपने मुझे बताना है कि सर मेरा नंबर है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चीज से जिंदगी में ज्यादा डर लगता है। ठीक है बाबा, फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो, लेट मी चेक हु इज देयर ऑन द डायल एंड लेट मी चेक। हाँ कॉल लेते हैं भाई, कॉल काट दिया, ले ली, तो कॉल करें जल्दी से, फर्स्ट कॉल ऑफ द शो, देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉल पर और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: जी, अदा किए काथू बाबा, अब तांजी आवाज सही न थी, अच्छे थोड़ो पांजी जेको प्लेस आ थोड़ो चेंज कियो थोड़ो बेटा। तबियत की आदा खैरियत आ, खुश आयो, तबियत सही आज तांजे 88 ते एकड़ो नओ आरजे आयो आ बूम बूम शहजाद, किया लगे तो प्रोग्राम
1: बेहतरीन
0: आदा, फर्स्ट टाइम बुधो ता माके या न को पैरों भी ता बुधो आ माके पैरों दफो, जबरदस्त जबरदस्त। अदा कातों काल किया था नौशेरो फेरो, आवाज असां जी सही अचे थी उते, जबरदस्त। अदा असां एकड़ो सवाल रखियो आ त एक कावटी 29 ताई नंबर आए ना सावट, ठीक है, पर्चियन दिसों ता पर्ची खोलंदा से ता बाबा केड़ी एकड़ी शय आ जे म तो आके ड्रिज थिंदो आ ड्रिजंदा आयो, ठीक है बाबा। हां केड़ी ता जी पर्ची कडूं बाबा, केड़ो नंबर कडूं? हेलो वी
1: जी,
0: अच्छा अच्छा वी है तो थोड़ो थोड़ो खड़ो भी है। अच्छा जैसा प्रभु, ठीक है ठीक है, आप तो ना कर यार, मैं भी तो बातें करना चाहता हूँ। अच्छा 20 उठाएं चाचा प्रभु, अच्छा मुझे ने, अच्छा 20 की पर्ची खोलें जी, है हाय 20 में क्या निकला है भाई, कहा देखें तो सही 20 में किस चीज से है, चाहे तो बाबा है ना इंजेक्शन जो का ना इंजेक्शन सू यू ना ड्रिज लग दो आ तो के हाँ। भाई ये चाचा रबू, ये 20 वाली पर्ची हटा दो, इसको जो है वो इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है, जदी तो के डॉक्टर सुई हणदा नदा तो के किया लग दो आ
1: ना ना सुई
0: मां दी पर्ची ना कर ना करा, जदी नंडो होंदे किए रोंदे
1: ओवर के नंडो आंगे कर
0: वंदे हसा के तो खबर पई आ चाचा रबू, बता बुदाए तो ते मुंजो दोस्त आने के आने भी जदी कदी कदी तबीयत खराब थी वंदी आ तो वठी वेना इंजेक्शन का वटो ड्रिज दो आ बा। हाँ उम्र घणी
1: अरड़ा
0: साल, छा कंदो आ बाबू? छा पढ़ंदो आ? कॉलेज जी स्पेलिंग ॿुधाए मूंखे। छा बाबा? हा
2: यार थोरी सी ग़लती आहे।
0: अच्छा चुप हो जा, चुप हो जा, कोई गलती नहीं है, ये मेरे लिसनर है। अदा किया लगे तो प्रोग्राम छा चेण चाहें दो, छा मैसेज दिन दो। आज असान जो टॉपिक है नंढे बारन जो, तो नंढे बारन जी ख्याल रखन उनन जे सामो गलत एकड़ो नाशाइस्ता हरकत न खपे करन, तो छा मैसेज दिन दो लिसनर्स के
1: यादा चाहो
0: बारन जे सामो नाशाइस्ता हरकत न न करन खपे, ठीक है ना, मतलब गलत गाल उनन के कूड़ उन्हें जो सामो न खपे। सही सही, वही मेहरबानी अदा, दुआ सलाम दोस्तन के शामिल करे बैठो जल्दी में। अखे ठाठा थी बाय बाय, जल्दी से कॉल लेंगे, देखें दूसरा कॉलर हमारे साथ कौन आ रहा है कॉल पर, कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, वेलकम बखेर आले जी आनो केरा सासा काचो
1: अहमदाद
0: अली मार, वेलकम चौंता बखेर आले चौंता, केड़ा हालन तबीयत किया। ठीक बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्लाह जो तां बुदायो किया। अच्छा इस टाइम कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, टाइम बिल्कुल स्टूडियो की घड़ी में 10:01 हुआ चाहते हैं, सो कमर्शियल ब्रेक के बाद आते हैं लाइव लेते हैं आप लोगों की कॉल्स।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगदे, मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सिंध में पौणा 41 लख न्याणियों स्कूलन का बाहर बहराड़ी में औरतों की हालत खराब है। हुकूमत रिपोर्ट पेश कर छी। सिंध सरकार पारा कणक जो इमदादी अघ मुकरर करण वारो फैसलो 2 हफ्ता मुलतवी। कणक पोखींदड़ 25 एकड़न ताईं जे मालिक 5.5 लख आबादगारन ऐं हारियुनि लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान। सिंध जे फ्लोर मिलन खे 1 अक्टूबर खां कणक फराहमीअ जो फैसलो। अटो सस्तो करण जो हुकुम। सिंध सरकार पारां 10 सालनि खां पोइ ॻोढ़ाणू डेम हानिकार करार। छोड़ बंद नए डेम जूं तयारियूं। मंशियात खे कीअं रोकजे। घरू खाते पारां IG सिंध खे बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्ते जो हुकुम। सिंध में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा। सिंध में हारिन जा हक जबरी पोरे ऐं तशद्दुद जा अंग अखर। सिंध हुकूमत सनफ़ी बराबरी बाबति पहिरीं सनफ़ी बराबरी रिपोर्ट पधरी करे छॾी। काल इंसानी हक़नि वारे ख़ासि मामिल राजवीर सिंह सोढो वज़ीर आला सां मुलाक़ात में रिपोर्ट पेश कई। रिपोर्ट मूजिबि साल 2023 में सिंध जी आबादी 5,56,90,000 ताईं पहुची वई, जेका 2.57% सालियानी शरह सां वधी रही आहे। हर 100 औरतुनि जे मुक़ाबले में मर्दनि जो अंगु 108.76 आहे। रिपोर्ट में सिहत जे शुबे में लगातार अघभराई पेश कई वई आहे, जिते सरकारी फंडनि जी विर्छ साल 2023-2024 जे 214.5 अरब मां वधी साल 2024-2025 में 267.54 अरब रुपया थी वई आहे। वहम दौरान माइरुनि जी फोतगीअ जी शरह 314 मां नुमाया तौर ते घटिजी हर लख ज़िंदा ॼमंदड़ ॿारनि ते 224 ताईं अची वई आहे, जॾहिं त नवनि ॼावल ॿारनि जी फोतगीअ जी शरह हर 1,000 ज़िंदा ॼमंदड़ ॿारनि ते 24 हुई। उन्हनि अघ भराइनि बावजूद तालीम जे शोबो सूबे जी सभ खां वॾो चैलेंज मां हिकु आहे। रिपोर्ट मूजिबि मर्दनि में ख़्वांदगीअ जी शरह 68 ऐं औरतुनि में 47% आहे, जॾहिं त बहराड़ी में औरतुनि में उहा शरह गणती जोगी हद ताईं घटि यानी 27.57 आहे। 5 खां 16 सालनि जी उमिरि जूं 40 लख 80,000 खां वधीक छोकिरियूं स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि, जेका ॻाल्हि फौरी ऐं लॻातार क़दमनि जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। उन मौक़े ते वज़ीर आला मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत ख़ासि सीड़पकारी इदारती सुधारनि ऐं सनफ़ी ज़रूरतुनि खे नज़र में रखंदे तरक़ियाती मनसूबाबंदी ज़रिए उन्हनि रुकावटुनि खे ख़तमु करण जे लाइ पुरअज़म आहे। हुन चयो त असां अहिड़ी सिंध अॾणु चाहियूं था जिते हर औरत ऐं छोकिरीअ खे पढ़णु, कमु करणु, अॻवाणी करणु ऐं समाज में पंहिंजो हिसो विझण जी बराबरि मौक़ा मिलनि। सिंध सरकार पारां कणक जी इमदादी अघु मुक़रर करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी करे छॾियो आहे। कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिकनि 5.5 हारे लाइ मद में 4,000 मार्क में खुराकनि जा हज़ार जो फ़ैसिलो वधी 16 अरब ताईं पहुची वेंदी। उन ॾस में काल वज़ीर आला मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में चयो वियो त आबादगारनि जे लाइ ऐलानियल कणक सब्सिडी पैकेज मां सिंध जे लॻभॻि 5.5 लख कणक जे आबादगारनि खे फ़ाइदो पहुचंदो। वॾे वज़ीर सिंधारी सपोर्ट प्रोग्राम

खंदेसन सरकार उते पाणी छोड़ बंदि करे छॾियो आहे। कोयला छोड़ करण लाइ मुढ़ाणी डेम जे साम्हूं जिते माण्हुनि जी अच वञ पाणी जी ज़ेरी भरे छॾियो हो। सिंध सरकार 1 अक्टूबर खां सरकारी फैसलो करे वज़ीर आला आगाह की 206 कणक ज़ब्त करे 122 टन फ्लैटर पॉइंट टन वापार अंदोज़ आहे, जॾहिं त 300 केस हली रहियो आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त ख़ुराक खाते अॻिमी खयल कणक जा 2.855 अरब रुपया अदा करे छॾिया। वॾे वज़ीर ख़ुराक खाते खे हिदायत कई त 1 अक्टूबर खां फ्लोर मिलुनि खे इंतज़ामनि खे हतमी शिकिल ॾिनी वञे। हुननि कयो फ़ाइदो स्टेटल क़ीमतुनि जी सूरत में पहुचणु घुरिजे। ख़ुराक खाते इजलास खे आगाह कयो त सिंध पास्को खां 1,00,000 टन 455 मेट्रिक टन कणक ख़रीद करण जी थी। उन मिशन जी वियो आहे। TCP 3,00,000 कणक जी दरामद लाइ टेंडर जारी कयो आहे। उहो टेंडर हिन हफ़्ते खुलाईंदासीं त सॼी घुरबल स्टॉक मौजूदु हुजे ऐं सार्फिन खे सस्ती क़ीमत ते अटो मिले।

लीडरशिप जो नओं लाइसेंस बि जारी न कयो वेंदो। तर्जुमान मूजिब रुगो गैरमामूली ऐं ख़ासि केसनि में हथियारनि जा लाइसेंस जारी करण जी इजाज़त ॾेई सघबी। अहिड़नि केसनि में लाॻापियल इख़्तियारनि खां अॻुवाट मंज़ूरी वठणु लाज़मी हूंदी। क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि मूजिब ख़ासि केसनि में घरू वज़ीर ऐं वॾे वज़ीर जी मंज़ूरी घुरबल हूंदी।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध में हारियुनि जे हक़नि, जबरी पोरे ऐं औरतुनि ख़िलाफ़ तशद्दुद बाबति अहम रिपोर्ट साम्हूं आई आहे, जंहिं में सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हारियुनि सां थींदड़ मुबैना ज़्यादतियुनि, जबरी पोरे ऐं बुनियादी हक़नि जी खोट ते ॻणती ज़ाहिर कई वई आहे। हारी वेलफेयर एसोसिएशन पारां हैदराबाद क्लब में सिंध में हारियुनि जे हक़नि बाबति साल 2025 जे सालियानी 10वीं रिपोर्ट जारी कई वई। रिपोर्ट जी पधराई तकरीब के खिताब कंदे हारी वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी सदर चयो त सिंध में करोड़े हारियुनि जा आइनी, कानूनी ऐं इंसानी हक़ मुतासिर थी रहा आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त हारियुनि जे लाइ सूबाई ऐं क़ौमी असेंबलियुनि तोड़े सिर्फ़ी नुमाइंदगी ॾिनी वञे, ज़रई ज़मीन जे निज़ाम में सुधार आंदा वञनि ऐं बेज़मीन हारियुनि खे क़ानूनी तौरु रजिस्टर्ड करे हारी कार्ड जारी कया वञनि। रिपोर्ट में उहो बि मुतालबो कयो वियो त बेज़मीन हारियुनि ऐं हरियाणियुनि खे सरकारी ज़मीन, रिहाइश लाइ प्लाट ऐं बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि, जॾहिं त ज़रई मज़ूरनि खे सोशल सिक्योरिटी ऐं रजिस्ट्रेशन करे हुकूमत पारां मुक़ररु कयल घटि में घटि उजरत ॾिनी वञे। इंसानी हक़नि जे अॻवाण पिणु हारियुनि जे बुनियादी हक़नि बाबति ख़दशनि जो इज़हार कंदे चयो आहे त हरियाणियुनि खे विरसे में मिलंदड़ ज़मीन जे रेवन्यू रिकॉर्ड में मुंतकिली ऐं ॿियनि क़ानूनी मामलनि ते बि ध्यानु ॾियणु ज़रूरी आहे। रिपोर्ट मूजिबि 2025 दौरान सिंध में औरतुनि ऐं छोकिरियुनि ख़िलाफ़ तशद्दुद जा 772 केस रिपोर्ट थिया। उन्हनि में 218 क़त्ल, 138 अगवा, 124 ख़ुदकुशियूं, 104 रेप या जिनसी ज़्यादती, 24 घरेलू तशद्दुद, 72 गैरत जे नाले ते क़त्ल ऐं 35 जबरी शादियुनि जा केस शामिल आहिनि। ज़िले लिहाज़ खां खैरपुर में 75, लाड़काणे में 55, दातू में 45, सखर में 40 ऐं घोटके में 35 वाकिया रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो त 2025 दौरान कबायली ऐं फिरके वाराणी तशद्दुद जे वाकियनि में 337 माण्हू मुतासिर थिया, जिन मां 136 मारिजी विया ऐं 201 ज़ख़्मी थिया। रिपोर्ट मूजिबि खैरपुर ज़िलो कबायली तकरारनि खां वधीक मुतासिर इलाइक़ो मां रहियो, जॾहिं त अहिड़नि वाक्यनि सबबि बहराड़ी जी मईशत, ज़रात ऐं हारियुनि जे रोज़गार ते पिणु असरु पियो। रिपोर्ट मुताबिक़ 2018 खां 2025 ताईं ज़रई शोबे में 10 आज़ाद करायो वियो, सांगड़ में 1576 केस रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त 2021 खां पोइ जबरी पोरे जी रिपोर्ट थियल केसनि में घटिताई ज़रूरु आई आहे, पर हारियुनि जे हक़नि, तहफ़ुज़ ऐं क़ानूनी सुञाणप बाबति मसला अञा बि मौजूदु आहिनि। हीअ रिपोर्ट हिकु अहम सवाल ज़रूरु उथारे थी त सिंध जी ज़रई मईशत में बुनियादी किरदारु अदा कंदड़ हारियुनि खे संदन क़ानूनी, मुआशी ऐं इंसानी हक़ कॾहिं मुकमल तौर ते मिलंदा।